प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्रावण प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। हम भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। भगवान शिव और बहुत ही सरल देवता हैं। भगवान शिव के मानस पूजा में कहा कि रत

चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृतकल्पितम ग्रह्यताम। हे दया निधे, हे पशुपते, हे देव, ये रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नावली विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी का गंध समन्वित चंदन, जूही, चंपा और बिल्व पत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, ये सब मानसिक पूजाहार। हे भगवान, आप इनको ग्रहण कीजिए। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधि विधम पयोदधियुतम रंभाफलम पानकम शाकानामयुतम जले रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। मैंने नवीन रत्न खंडों से रचित सुवर्ण

0: पात्र में घृत युक्त खीर दधि दूध सहित पांच प्रकार का व्यंजन कदली फल शरबत अनेक शाक कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल तथा तांबूल ये सब मन के द्वारा ही बना करके प्रस्तुत किए हैं। हे भगवान आप इसे स्वीकार करो, ये भगवान शिव की मानसी पूजा है। श्रोताओं जो इस प्रकार से मन से भी स्मरण करते हुए भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान सदाशिव उनका कल्याण करते हैं। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। बहुरी राम माया ही सिरु नावा, पेरी सती ही जे ही झूठ कहावा। ग्रंथ में भी सती त्याग का कारण झूठ बोलना नहीं, बल्कि सीता का वेश धारण करना ही लिखा गया है, और उसे अद न कह करके अपराध ही बतलाया गया है। सिय बेहू सती जो कहीं तेजी, अपराध शंकर परस ही। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ और परम पुरुषार्थ जो भागवत दी है, उसमें श्री शिव जी ने सम्मान कौन व्रतधारी हो सकता है, शिव जी के सम्मान कौन व्रतधारी हो सकता है। शिवम सम को इस पद का अभिप्राय तो स्पष्ट हो गया, अब सती असी नारी पद के अभिप्राय की आलोचना करनी है। सती जी कैसे आदर्श नारी थी और उनका प्रमाण उनके इस एक कर्तव्य से दिया जा सकता है कि जब शिव ने अपनी क्षमाशीला अन्याय सती को अपराध सम्य होने पर भी इनका कठिन दंड दिया कि उसे त्याग ही डाला, तो सती का जीवन महान विपत्ति में पड़ जाएगा। पति पति त्याग हृदय दुखु भारी, तथा नियति नौ सेचु सतीत उर भारी, कब जहूं दुख सागर भारा। सती बसही कैलास तब अधिक सोही मन माही, मरहू न कोह जान कोही जुग सम दिवस सराही। तथापि उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा को प्रमाणित करके बताया। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल पर केहू चारी, को परित्याग कर दिया, इसी कारण आपको ऐसा पद प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जीवन में अति उत्तम व्रत बताया। पति देवता सितु मोहि मातु प्रथम नव करख, महिमा अमित न स कहीं कही सकल आरद।

विशेषत संसारिक स्त्रियां सर्वपरायण होती है। यदि पति ने उसकी उचित बात कर भी उन्हें रोका तो

0: से लड़ाई ठान देती है। बेचारे पति को नाकों चने चबाने पड़ते हैं और अंत में अनुयायी विनय करके मेनका से वह लौट के लिए राजी हो जाती है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत।

स्वरम श्री श्री सीताराम चंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से आज ट्यूसडे 18 अगस्त 2026 के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। चलिए आज की इस शिव सती चरित्र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आरंभ करते हैं बालकांड की 56वें दोहा से।

सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रगत करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। गोस्वामी जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं,

तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि

0: स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसे विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आज इसको यही विराम दूं आपके ध्यान के लिए। बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ॐ अहिर्मा भू प्रदाको नमस्तघृतस्य कुल्यावृतस्य पथगणु। प्रिय श्रोतागणों, ये पवित्र ऋचा हमें ये संदेश दे रही है कि मनुष्य तू संसार के अंदर अगर जीना चाहता है तो किस प्रकार से जी, अपने जीवन से किस किस प्रकार की बुराइयों को हटा। वेद माता कहती है ओम अहिर्माभु, संसार में अगर जीना चाहता है तो सांप मत बन, सांप के जैसे दुर्गुणों को जीवन में धारण मत कर। सांप के अंदर दुर्गुण क्या है? वो वातावरण से विषैले गैस को लेता है और स्वच्छ वायु को छोड़ देता है। उसी प्रकार संदेश दिया कि देखो, तुम संसार के अंदर से बुराई को ग्रहण करके अच्छाई का परित्याग मत करो, संसार से अच्छाई को जीवन में धारण करो और जीवन के अंदर सुखी रहो। दूसरा, सर्प के अंदर गुण होता है कि वह जब अपने घर में जाता है, प्रवेश करता है, तो वह सीधा होकर के प्रवेश करता है, लेकिन जब बाहर चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है। इसलिए संदेश दिया कि देखो, जब तू संसार के अंदर जीना चाहता है तो इस अपने जीवन के अंदर से टेढ़ेपन को हटा दे और सीधे होकर के प्रवेश कर। लेकिन मनुष्य बाहर बिल्कुल सीधा साधा होकर के चलता है, लेकिन जब घर में प्रवेश करने की बारी आती है तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के प्रवेश करता, अर्थात कुविचारों को जीवन में लेकर के प्रवेश करता है। इसलिए वेद माता कहती कि अपने जीवन से इन बुराइयों को हटा, और आगे कहा प्रताकून मस्तक घृतस्य कुल्यावृतस्य प्रथानु, कि हे मनुष्य, अगर तू जीना चाहता है तो याद रखना तू अपने जीवन से बिच्छू वाला गुण हटा दे। आप सोचेंगे ये वेद माता कैसे संदेश दे रही है, एक तरफ कहती सर्प मत बन और दूसरी तरफ कहती बिच्छू मत बन। एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि सांप के काटे सोवे, बिच्छू के काटे रोवे। सांप के काटने से मनुष्य अपने जीवन लीला को तो समाप्त कर लेता है, लेकिन जब बिच्छू काट लेना, बिच्छू सोने नहीं देता। और सांप के अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा जहर हो, बिच्छू के दुंब के ऊपर चाहे जीरो मात्र भी विष है, फिर भी वो पीछे अकड़ करके चलता है, पीछे अपने दुंब को अकड़ा करके चलता है। इसके द्वारा संदेश दिया कि देखो, तुम अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार से अकड़ करके मत चलो। तुम्हारे अकड़ के लिए तो एक तिनका ही मात्र काफी है। संसार के अंदर हम अकड़ करके चलेंगे तो जीवन में हम दुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि अकड़ना तो खास करके उन व्यक्तियों की पहचान होती है जिसमें जान नहीं होती है, झुकता वही है, जिसमें जान होती। तो परमात्मा का यही पवित्र संदेश है, अपने जीवन में धारण करें। इति ओम सम, धन्यवाद।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम स्वधया परिहिता स्वधया पर्युधा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठता लोको निधनम्।
2: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से मैं पंडित आकाशवंती पियति आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास की शुभकामना।

कामना अब सभी श्रोताओं को है। श्रोतागण, इस उक्त मंत्र में कहा गया है कि संसार से प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए प्रस्थान करने के लिए अन्न, जल और स्वसामर्थ्य से दूसरों का हित संपादन करो, श्रद्धा से आच्छादित रहो, दृढ़ संकल्प से सुरक्षित रहो, यज्ञ में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। श्रोतागण, इस मंत्र का भावार्थ यह है कि संसार एक क्रीड़ा स्थल है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पाठ पूर्ण कर और यहाँ से प्रस्थान करना है। सभी को जाना है। हम यहाँ से प्रस्थान करें, परंतु हंसते हुए प्रस्थान करें। इसके लिए वेद माता हमें चार साधनों का निर्देश कर रही हैं। वेद माता का यहाँ पर प्रथम प्रस्थान है, प्रथम निर्देश यहाँ पर है, अन्न और जल के द्वारा तथा अपने जीवन को होम करके भी दूसरों का हित संपादन करो। अपने धन और धान्य से, अपने सभी साधनों से दीन, दुखी और दलितों की खूब सेवा करो। दूसरा यहाँ पर निर्देश है कि श्रद्धा से आच्छादित रहो। आपका जीवन श्रद्धा से ओतप्रोत होना चाहिए। माता और पिता में श्रद्धा रखो। धर्म और सदाचरण में श्रद्धा रखो। अपने कर्म में श्रद्धा रखो। तीसरा निर्देश यहाँ पर है श्रोतागण, दृढ़ संकल्प से अपने व्रतों का पालन करो। जीवन के एक एक क्षण का सद्व्यय करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलो। और चौथा निर्देश यहाँ पर है कि यज्ञ में अर्थात श्रेष्ठ कर्मों में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। सदा श्रेष्ठ और शुभ कर्म ही करो। बड़ों का आदर करो, छोटों से स्नेह करो, मेल मिलाप बढ़ाओ, संगठन बनाओ और इस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त करो। आज के लिए इतना ही। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम श्री

श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: अल्वीषमप कव्यामपौरपः अपामार्गत्वमस्मदप दुष्वप्न्यं सुव।
1: जैसे अपामार्ग आदि औषधियां शरीर के रोगों को दूर कर सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही मनुष्य सभी दोषों, बुराइयों एवं रोगों से अलग होके शुभ कर्मों में प्रवृत्त होवे। शुद्धता का पालन मनुष्य के अच्छे कर्मों पर निर्भर है। वह अशुभ आचरण से पृथक होकर ही शुद्धता एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह अन्यों को भी शुद्ध आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करके उनके जीवन को सार्थक बनाता है। आँख, नाक, कान आदि बाह्य इंद्रियों के चंचलता रूपी अपराध से दूर रहें, बुरे स्वप्न एवं भययुक्त निद्रा न आवें एवं स्वप्न में आए बुरे विचार हमारे मन को अपवित्र न करें।
0: ओम मनस्त आप्यायताम वाक्त आप्यायताम प्राणस्त आप्यायताम चक्षुस्त आप्यायताम श्रोत्रं त आप्यायताम यत्ते क्रूरं यदास्थितं तत् आप्यायताम निष्ट्यायताम तत्ते शुध्यतु समहोभ्यः औषधे त्रायस्व स्वधिते मैनं हिंसिः।
1: हे शिष्य, अध्ययन करना ही तेरी तपस्या है। तेरा मन, तेरे प्राण, नेत्र, कान आदि इंद्रियां गुणयुक्त और निर्मल हो। तेरे अंदर कुसंस्कार और दुष्ट व्यवहार प्रवेश न करें। तेरा संपूर्ण व्यवहार और कर्म शुद्ध हो। प्रतिदिन तेरे जीवन में सुख की वर्षा हो। हे औषधि के समान मार्गदर्शक, आप अध्ययनशील शिष्यों की रक्षा कीजिए। हे शिक्षकजन, अपने शिष्यों को व्यर्थ तारना मत दीजिए। सत्कर्म करने से सबकी उन्नति होती है। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि सुशिक्षा पाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करें। जहाँ आवश्यक हो वहाँ ताड़ना भी करें। गुण ग्रहण कराने एवं विद्या ग्रहण कराने हेतु शिष्यों को अनुशासन में रखना आवश्यक है।
0: ओम यद् ग्रामे यदरण्ये यत् सभायां यदिन्द्रिये यत् छद्रे यदर्ये यदेनश्च क्रिमावयं यदेकस्याधिधर्मणि तस्यावयजनमसि।
1: गांव में हो या वन में हो, सभा में हो या मन में, सेवक की अवस्था में हो या अधिकारी की, किसी भी अवस्था एवं स्थान में कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार एवं पापाचरण न करें। कभी भी व कहीं भी निंदनीय कर्म से अपने आप को दूषित न करें। यदि जहाँ तक बन पड़े तो परमेश्वर के साथ सत्यता का व्यवहार करें। अपने कुटुंब एवं विद्वान के सामने सत्य एवं मधुरता का व्यवहार करें। राजसभा, विद्यासभा और धर्मसभा में भी सत्य एवं न्यायपूर्वक आचरण करें।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
2: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
3: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। डर्बन में आयोजित 46वें सादिक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा करने और एक मजबूत सादिक के निर्माण के लिए एकत्र हुए, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल हुए। समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, ये शब्द पिछले गुरुवार से चर्चा में है, जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने पॉइंट डिस्नी समुद्र तट का दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच का जायजा लिया। कुछ संपत्ति मालिक अपनी समुद्र किनारे की जमीन की बाढ़ सार्वजनिक क्षेत्र तक बढ़ा रहे हैं। इसी बीच फेसबुक पेज PMIFO पर 2024 की मंत्री की एक पुरानी पोस्ट सामने आई, जिस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों, विशेषकर चिकित्सा कारणों से दी जाने वाली अनुमति के लिए एक नया दिशा निर्देश ला रहा है। इसके तहत आगे की विंडस्क्रीन और साइड विंडो से कम 75% रोशनी अपनी आनी चाहिए। मंत्री उस्मान माउमेद के अनुसार इस संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जाँच हेतु एक नई वेरिफिकेशन प्रणाली तैयार की जा रही है। विदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान समझौते के बीच अमरीकी सहयोगी ओमान को रास्ते में आने पर बम से उड़ाने की धमकी दी। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। जोरदार एंटीसाइक्लोन स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण नम और अस्थिर हवाएं बह रही हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह देश भर में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर वर्षा होगी। कभी कभी जोरदार वर्षा हो सकती है, खासकर ऊंचाइयों पर। कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24, तटवर्ती इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर जोरदार बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। दोपहर बाद को लगूनों में समुद्र की स्थिति में सुधार आएगा। आज सुबह 6:30 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:57 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अल्लाह पाक की हर अता और अल्लाह जल्ला मजहू का हर नाम इसके सामने हेज है कि इंसान को हाशर में जन्नत में अपने महबूब का साथ नसीब हो जाए और मईयत नसीब हो जाए तो फिर उसको इसके अलावा और क्या चाहिए। जैसे किसी शायर ने कहा, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। यानी मुस्तफ़ा के मिलने के बाद, रसूलुल्लाह के मिलने के बाद दाई कोई दुआ नहीं करता, साइल कोई सवाल नहीं करता और तालिब किसी और की तलब नहीं करता और कासिद किसी और को मकसूद नहीं बनाता, इसलिए कि दाई का मदऊ भी मुस्तफ़ा है, साइल का मसूल भी मुस्तफ़ा है, तालिब का मतलूब भी मुस्तफ़ा है और कासिद का मकसूद भी मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक अपने फजल करम से हमें अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उस मोहब्बत का समरा अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी मुस्तफ़ा अस्सादिक़ल अमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग अल मुबीन।

नूरानी बयान अभी आप समाप्त कर रहे थे मुफ्ती मोहम्मद सक्कादी रज़ी दामद बरकातुहु आलिया की ज़बानी। आइए मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम से मुतालिक बयान गोश गुजार कराने से पहले ये नाते पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम समाप्त कीजिए।

0: और मुकद्दस नूरानी महीने के सदक़े में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए आमीन फरमा आमीन। आइए सामीन जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बयान हम आपको पेश करते हैं। आज जिस उन्वान पर हम आपको बयान पेश करने जा रहे हैं वो है मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसे पेश करेंगे बेशक अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी दामत बरकात मालिया। इस बयान का पहला हिस्सा समाप्त कीजिए।
1: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم। आदमी आने की उसकी खुशी मनाता है जिससे उसे मोहब्बत हो। अगर किसी इंसान से उसको मोहब्बत नहीं तो उसके आने की वो खुशी नहीं मनाता। आने की खुशी मनाना ये भी एक मोहब्बत की अलामत है। इस वक्त हम और आप अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मुख्तलिफ शानों के साथ आमद रसूल का जिक्र फरमाया। आप अगर कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कहीं कुरान मुकद्दस में यह इरशाद फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कहीं रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, और कहीं परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूला। लेकिन आज मैंने कद जाअकुम मिन अल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन इस आयत का सिलेक्शन और मौजूए सुखन इसलिए बनाया कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया, लाइट आ गई, रोशनी आ गई। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, दुनिया में कौन ऐसा शख्स होगा जो अंधेरे से मोहब्बत करता हो और उजाले से मोहब्बत न करता हो? दुनिया के हर इंसान की कैफियत यह है कि उसके दिल में अंधेरे से कोफ्त होती है, उसके दिल में अंधेरे से नफरत होती है और उजाला उसके दिल की राहत का सबब बन जाता है। आप अंदाजा लगाएं उजाले की जरूरत कब पड़ती है और अंधेरा कैसे छटता है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया, रोशनी आ गई। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, रोशनी की मौजूदगी में रोशनी की जरूरत नहीं होती, रोशनी की जरूरत तो अंधेरे में पड़ा करती है, रोशनी की जरूरत तो तारीकी में पड़ा करती है। दिन के उजाले में कोई शख्स अपने घर की लाइट ऑन नहीं करता, जब जब अंधेरा छाता है इंसान रोशनी के जरिए अपने घर की तारीकी को मिटा दिया करता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने अपने महबूब को नूर बना करके भेजा तो क्या तेरे महबूब की आमद से पेशतर जमाने में अंधेरा था, सूरज न निकलता था, चांद रोशनी नहीं फेंकता था, घरों में दिए रोशन नहीं होते थे? ऐ परवरदिगार, जब कायनात के अंदर रोशनी मौजूद थी तो फिर इस नई रोशनी की जरूरत क्यों पेश आ रही है और तू क्यों नूर बनाकर अपने महबूब को भेज रहा है? तो निदा आएगी, नादान तूने क्या समझ लिया है, ये नूर सूरज जैसा नूर है, ये नूर चांद जैसा नूर बनाकर भेजा है? नहीं, बल्कि मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कैफियत और सूरज का हाल जुदा है। जानते हो तुम, सूरज जब आसमान पर निकलता है तो जमीन को मुनव्वर करता है, जमीन की तारीकी को दूर करता है। चांद जब आसमान पर निकलता है तो चांदनी बिखेर कर अंधेरे को दूर करता नजर आता है। घरों की चार दीवारियों के अंदर अंधेरा हो तो दिया घर की चार दीवारी को दूर कर देता है, दिए का उजाला। लेकिन दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसी रोशनी नहीं जो दिल के अंधेरे को दूर कर सके। मेरा रसूल ऐसा नूर बन करके आ रहा है जो सिर्फ कायनात को रोशन नहीं बल्कि कायनात में बसने वाले इंसानों के तारीख दिल को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नूर बन करके जलवा कर हुए कि इंसानों का दिल तारीख हो चुका था, इंसानों का दिल सियाह हो चुका था, इंसानों के दिलों पर तारीखी छा चुकी थी। लेकिन मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इंसान अपने तारीख कल्ब का इलाज करके अपने कल्ब को मुनव्वर और मुजल्ला

का नजर आता है। आप अंदाजा लगाएं रब्बे कदीर जल्ल जलालहु के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की जमीन पर पैदा हुए। आज का कोई इंसान ये जरूर कह सकता है कि आप कह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की तारीकी को मिटाने के लिए तशरीफ लाए। क्या रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक्दस का नूर पूरी दुनिया की तारीकी को मिटा सकता है? तो मैं अर्ज करूंगा जब आसमान पर निकलने वाला सूरज सारी कायनात की तारीकी को मिटा सकता है तो जो सूरज मेरे रसूल के इशारे पर गर्दिश कर रहा हो वो रसूल के नूर का आलम क्या होगा? वो रसूल भी कायनात की तारीकी को मिटाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर बनकर के जलवागर हुए, रोशनी बनकर के जलवागर हुए और कितने अजीम नूर बनकर के जलवागर हुए कि अल्लाहु अकबर आते ही कायनात का अंधेरा छटता नजर आता है। परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो विलादत के वक्त का इंतखाब फरमाया वो वक्त भी कितना हसीन था। रात की चादर हट रही थी और सूरज अपने चेहरे को इंसानों के सामने सूरज की शुआएं आने के करीब थी और उससे पहले पहले का वक्त जो सुबह सहर का वक्त होता है, सुबह शादी का वक्त होता है, सूरज के चांद के जाने का वक्त और तारीकी के हटने का वक्त होता है। ऐसे में परवरदिगार ने अपने महबूब को भेजकर बता दिया अब वो आ रहा है जो कायनात के अंधेरे को भी मिटा देगा और इंसान के कल्ब की स्याही को भी मिटा देगा। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर बन करके आए और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त जो जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नूर निकला, हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त जो जिस्म से नूर निकला उस नूर की रोशनी में मैंने बसरा के महल को चमकते देख लिया, शाम के महल को चमकते देख लिया। आप अंदाजा लगाएं हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का जायजा लो, मुल्क शाम का सफर उन्होंने नहीं किया था, कैसे उन्हें पता चला कि ये शाम के महल्लात? पता इसलिए चला कि जो रसूल नूर बनकर के जलवागर हो रहे थे वो सिर्फ नूर ही नहीं थे बल्कि नूर के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उस नूर की कैफियत ये है कि खुदा की मारिफत को नूर बता देता है तो महल की मारिफत भी इस नूर को बताने की सलाहियत मौजूद है। वो कौन सा अंधेरा था? आज फिर उसी अंधेरे की तरफ इंसान जा रहा है, आज उसी तारीकी की तरफ इंसान लौट रहा है जिस तारीकी को मिटाने के लिए मेरे रसूल इस फर्श गिरी पर तशरीफ लाए। जानते हैं वो तारीकी कौन सी थी? वो गुनाहों की तारीकी थी, वो बदकिरदारियों की तारीकी थी, वो अय्याशियों की तारीकी थी। आज भी दुनिया के अंदर जब कोई इंसान गुनाह करने का इरादा करता है तो आप देखते होंगे कि मुआशरे के अंदर डार्क प्लेस मौजूद हैं जहां अंधेरे में इंसान जाकर के गुनाह किया करता है और इंसान उस तारीकी में गुनाह करने के बाद खुद भी ऐसा सियाह हो जाता है कि उसके चेहरे की न चमक जिंदा रहती है न उसके कल्ब की नूरानियत बाकी रह जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों आप रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर के इंसान की जिंदगी का जायजा लें और अंदाजा लगाएं जुर्म ज्यादती और जुल्म इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सेवा था। आप जानते हो मैं जब नूर के हवाले से गुफ्तगू करता हूं तो एतराज किया जाता है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इतने अजीम नूर हैं कि कल्ब की स्याही को मिटा दें? मैं कहता हूं जी हां, अल्लाह के रसूल को परवरदिगार ने इतना अजीम नूर बनाकर भेजा है। आपको अगर रसूल की हदीस पर एतमाद है और रसूल की हदीस पर भरोसा करते हो तो मुझे बताओ क्या रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो गुनाह की वजह से उसके दिल पे एक सियाह नुक्ता हो जाता है? गुनाह इंसान हाथ से कर रहा है लेकिन हाथ सियाह नहीं हो रहा, गुनाह इंसान ज़बान से कर रहा है ज़बान सियाह नहीं हो रही, गुनाह इंसान पैरों से कर रहा है लेकिन पैर सियाह नहीं हो रहे, गुनाह इंसान अपने वजूद से कर रहा है लेकिन वजूद उसका सियाह नहीं होता। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान जब अपने आज़ा से गुनाह करता है तो जब जब गुनाह करता है उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है। ए मेरे मौला, गुनाह हाथ से हुआ दिल सियाह क्यों हो गया? गुनाह ज़बान से हुआ दिल सियाह क्यों हो गया? गुनाह पैरों से हुआ दिल सियाह क्यों हो गया? तो निदा आएगी नादान, मेरा रसूल उसी दिल की तारीकी को मिटाने के लिए तो आया है, इस गुनाह से बचाकर मेरा रसूल तेरे कल

0: को मुनव्वर और मुजल्ला करना चाहता है। इसलिए सुन, अगर तू अपने कल्ब की स्याही को मिटाना चाहता है तो मेरे मुस्तफा के नूर को अपने सीने में जगह दे दे, तेरे दिल की स्याही मिट जाएगी और दिल मुनव्वर और मुजल्ला हो जाए। आप देखें एजुकेशन के हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। एजुकेशन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर बताया। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर इंसान के पास जिस चीज की कमी है वो कल्ब की तस्कीन के सामान की कमी है। इंसान मुस्तरिब है, बेकरार है, इल्म बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, और उस एजुकेशन के बढ़ने की वजह से, साइंस के बढ़ने की वजह से, टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से कुमकुमे तो नजर आ रहे हैं, दुनिया तो सजती नजर आ रही है और दुनिया में रोशनी नजर तो आ रही है। लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ रहा है, दिल की स्याही भी बढ़ती चली जा रही है, दिल की तारीकी भी बढ़ती चली जा रही है। दिल की स्याही और दिल की तारीकी इस हद तक बढ़ रही है कि इंसान मुस्तरिब होकर दिल की तस्कीन के सामान के लिए इधर उधर भटकता है। लेकिन मेरा करीम साइंसदानों को निशान नहीं कर रहा है कि तुमने कोई छोटी मोटी चीज ईजाद कर दी होगी, तुमने कोई छोटा मोटा काम कर लिया होगा, लेकिन कुरान उठा करके देखो, अल्लाह अकबर, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने कितना बड़ा कारनामा दिया था। अल्लाह अकबर, तख्त बिलकिस को मंगवा लिया था अपने पास, और तख्त बिलकिस मनोटन का था, बेपना वजन था, 12 कमरों के अंदर 12 कमरों से गुजरने के बाद वो तख्त मिलने वाला था। लेकिन उस तख्त को पलक के छपकने से पहले उनके सामने उनके खादिम ने हाजिर कर दिया। इतने बड़े कारनामे के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी बर्तरी का ऐलान करना चाहिए था कि देखो मैंने इतना बड़ा कारनामा अपने खादिम से करवा दिया। लेकिन कुरान कहता है इतने बड़े कारनामे के बाद हजरत सुलेमान पुकार उठते हैं, ये मेरा कोई काम नहीं है, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। मेरा रब फरमाता है दिल देना हो तो मेरे महबूब को दे दो।
1: मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान का पहला हिस्सा अभी आप समाप्त कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन थुम्मा आमीन।

हज़रत अनस रदिल्लाहु ताला अन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का जिस्म मुबारक नहायत नर्म नाजुक था, मैंने दिबाच हरीर यानी रेशमी कपड़ों को भी आपके बदन से ज़्यादा नर्म नाजुक नहीं देखा, और आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के जिस्म मुबारक की खुशबू से ज़्यादा अच्छी कभी कोई खुशबू नहीं सूंघी।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स एक मर्तबा जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो कभी बूढ़ा ना होगा, यानी हमेशा जवान रहेगा, कि ये भी एक इनाम होगा।

शक्ति। मंगलवार 18 अगस्त, घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:45 हो रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन, आप सभी का स्वागत हम करते हैं सुमिता की ओर से, सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति में शक्ति लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। अभी से लेकर दिन के 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और साथ ही ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। श्रोताओं, जीवन की बात करें तो जीवन जो है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता है। जीवन में आज सुख है तो कल दुख है, आज खुशी है तो कभी गम होता है, कभी धूप तो कभी छाव, कभी अच्छा अनुभव कभी बुरा अनुभव, इन सब के चलते जीवन जो है चलते रहता है। लेकिन जीवन में एक चीज़ है जो कभी ठहरता नहीं है, थमता नहीं है, वो है समय। जीवन में जो कुछ हो रहा है, जीवन आगे बढ़ता रहता है, समय आगे बढ़ता रहता है, समय के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो कुछ क्यों ना हो जीवन में, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, निराश

निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, बस उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और देखिएगा जीवन में सब कुछ कैसे अच्छा ही अच्छा होता है। और चलिए अच्छाई की कामना करते हुए जो है हम अभी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। कहते हैं कि सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण किया जाए तो ईश्वर अपने भक्तों की सहायता के लिए अवश्य आता ही है। तो चलिए ईश्वर को पुकारते हैं, भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हैं।

हर एक मंगल कार्य की शुरुआत हम भगवान गणेश के नाम से करते हैं ताकि जितने भी विघ्न हैं वो दूर हो जाए और हर एक कार्य जो है संपन्न हो जाए। श्रोताओं, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है। मंगलवार का दिन जो है हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी जो बल का प्रतीक है, जो बुद्धि का प्रतीक है, हनुमान जी जो भक्ति का प्रतीक है, जो समर्पण भाव का प्रतीक है। भगवान राम के प्रति किस तरह का प्रेम इनके हृदय में था, किस तरह से वे आतुर रहते थे राम काज को करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। इन सभी गुणों को हम भी अपना सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि जीवन मिला है तो कहीं ना कहीं जीवन में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के प्रति करुणामय एक हृदय रखना है, एक दूसरे से प्रेम करना, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक होती है जीवन में। तो चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं।

0: शक्ति।
1: जी हाँ, कभी कभार ऐसा लगता है कि ईश्वर तो हमारी खबर ही नहीं लेते हैं, ईश्वर को तो हमारी चिंता ही नहीं है। परमपिता परमेश्वर सिर्फ हमारी ही बातों को नहीं सुनते हैं, हमारी ही प्रार्थनाओं को अनसुना करते हैं, हमारी ही याचनाओं को अनदेखा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर जो है हमें वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए होता है। कहते हैं ईश्वर अपने भक्तों को वो देते हैं जो उन भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए कभी भी नियति पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, ईश्वर पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, और जीवन में हो रहा है उसको लेकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। शायद आज कुछ बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये भी एक अनुभव है, इसके चलते शायद हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और इन्हीं बातों को शायद आने वाले दिनों में हम अपने जीवन में उतार पाएंगे और जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए ईश्वर पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए और ईश्वर से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को पूर्ण भी करते हैं।

चलिए हमारी नैया को पार तो वो परमपिता परमेश्वर ही लगाते हैं। और कहते हैं ना कि जीवन में जब भी हमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है और अचानक से कोई अनजान आकर हमारी मदद कर जाता है तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर का ही तो रूप होता है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है जो बिना मांगे हमें मिल जाता है। तो बस जीवन में अच्छे कर्मों का बड़ा महत्व है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाह के, जब हम औरों की सहायता करते हैं तो बदले में जब हमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो किस रूप में, कहां पर कौन आकर हमारी मदद कर जाता है हम नहीं कह सकते। ये ईश्वर का आशीर्वाद ही है जिस पर हमें सदैव विश्वास रखना चाहिए। श्रोताओं, हम श्रावण के महीने में हैं और श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना होती है, शिव परिवार की आराधना होती है। तो चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं। भगवान शिव जो सबका कल्याण करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं।

0: शक्ति।
1: श्रोताओ, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कहते जीवन में आभार प्रकट करना बहुत आवश्यक होता है, जीवन में धन्यवाद कहना बहुत आवश्यक होता है। कभी कभार हमें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जो प्राप्त नहीं कर पाते हैं हमारा ध्यान उसी ओर ज़्यादा होता है कि देखो ना ये हमें नहीं मिला। लेकिन ये एक चीज़ न मिलने के कारण जितनी सारी चीज़ें मिली हैं कभी कभार हम उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जीवन में हर एक दिन का आरंभ ईश्वर को धन्यवाद करते हुए करना चाहिए और पूरे दिन में जो कुछ हो रहा है एक अनुभव के रूप में उसे लेते हुए हर एक क्षणों का, हर एक अनुभवों का भी धन्यवाद करना चाहिए। जिन लोगों से हम मिलते हैं, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, जो हमसे अच्छे से बात करते हैं, जो हमारी भावनाओं को समझते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं धन्यवाद करना तो बनता ही है। और साथ ही हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जो हमेशा हमारे सभी कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ते हैं, कार्यक्रमों को पसंद करते हैं। आज मंगलवार का दिन है तो हनुमान चालीसा के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। हनुमान जी आप सबको शक्ति प्रदान करें, बल प्रदान करें, हनुमान जी आप सबका कल्याण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ इस हनुमान चालीसा के साथ हम कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं। 11:30 बजे आप सुन पाएंगे चाइनीज़ भाषा में कार्यक्रम, जिनकी प्रस्तुति में हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दिन के ठीक 12 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे विधिमा। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सादिक के सदस्य देशों की साझा चुनौतियां कल डर्बन में चर्चा के केंद्र में रही। दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय के 46वें शिखर सम्मेलन के लिए 16 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष वहां एकत्र हुए। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी इस सम्मेलन में मौजूद थे, उनके साथ विदेश मंत्री रितेश रामफल भी शामिल हुए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जो इस वर्ष संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने अपने उद्घाटन भाषण में इलाकाई एकीकरण को प्रमुख प्राथमिकता बताया। बंद कमरे में हुई बैठक देर शाम तक चली, जिसके बाद सिरिल रामाफोसा ने समापन भाषण दिया। एएफपी के अनुसार दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अपने समकक्षों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जटिल चुनौती माने जाने वाले इमिग्रेशन के मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर मिला। सादिक के कई सदस्य देश जैसे जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य इस मुद्दे से सीधे प्रभावित हैं। इन देशों के नागरिकों को दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा और बड़ी संख्या में उन्हें वापस उनके देशों में भेजा गया। ये शिखर सम्मेलन मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए अन्य नेताओं से मुलाकात करने और साझा हितों के मुद्दों तथा क्षेत्र के रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करने का भी अवसर रहा। ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सरकार ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को याद दिलाया है कि इसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। आईसीटी मंत्रालय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की पहचान वेरिफिकेशन को लेकर परामर्श की तैयारी कर रहा है। सरकार ने साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ये कानून साइबर उत्पीड़न के साथ साथ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी प्रोफाइल के इस्तेमाल पर भी सजा का प्रावधान करता है। किसी जांच प्राधिकरण द्वारा आपत्तिजनक सामग्री की सूचना दिए जाने पर पेज के प्रशासक के लिए उस सामग्री को मॉडरेट करना भी अनिवार्य है। उल्लंघन के मामले में 10,00,000 मॉरिशस रुपये तक का जुर्माना और 20 साल तक की सजा हो सकती है। आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों की टिंटेड शीशों, खासकर चिकित्सीय कारणों से दी जाने वाली अनुमति के आवेदनों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू करने की तैयारी कर रहा है। वाहन की सामने की विंड स्क्रीन और आगे की साइड विंडो से कम 75% रोशनी अंदर आनी चाहिए, हालांकि 5% की अतिरिक्त छूट की अनुमति होगी। और विदेश में यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज के इंजन रूम को एक अज्ञात प्रक्षेप्य की चपेट में आने से नुकसान पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य हताहत हुआ। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
5: You're listening to RM3 Radio, Man.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: जी हाँ ना, सुहाना सफर। इस प्रोग्राम में आप सभी लवली लिसनर्स का हम वेलकम करते हैं। आज है ट्यूसडे 18th ऑफ अगस्त। घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 12:08 होने को है। रेडियो मनोरंजन पर यहाँ पर मैं सुमी आ चुकी हूँ आप सभी का साथ देने के लिए। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे बिल्कुल। और ये जो ट्यूसडे का दिन है बहुत अच्छे से जा रहा होगा। दोपहर का वक्त है, अभी से लेकर 2 बजे तक जो है हम आपके साथ साथ रहेंगे। अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे तराने, ढेर सारी बातें, और यहाँ पर होने वाला है फुल ऑन एंटरटेनमेंट, भरपूर मनोरंजन हमारे साथ दोपहर के 2 बजे तक। तो जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नॉट टू फॉरगेट, हमारा नंबर है 4028070। साथ यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250600 पर। थोड़ी देर में विल बी लाइव ऑन आवर टिकटॉक पेज ऑल्सो। तो चलिए साथ मिलकर इन खूबसूरत गानों को गुनगुनाएंगे। ऐसे आज बॉलीवुड के 2 कलाकारों का जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो गुलजार साहब, आज है 18th ऑफ अगस्त, आज ही की तारीख यानी कि 18th ऑफ अगस्त 1934 को गुलजार साहब का जन्म हुआ

था और गुलजार साहब का जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा में वो कुछ ही शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। लेखक है, फिल्म भी इन्होंने डायरेक्ट की है, लिरिसिस्ट भी है और चलिए इनसे जुड़ी कुछ बातें करेंगे। और साथ ही आज अरुणा ईरानी भी अपना बर्थडे मना रही है। तो गुलजार साहब और अरुणा ईरानी जी दोनों को ही जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं इनके सभी फैंस की ओर से, सभी चाहने वालों की ओर से। और आंधी फिल्म के इस गाने के साथ आज के प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफर के इस सफर में आप हमारे हम सफर बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोपहर का जो वक्त होता है बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि सुहाना सफर इस प्रोग्राम में हमारे इतने लिसनर्स जुड़ते हैं कि क्या कहे। लिसनर्स का तो छोड़िए, हमारे टिकटॉक के फॉलोअर्स भी बड़े ही प्यार से हमारा साथ देते हैं, सो थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में विल बी लाइव ऑन आवर टिकटॉक पेज ऑल्सो। और चलिए इस पल को मेमोरेबल बनाएंगे खूबसूरत गाने के साथ। इस समय वीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेलो वीना जी, आई होप आप अच्छी हैं। नुवेल फ्रांस से हमारे साथ कनेक्टेड है। और लहू के दो रंग फिल्म का तराना है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है अपने हबी देव के लिए। तो चलिए यहाँ पर आपकी फरमाइश पर यह गाना चल पड़ा रफी साहब और अनुराधा जी की आवाज़ों में। एंड नॉट टू फॉरगेट, यू कैन सेंड योर डेडिकेशंस 5250-6200 पर।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: यस दिस इज योर सुहाना सफर। दोपहर के 12:28 ऑलरेडी और लंच करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आप सभी को बोना पीछी और इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी है। बहुत सारे फॉलोअर्स हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो आप सभी को, गुड आफ्टरनून। आई होप कि हमारी इस लाइव को आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही हमारे शो को भी। सुहाना सफर जो चलता है हर रोज यस दोपहर के 12 से, और बड़े ही प्यार से हमारे लिसनर्स और साथ ही हमारे सभी फॉलोअर्स हमारा साथ देते हैं। सो अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। मैं तेरे लिए फिल्म का ये टाइटल ट्रैक होगा, एस जानकी एंड अमित कुमार जी की आवाज़ों में। अनिल जी ये गाना खासकर आपके लिए। वी हैव कुसुम जो इस समय काम करते करते हमारे साथ जुड़ी है। राजा जी और माया जी ये गाना आप दोनों के लिए भी हम करते हैं। देन वी हैव राजा सी संको ये गाना आपके लिए भी। हेलो आफिजा जी, हाउ आर यू।

यू केशनी कुमार जी, आपका मैसेज भी हमें मिला, थैंक यू सो सो मच। वी हैव प्रिया, ललिता एंड हमारी लवली माधुरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो चलिए आप सभी के लिए ये गाना चल पड़ा।

0: सुहाना सफर
1: जी हाँ, मैं तेरे लिए यहाँ पर हम भी आप ही लोगों के लिए है, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों का साथ देने के लिए ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को लेकर। तो उम्मीद करते हैं ये समय बहुत अच्छे से बीत रहा होगा यहाँ पर, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो है गुलजार साहब इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, साथ ही अरुणा ईरानी जी का भी बर्थडे है, हमने सोचा कि आज अगर आपकी रिक्वेस्ट गुलजार साहब के गानों की हो, या कोई गाना उन्होंने लिखा हो, या कोई फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की हो, अगर उस फिल्म का कोई तराना हो, तो ऐसे में जो अगला गाना है कोरा कागज फिल्म का, ये तराना किशोरदा की आवाज़ टाइटल ट्रैक जाता है वेदना जी आपके नाम, कट्रबोन से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शकीला जी भी हमारा साथ दे रही है, कहती है गुलजार साहब और किशोरदा माइंड ब्लोइंग ड्यूओ है। यस, और चलिए एक गाना यहाँ पर आपके नाम हम करते हैं। वी हैव सुल्ताना जी, यहाँ पर संजू जी भी हमारे साथ है, रोहित यादव जी। सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में नए गाने नहीं चलते हैं, पुराने गाने चलते हैं। तो कोई पुराना गाना सुनना चाहते हैं तो बेशक आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड वी हैव मनोज, दीप्ति, रोशन टेलर जी, वी हैव किरण जी जो हमेशा कनाडा से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। किरण जी थैंक यू सो मच, आप टिकटॉक पर लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही व्हाट्सएप पर भी आपका मैसेज हमें मिला। किरण पुरी जी अगला गाना आपके नाम, वी हैव जी जी लाल, नरेंद्र कुमार, निंदी कलाराम कारीगर वैंकोवर कनाडा से सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का स्वागत हम करते हैं। और परिचय फिल्म का गाना अभी किसी ने हमसे कहा, अनिल जी ने, चलिए थोड़ी देर में परिचय फिल्म का गाना भी चलाएंगे। अभी के लिए कोरा कागज फिल्म का ये ट्रैक आप सभी के नाम। और चलिए यही गाना परी आपके लिए भी हम करते हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए आज सुहाना सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि इतने सारे लिसनर्स तो साथ दे ही रहे हैं और साथ ही आप लोग भी हैं और गाने बड़े कमाल के हैं, तो थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत गाने की फरमाइश करने के लिए। और यकीनन गाने अच्छे होते हैं ना तो टाइम भी इतने अच्छे से बीतता है कि पता ही नहीं चलता। और ऐसे आज का दिन अपने आप में बहुत खूबसूरत भी है, बहुत से लोगों के लिए आज का दिन स्पेशल भी होगा। तो जितने भी लिसनर्स, जितने भी फॉलोअर्स अपना बर्थडे मना रहे हैं, रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम की ओर से आप लगी आप लोगों को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर परिचय फिल्म का ये जो अगला तराना है, आप सभी के नाम हम करेंगे। ऑब्वियसली परिचय ये जो फिल्म है, ये गाना जाता है लीना हलकोरी जी आपके लिए। वी हैव प्रेमिला, तस्मीम बंधु जी थैंक यू। वी हैव एजे, एजे गाना आपके लिए और अंजू के लिए भी। नसरीन जी गाना आपकी ओर से आपके हस्बैंड फिरोज़ वजिया के लिए। लक्ष्मी जी आपका भी मैसेज हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाऊं।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए उम्मीद करते हैं इन गानों को आप भी गा रहे होंगे और गुनगुना रहे होंगे। परिचय फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आप सुन रहे थे और बढ़ते हैं हम इस अगले फरमाइश की ओर। इस समय अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से हमारा साथ दे रही हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी फॉर लविंग द सिलेक्शन हमेशा की तरह। और अगला जो गाना है छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये तराना आपके सभी फ्रेंड्स के लिए, आपके सभी फैमिली के लिए, हमारी रेडियो मनोरंजन की टीम के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और यही गाना उन सभी के लिए जो गानों को पसंद करते हैं। छोटी सी मुलाकात का ये तराना है रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ों में। यही गाना जाता है अनीता प्रसाद जी आपके नाम। इस समय फिजी से हमारे साथ कनेक्टेड है वी हैव अनिल मंगरू एस रामेन, रॉक गंगाराम जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। गंगाराम जी थोड़ी देर में आपने जो गाना मांगा है हम इसे चलाने की कोशिश करें। आता है आपकी मामा कमलाबाई के नाम सभी बीका परिवार के लिए। एंड देन वी हैव बीना रेणुका जी, ये गाना आपके नाम भी और सभी बोध परिवार के नाम जो इस समय लामोरी से हमारे साथ कनेक्टेड है। शोभा जी वाकवा से साथ दे रही है और अनिल कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सिलेक्शन है तो थैंक यू वेरी मच।
2: तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए सुहाना सफ़र ये जो प्रोग्राम है इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं एक बजे के समाचार की ओर। और ये जो अगला तराना है यहाँ पर जाता है प्रकाश जी आपके नाम, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये गाना होगा। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे एक बजे के समाचार की ओर, और समाचारों के उस पार हम मिलेंगे आपसे सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम के सेकेंड आवर में। तो आप हमारा साथ यूँ ही देते रहे ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: एक बज चुका है, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे। आशिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरीशस सरकार एक कार्बन न्यूट्रल ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कल डर्बन में आयोजित सादेक शिखर सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डेटा सेंटर की सेवाएं पूरे क्षेत्र के लिए उपलब्ध हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मॉरीशस की विभिन्न पहलों पर भी विस्तार से चर्चा की। उनके अनुसार इन पहलों से अफ्रीका को काफ़ी लाभ मिल सकता है। जैसे कि आपको बताया कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ छात्र कल स्कूल लौटे, लेकिन इस बार उनके लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के छात्रों को अब स्कूल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि नए नियमों के तहत छात्रों को मोबाइल फ़ोन अपने साथ रखने की अनुमति है, बशर्ते फ़ोन बंद हो और सुरक्षित तरीके से रखा गया हो। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्कूल से अधिकतम 5 दिनों तक सस्पेंशन भी शामिल हो सकता है। कक्षाओं में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ कॉन्सेई दे रिलिजियों यानी धार्मिक परिषद ने नागरिक शिक्षा के समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर एकता का आह्वान किया है। परिषद ने कहा कि समाज को कमजोर करने वाली सामाजिक बुराइयों में हो रही बढ़ोतरी चिंता का विषय है। परिषद ने इस बात पर भी जोर दिया कि युवाओं में जिम्मेदारी की भावना, दूसरों के प्रति सम्मान और आलोचनात्मक सोच समेत कई महत्वपूर्ण मूल्यों को विकसित करने की उचित अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कॉन्सेई दे रिलिजियों के अध्यक्ष पेया फिलिप गुपी इस बुलेटिन से ठीक पहले प्रसारित हुए कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे, यानी कि कल रात के कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार जर्मनी ने नए कानून के तहत पहली बार उन तस्करों के खिलाफ छापेमारी की है जो इंग्लिश चैनल के रास्ते छोटी नावों से प्रवासियों को ब्रिटेन भेजने के लिए जर्मनी को एक पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इस साल वसंत ऋतु में नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया क्षेत्र में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9,000 से अधिक लाइफ जैकेट, दर्जनों छोटी नावें और उनके इंजन तथा 360 पंप जब्त किए। इन छोटी नावों और अन्य उपकरणों को अब एक गुप्त स्थान पर रखा गया है। ब्रिटेन की नेशनल क्राइम्स के अनुसार इन नावों के जरिए 2,000 से अधिक प्रवासियों को अवैध रूप से इंग्लिश चैनल पार कराया जा सकता था। पश्चिमी जर्मनी में सक्रिय तस्कर लंबे समय से गैराज या गोदामों में नावों और अन्य उपकरणों को छिपा कर रखते हैं और बाद में उन्हें उत्तरी फ्रांस पहुंचाती हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, सुनते हैं शुभ समाचार। शुभ समाचार सुनिए। रूट कास्केट पाल्मा कैट्रोबोन में, रूट कास्केट पाल्मा कैट्रोबोन में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीराबाई रागू पैदाश नाम कहानू और जिन्हें शांति के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री आनंद रागू के घर पाल्मा कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा के शमशान

0: भूमि ली जाए जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी हाँ सुहाना सफर एंड सुहाना सफर का ये सेकंड आवर चल रहा है जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो सो मच आपके इस प्यार भरे साथ के लिए दोपहर का वक्त और इतने खूबसूरत गाने उम्मीद करते हैं ये वक्त बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और चलिए यहाँ पर जितने भी लिसनर्स आज अपना बर्थडे मना रहे हैं आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम की ओर से यहाँ पर अगला गाना जाता है मानिता जी की ओर से मानिता जी कह रही कि हमारी प्यारी वेदिता का कल बर्थडे था तो एक गाना उनके लिए हो जाए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करते हुए और साथ ही यहाँ पर आपको विश कर रहे हैं ये सभी लोग जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है वी हैव साहिल हमारे साथ है हमारे साथ परी है हमारे साथ माधुरी जी है इन सभी की ओर से ये तराना हमारी प्यारी वेदिता के लिए और उन सभी के नाम जो भी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: यकीनन इन गानों से कौन भला प्यार नहीं करता है। गाने भले पुराने हैं लेकिन कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, और सुहाना सफर का ये जो सफर है इन्हीं गानों के जरिए तो यादगार बनता है। इस समय उमा जी क्यूपिप से हमारा साथ दे रही है, कह रही

0: enjoying a lovely nice selection. Thank you so much Shoma ji इस प्यार भरे साथ के लिए. And यहाँ पर अगला मैसेज आया है. हेलो लवली लेडी सुमी. हेलो दारेन जी, कैसे हैं आप? और अगला गाना जाता है दारेन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेशा, सभी आपादू फैमिलीज के नाम जो रोशनुआ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं.
1: RM3 Radio.

चलिए यहाँ पर हम तो है आपका साथ देने के लिए, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई नहीं, हम हैं यहाँ पर 2 बजे तक आपके साथ साथ रहेंगे। और थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे साथ के लिए जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। और देन यहाँ पर विश्वानी दुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अगला जो गाना है प्यासा सावन, इस फिल्म का गीत होगा। सुबिता जी आपके नाम इस गाने को हम करेंगे। देन वी हैव बबीता जी, वी हैव जैनी, धर्मेंद्र, जैविन, ज्ञानी, सिस्टर, ब्रदर, आपके पूरे परिवार के लिए गाना। बिल्कुल, कविता जी है, मोहन है, रेखा है, अंबिका जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, गानों को इन्जॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं और हम आपके साथ को एंजॉय कर रहे हैं।

0: सुहाना सफर
1: चलिए सुहाना सफर, ये प्रोग्राम है रेडियो मनोरंजन पर और बस कुछ ही मिनटों में हमारा ये जो आज का सफ़र है ये ख़त्म होने को चला। और चलिए इस अगले गाने में कविता जी आपका नाम हम जोड़ते हैं, बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रही है। विशाल जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे हमारे लिसनर्स, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स ऐसे होते हैं कि लंच टाइम के बीच थोड़ा वक्त मिल जाता है तो जुड़ जाते हैं और बीच बीच में मौका मिलता है तो सुनते ही रहते हैं। बस आपका प्यार यूँ ही मिलता रहे हमें, ऐसी उम्मीद हम करते हैं।

दोस्तों इसी गाने के साथ सुहाना सफर ये प्रोग्राम समाप्त होने को चला। आपका प्यार भरा साथ हमें मिला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिए, साथ देते रहिए। 2 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आप सुनेंगे उड़ान की कहानी इस प्रोग्राम को रत्ना की प्रस्तुति में। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार आप सभी को।

0: Radio and Gen Radio.
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your.
2: एक बार फिर सुनते हैं देश विदेश की खबरें. आपसे आशिता नमस्कार. आपको
3: नमस्कार नीतूषा. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका के नए उच्चायुक्त अब अपने पद पर कार्यरत हो गई हैं. हेनरिच रोवानी एप्रिल ने आज 18 अगस्त राष्ट्रपति धर्मवे गोखुल के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए. ये मुलाकात शातुद्रेजी में हुई. हेनरिच रोवानी एप्रिल ने डॉक्टर हिला मालानी नेली मंजिनी का स्थान लिया है. अब वह मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे. कक्षाओं में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ कोंसेई दे रिलिजियों ने नागरिक शिक्षा के समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर एकता का आह्वान किया है. परिषद ने कहा कि समाज को कमजोर करने वाली सामाजिक बुराइयों में हो रही बढ़ोतरी चिंता का विषय है. परिषद ने इस बात पर भी जोर दिया कि युवाओं में जिम्मेदारी की भावना, दूसरों के प्रति सम्मान और आलोचनात्मक सोच समेत कई महत्वपूर्ण मूल्यों को विकसित करने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए. नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ छात्र कल स्कूल लौटे, लेकिन इस बार उनके लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के छात्रों को अब स्कूल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि नए नियमों के तहत छात्रों को मोबाइल फोन अपने साथ रखने की अनुमति है, बशर्ते फोन बंद हो और सुरक्षित तरीके से रखा गया हो. इन नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी. इस समय स्कूल से ज्यादा 5 दिनों तक सस्पेंशन भी शामिल हो सकता है. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली जानकारियों के अनुसार जर्मनी के नए कानून के तहत पहली बार उन तस्करों के खिलाफ छापेमारी की है जो इंग्लिश चैनल के रास्ते छोटी नावों से प्रवासियों को ब्रिटेन भेजने के लिए जर्मनी को एक पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करती है. इस साल वसंत ऋतु में नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया क्षेत्र में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9,000 से अधिक लाइफ जैकेट, दर्जनों छोटी नावें और उनके इंजन तथा 360 पंप जब्त किए हैं. उधर रूस ने ब्रिटेन पर यूक्रेन संकट को जानबूझकर और बढ़ाने का रास्ता चुनने का आरोप लगाया है. ये आरोप उस पुष्टि के बाद आया है कि रूस के भीतर ठिकानों पर किए गए हमलों में ब्रिटेन में निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था. ब्रिटेन में रूसी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि ऐसा करके ब्रिटेन खूनी अपराधों और आतंकवादी हमलों में सहयोगी और सअपराधी की भूमिका निभा रहा है. दूतावास ने कहा कि लंदन के कदमों के निश्चित रूप से परिणाम होंगे जिनके लिए उससे जवाब देना पड़ेगा. साथ ही चेतावनी दी गई है कि संघर्ष में ब्रिटेन की भागीदारी जितनी गहरी होगी उसे उसकी उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. साथ रही सुन पाएंगे एक शोक समाचार. बेंगाली स्ट्रीट लातूकिनिक पॉइंट सैबलू में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री शिवरसाद सिंह मंगला जिन्हें अजीत के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, उनके अर्थी आज शाम 3 बजे मुआ पुजित रविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाली दीपायत की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी। उड़ान की कहानी कार्यक्रम

0: कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत ही हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं। आज हम एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं एक और सशक्त महिला की कहानी जो है उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे उड़ान की कहानी के माध्यम से। और आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी महिला जो करियर ओरिएंटेड होने के साथ साथ अपनी संस्कृति को आगे ले जाने में भी वे अपना उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है। अपनी भाषा अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने में वे बहुत ज़्यादा गर्व अनुभव करती हैं और साथ ही साथ सशक्त हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत रखती हैं और परिस्थिति के अनुसार ढलने का उनका जो जज्बा है बिल्कुल काबिले तारीफ। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं श्रीमती विजेता बाल गोविंद, जिसे सभी लोग श्रेष्ठा के नाम से जानते हैं। आइए स्वागत करते हैं श्रेष्ठा जी का। श्रेष्ठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद रत्ना जी।
0: और आज के इस कार्यक्रम में आप बड़ी प्यारी लग रही हैं।
1: धन्यवाद।
0: और
1: आप भी।
0: हाँ जी, थैंक यू। और मैं समझती हूँ हर एक महिला भाई अपने आप में बहुत ही सुंदर होती है और आज हमारे समाज में से एक और ऐसी महिला आई है जो कार्यालय में कार्यरत है, एक ऑफिसर का काम करती है, पर साथ ही साथ वे सोशल लाइफ में बड़ी एक्टिव हैं और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृति के साथ जुड़ी है, अपनी भाषा के साथ हुई है। तो भाई आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले तो मैं श्रेष्ठा जी आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि हमारी आज की आधुनिक महिला की परिभाषा क्या है।
1: सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि आज आपके इस मंच पर आकर एक दो शब्द कह पाऊँ। धन्यवाद रत्ना जी। तो मेरे ख्याल से एक आधुनिक महिला के लिए संस्कृति से जुड़ाव अपनी प्रगति में बाधा नहीं बल्कि उसकी पहचान और शक्ति का आधार है। जितनी आप संस्कृति से जुड़ते हैं उतनी आपकी प्रगति एनशोर्ड है। अपनी परंपराओं, मूल्यों और संस्कारों को सम्मान देते हुए शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अपने निर्णयों के अधिकार के साथ आगे बढ़ना ही एक सशक्त नारी की पहचान है।
0: बहुत बड़ी बात आपने कही क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ रहे हैं पर कई बार कहते हैं ना कि हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम ये भी होता है कि मॉडर्नाइजेशन के साथ हम भी मॉडर्न बनना चाहते हैं पर जहाँ पर कहीं भाषा की बात आती है या कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारी जो संस्कृति है हमें उसको प्रदर्शन करना है अपने पहनावे से, अपने ढंग से, अपनी भाषा के माध्यम से। तो कई सारे लोग हैं जो बहुत छोटा अनुभव करते हैं, कई बार उनको शर्म आती है कि भाई मैं हिंदी में क्यों बात करूं या मैं भोजपुरी में काहे बतियाब। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सशक्त बनाती हैं, हमारे जो मूल है, हमारे जो रूट्स है उसे जुड़े रहने के लिए ये हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जब हम महिला की बात करते हैं, महिला की परिभाषा की बात करते हैं, तो मैं जरूर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी श्रेष्ठा जी कि सशक्त नारी की परिभाषा क्या है।
1: देखिए, नारी को हमेशा से जननी, गृहिणी, शक्ति का नाम दिया गया है
0: जी।
1: नारी समृद्धि का प्रतीक है। यह आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व की जगह ले रही है। कितने देशों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा चुकी हैं नारियां।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी हम मान लीजिए कंगना रनौत की बात करते हैं, वो तो एक्ट्रेस थी, बॉलीवुड में थी,
0: सही,
1: फिर भी वह संसद में कार्यरत हैं और उसके मॉडर्न लाइफ ने, उसके आधुनिक जीवन ने उसे अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से जुड़ने बाधा नहीं बना उसके जीवन में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोई भी महिला किसी भी स्तर पर पहुंच जाए लेकिन अगर वो अपने संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ती है तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट करता है, ये उसे एक रोल मॉडल बनाता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं
1: कर सकते।
0: बिल्कुल। और मैं समझती हूँ बिल्कुल श्रेष्ठा जी से, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि आप किसी भी स्तर पर पहुंच जाए आप अपनी संस्कृति का मान करें, आप अपनी भाषा का मान सम्मान बनाए रखें क्योंकि यही एक तरह से आपकी पहचान, आपकी असली पहचान है और ये कहीं ना कहीं आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं ये उस धर्म

0: को लेकर आप देखेंगे कि किस तरह से आपका जो रोल है वो उभर कर सामने आता है। और मैं जब महिलाओं की बात करती हूँ तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी श्रेष्ठा जी के विचारों में पहले की जो नारियाँ थी और आज की जो नारियाँ हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्या पहले की नारी सशक्त थी या फिर आज की नारी सशक्त है, क्योंकि मैं भी खुद एक नारी हूँ और हर एक स्टेज पर हम आगे बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी।
1: मेरे हिसाब से सच पूछिए तो पहले की नारी ज़्यादा सशक्त थी। आप कहेंगे कि अभी आधुनिकीकरण है, मॉडर्निटी है, सब है हमारे पास, पर फिर भी मुझे लगता है कि पहले की नारी ज़्यादा सशक्त थी। अब हमारे परिप्रेक्ष्य में ही मान लीजिए, हमारे पूर्वज जब मॉरिशस आए थे तो केवल एक रामायण लेकर आए थे और कुछ नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: उस रामायण की नींव में उन्होंने इतना सुंदर देश बनाया। माताएं महिलाएं घर पर रहती थी, फिर भी उन्हीं जननी के माध्यम से कितने डॉक्टर बने।
0: सही बात, बिल्कुल सही कहा।
1: तो उनके पास तो पढ़ाई
0: डिग्रियां नहीं थी, उनको तो पढ़ना तक नहीं आता था। उन्हें तो वो तो कभी स्कूल, और पहले के जमाने में तो पुरुषों को पढ़ाया जाता था, महिलाओं को पढ़ने का उतना हक भी नहीं था। पर फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को इस लेवल तक
1: पर पहुंचाया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि पहले की महिलाएं जो थी भले पढ़ी लिखी नहीं थी पर बहुत ज्यादा सशक्त थी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो सैक्रिफाइसेस किए, वो जो बलिदान किए और अपनी अपने शरीर को कसते हुए उन्होंने घर में एक तरह से प्रोग्रेस करना, साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना, साथ ही साथ घर बार को बढ़ाना, ये कोई छोटी बात नहीं। और पहले की महिलाएं जो थी, हम कह सकते हैं कि आज की महिलाएं भाई करियर ओरिएंटेड है हम कहते हैं, और आज के समय में महंगाई के ज़माने में हम केवल एक बच्चे या दो बच्चे के साथ, और पहले के ज़माने में 10-10, 15-15 बच्चे हुआ करते थे, और ऐसे समय में जहां आर्थिक परिस्थिति उतनी कठिन थी वहां पर ये महिलाओं ने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर उनको सारी सुख सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है काबिले तारीफ़ है। और बिल्कुल उड़ान की कहानी, हमें सच में बहुत गर्व महसूस होता है कि आज इस उड़ान की कहानी के मंच पर हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ी हैं जो बिल्कुल बहुत बोल्ड है, अपनी आवाज़ में बहुत बुलंद आवाज़ में कहती है कि अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि आज के समय में जहां पर हमारे साथ कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, यही हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं और आते हैं अभी थोड़ी ही देर में। वैसे हम आपको ये भी बताते चले, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में इस वक्त हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। तकनीक पर हमारे साथ जुड़े हैं यज, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरुसा बानो और हमारे साथ प्रोड्यूसर है महादेवन। तो बस कार्यक्रम को जारी रखते हैं इस गीत के बाद।

0: जी हाँ, उड़ान की कहानी कार्यक्रम में बिल्कुल अभी जैसे बताया होम मिनिस्टर हर नारी, और जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक नारी बिल्कुल सम्मानित है, पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो नारी है वो केवल बलिदान के लिए बनी है, केवल उनको सैक्रिफाइसेस ही करनी है, साथ ही साथ उनको मूल्यों का भी ख्याल रखना है, मोरल वैल्यूज़ का ख्याल रखना है, अपनी ट्रेडिशन का ख्याल रखना है। इन सारी चीज़ों को ख्याल रखते रखते चलिए जानते हैं श्रेष्ठा जी से कि संस्कारों का ध्यान रखना और फिर बलिदान करना और मूल्यों की बातों का ध्यान रखना, क्या समाज में इन सारी चीजों के साथ ही एक नारी सम्मानित बन सकती है? आइए जानते हैं श्रेष्ठा जी से। श्रेष्ठा जी, आपका क्या कहना है?
1: मुझे लगता है कि नारी संस्कारों का घरौंदा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सैक्रिफाइस का भी, ममता का भी और प्रेम का भी। वैदिक काल में विभिन्न महिलाएं हैं जिनका हम उदाहरण ले सकते हैं, पर मैं हमेशा सीता माता से एक उदाहरण लेती हूँ। आपने कहा सैक्रिफाइस, अब सीता माता का ही ले लीजिए। मिथिला में पली बड़ी थी,
0: सही,
1: बाद में राजघराने में श्री राम जी से विवाह हुआ, पर जब वन जाने का समय आया तो बिल्कुल संकोच नहीं किया वन जाने के लिए, अपने पति के पीछे वह भी
0: चल पड़ी।
1: पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि मैं राजघराने से आई हूँ और राजघराने में मेरा विवाह हुआ है। उसे वन में जाने के लिए केवल पति का ही जो रास्ता था उन्होंने पकड़ा,
0: अपना लिया। बिल्कुल,
1: अर्थात उनका यह निर्णय केवल पति का अनुसरण करना नहीं था, यह उनके साहस, आत्मविश्वास और जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को दर्शाता है।

0: सही सही, तो मैं समझती हूँ आज का जो आधुनिक काल है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप जोड़ना चाहिए,
1: यही हाँ है हमारे नारी सशक्तिकरण का सुंदर संदेश।
0: बिल्कुल, एक एक बहुत ही ठोस उदाहरण
1: कि सशक्त महिला वह नहीं जो केवल सुख सुविधाओं में जीवन बिताए, बल्कि वह है जो परिस्थितियां बदलने पर भी निर्णय, आत्मसम्मान और मूल्यों के साथ दृढ़ता से खड़ी रहे।
0: सही कहा, क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लुप्त होती जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे यहाँ पर परिस्थिति बदली, पति की परिस्थिति बदलने पर जिस तरह से माता सीता उनके पीछे, पीछे चल पीछे, पड़ी, ना कि ऐसा कि भाई तुम्हें मिला है वन में जाना, आपको मिला है
1: जाओ।
0: तो मैं राज घराने में ही रहती हूँ, मुझे क्या जरूरत है वहां जाने की। लेकिन नहीं, उस समय जो कहते हैं ना कि जिस तरह की संस्कृति के साथ वो शादी करके आई, ब्याह करके आई भगवान श्री राम के साथ, लेकिन उस परिस्थिति को उन्होंने
1: अपनाया
0: और निडर होकर अपनाया।
1: हाँ,
0: और ऐसा नहीं
1: बिना कोई संकोच,
0: बिल्कुल उन्हें पता नहीं था कहाँ रहेंगे, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ सोएंगे, कुछ नहीं पता था, फिर ऐसी परिस्थिति को भी उन्होंने डटकर सामना किया। 14 वर्षों तक वे भी प्रभु श्री राम के साथ जंगलों में रही। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे जीवन में, हम कहते हैं ना कि रामायण जो है वो उस काल के लिए था, लेकिन नहीं, आज के समय में भी अगर
1: हर एक परिप्रेक्ष्य में
0: रामायण अगर हम आज भी पढ़ते हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें वहां पर मिल जाता है। कई बार बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि ये सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी है, लेकिन नहीं, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो ये जो सारी ग्रंथ हैं, उनमें से ही हमें अपने जीवन का एक सही सोल्यूशन मिलता है। बिल्कुल, और आज हम जब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आज श्रेष्ठा जी आज की महिला हैं, एक करियर ओरिएंटेड वुमेन है, लेकिन अपने संस्कृति का उतना ही सम्मान करती हैं और बिल्कुल कैसे कह सकते हैं कि ठोक बजाकर अपनी भाषा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमें बता रही थी कि उनके बच्चे आज के समय में भी घर पर
1: भोजपुरी
0: बोलते हैं। श्रेष्ठा जी, आपके कितने बच्चे हैं?
1: 2 हैं, मीमांसा और अद्वैत,
0: और वे आज भी
1: भोजपुरी बात करते हैं।
0: किस उम्र के बच्चे हैं आपके?
1: 18 और 11।
0: हाँ, तो काफी, जैसे मतलब आज की जेंजीज हैं, और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उनके लिए आज के समय में भोजपुरी बोलने वाले बच्चे बहुत कम, खासकर हमारे मॉरिशस में तो बहुत ही, जैसे अपनी भाषा बोलने वाले बच्चों को देखना बहुत लुप्त होता जा रहा है।
1: तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक एडवांस है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी एक भाषा सीखना,
1: भाषा सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
0: शर्म नहीं होनी चाहिए
1: और उस पर अपनी ही मातृभाषा।
0: बिल्कुल, और वो बहुत प्यार से बात करते हैं, और घर में इनके केवल भोजपुरी बोली जाती है, ये बात बिल्कुल हमें बहुत सराहनीय लगी। और मैं पूछना चाहूंगी श्रेष्ठा जी कि आपने जब आप भाषा की बात करते हैं, तो ये भाषा के प्रति जो प्रेम है वो किस तरह से आपने जागृत रखा, किस तरह से आपने आज तक मतलब इस भाषा को बिल्कुल छोड़ा नहीं है?
1: वैसे तो मैं बेलबा ग्राम से हूँ, माता जी बैठका में लगभग 50 सालों से कार्यरत हैं वहाँ की बैठका में। पिताजी भी हिंदी के सेवक थे, तो उन्हीं के सामने पली बड़ी छत्र छाया में, माता पिता के छत्र छाया में, हिंदी भाषा की छत्र छाया में पली बड़ी हूँ। और मान लीजिए कि उन लोगों को बहुत इंग्लिश फ्रेंच नहीं आती थी, पर हिंदी को लेकर उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज इस ओहदे पर आकर भी बिना हिचक से हिंदी को का प्रचार प्रसार करते हैं, और भोजपुरी और अपना जो अपनी जो संस्कृति है उसी को उसका भी प्रचार प्रसार करते हैं।
0: तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और जब आप विवाह कर गई तो वहां पर भी क्या ये बोली, यही भाषा बोली जाती थी, या फिर वहां पर क्रियोल भाषा का चलन ज्यादा था?
1: नहीं, वहां पर भी भोजपुरी भाषा का चलन था, और मैं अपनी सासू माँ को भी धन्यवाद देती हूँ कि वह भी हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए कि चलो ये कर रही हो, ये ठीक है। और अभी बाद में आपको पता चलेगा कि मैं कुछ हल्दी गीत भी गाती हूँ, परछावन गीत भी गाती हूँ।
0: मैं यही पूछने वाली थी कि इसके अलावा आपकी अन्य रुचियां क्या है। तो जैसे आपने बताया था ब्रीफिंग सेशन के दौरान कि आपको हल्दी गीत गाना, परछावन के गीत गाने का बड़ा ही मन बहुत आपको अच्छा लगता है, तो ये सारे जो हल्दी गीत है, परछावन के गाने हैं, आपने सीखे हैं या फिर आपने सुन सुनकर उसे अडैप्ट किया?

0: वैसे तो छोटे से बड़े होते होते अब कई विवाह में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सीखना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हम मॉडर्न आधुनिक नारी समझते हैं अपने अपने आप को, लैपटॉप देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, एआई में कुछ भी, मतलब कि आधुनिकीकरण के साथ चल सकते हैं, पर उसके साथ साथ अपने जो रूट्स हैं उससे जुड़कर आगे बढ़ना ये भी अलग ही बात है।
1: बिल्कुल।
0: कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूट्स बिल्ड स्ट्रॉन्गर विंग्स।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं बहुत ही सहमत हूँ आपकी इस बात से कि अगर आपकी जड़ें मजबूत है तो आपको कोई नहीं हिला सकता। और बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी संस्कृति की पहचान है, ये आपकी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है।
0: वो तो है। और पता है जब आप ये गीत गाते हैं दिल से आती है ये सब गीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझती हूँ जहाँ पर हम जब कुछ भी गाते हैं और खासकर जब वो हमारी भाषा में होता है और उसे हम समझ के गाते हैं तो उसका जो भाव है वो अलग ही तरह निखर कर आता है।
0: उसमें से जो सुगंध निकलता है वो अलग बात है।
1: बिल्कुल। तो भाई क्या कहते हो, एक हल्दी गीत? चलिए श्रेष्ठा जी, हम जरूर चाहेंगे कि आप कुछ लाइनें हमारे प्रोग्राम में हमें गाकर सुनाएं।

0: बहुत ही सुरीली आवाज में आपने गाया, और मैं पूछना चाहूंगी आपने गायन कहीं सीखा हुआ है? आपकी आवाज बहुत ही मधुर, बहुत ही स्वीट, बहुत ही कह सकते हैं कि हम बस सुनते रहे, क्योंकि मैं समझती हूँ आवाज में वो ताकत होती है, और कुछ आवाजें इतनी ज्यादा सुरीली होती है कि बस सुनते रहो सुनते रहो। तो आपने क्या गायन कहीं सीखा हुआ है?
1: गायन सीखा नहीं है, पर बचपन से रामायण गाते हैं मंदिर में, तो अभ्यास होता रहता
0: है और उसका ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान है कि हाँ।
1: और जब आप ये जो शब्द आप गाते हो तो हर एक शब्द का एक मतलब होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लोग बीढ़ा गाते हैं, हल्दी गीत गाते हैं, परछावन गीत गाते हैं, तो उन सब का एक महत्व होता
0: है। और सच में देखा जाए तो हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हर एक प्रसंग के लिए एक गाना यूं ही नहीं बिठाया गया, क्योंकि हर एक प्रसंग में, और हम कहते हैं ना संगीत जो है वो एक तरह से आपकी खुशी को व्यक्त करता है, आपके मन के भाव को व्यक्त करता है, आपके इमोशंस को व्यक्त करता है, और जहाँ पर चाहे खुशी हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे कहीं कहते हैं ना सेपरेशन हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो गाने का, और जैसे जब बेटियों की विदाई होती है तो उस गानों को भी आप जब गाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके दिल के भाव को बहुत ही अच्छे से व्यक्त करता है,
1: दिल के भाव को उजागर करते हैं। और मुझे लगता है कि देखिए हम लोग हमको भाषा पता है, लिखना भी आता है, पर पहले वो लोग अपना बिरहा अपने दिल से जो
0: गाते थे
1: हाँ। उनको शब्द नहीं आता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जो दिल से जो भाषा
0: जो वो महसूस कर रहे हैं, जो
1: वो केवल उसको गाते थे, तो हम शब्दों को भी जानते हैं, उनका ज्ञान है हमें, तो क्यों ना हम भी इन सब चीजों से कनेक्ट हो जाएं। मुझे लगता है हमें ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए।
0: सही, क्योंकि आज के जमाने में तो हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास वाचा है, हमारे पास लिखने की क्षमता, लिखने की शक्ति है, और आजकल तो म्यूजिक भी हम कितना अच्छे से, मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ टेक्निक के माध्यम से हमें कितने नए नए उपकरण मिल रहे हैं, कितनी नई नई चीजें आ रही हैं जिसके कारण हम उसे और भी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर कहते हैं ना कि कई बार हम मॉडर्नाइजेशन के पीछे कुछ ना कुछ छूटता जा रहा है, हम नई चीजों को तो अपना रहे हैं लेकिन पुरानी चीजों को ना भूलें। किसी ने यूं ही नहीं कहा है कि ओल्ड इज गोल्ड, जो हमारा पुराना है वो हमारा है, वो अपना है, और वो हमारी जड़ें हैं जो अभी तक हमें मजबूती से पकड़े हुए हैं, और यही हमारी पहचान है। और इसी के साथ बिल्कुल गर्व महसूस करती हुई श्रेष्ठा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं कुछ ऐसी लाजवाब बातों के साथ, और भले वो एक करियर ओरिएंटेड वुमेन है, एक ऑफिसर है, साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातें जो संस्कृति को लगकर है, और इतना ही नहीं और बहुत

जी हाँ, उड़ान की कहानी और बिल्कुल सशक्त महिला की कहानी। हर एक महिला की एक अपनी कहानी होती है जो उसे स्पेशल बनाती है। और आज श्रेष्ठा जी हमारे साथ है स्टूडियो में, जो भाई विजेता भी उनका नाम है, और विजेता नाम इतना प्यारा, यानी हर एक चीज़ में विजय पाना। और बिल्कुल श्रेष्ठा जी हमारे साथ बड़ी प्यारी मुस्कुराकर हमारे साथ बातें कर रही है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी श्रेष्ठा जी, जैसे पहले के समय में महिलाओं का जो रोल था वो बहुत

0: ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ करता था, क्योंकि एक पुरुष प्रधान समाज में जब हम रहते हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस उनको फेस करनी पड़ती हैं। पर आज महिलाएं करियर ओरिएंटेड हो चुकी है, यानी केवल घर गृहस्थी को नहीं समाज में भी एक कदम जमा चुकी हैं। तो ऐसे में आप एक महिला हैं, करियर ओरिएंटेड वुमेन है, क्या आपके हिसाब से या आपके परसेप्शन में आपको लगता है कि आज भी महिलाएं चैलेंजेस फेस करती हैं?
1: महिला हमेशा से चैलेंजेस फेस करती आ रही है, चाहे पहले के ज़माने में हो या फिर अभी के ज़माने में। फर्क बस इतना पड़ता है कि परिप्रेक्ष्य बदल गया है।
0: बिल्कुल,
1: परिप्रेक्ष्य बदल गया है और अब हम ज़्यादा सशक्त हैं। हम अपना बौद्धिक स्थिति, हमें पता है कहाँ है, हाउ आवर मेंटल स्टेट इज़, कैसे हम एक इशू को, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उसका सामना कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पहले मैं समझती थी एक रूप से देखा जाए तो महिलाएं जो थी वो डिपेंडेंट थी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पर उतनी ज़्यादा सशक्त नहीं थी, यानी जो ब्रेडविनर होता है, जो वो कहे उसी को फॉलो करना।
1: पर इसका भी मतलब बदल गया है,
0: बिल्कुल
1: ना?
0: बहुत ही
1: इसका भी मतलब
0: बिल्कुल,
1: बदल
0: बिल्कुल
1: गया
0: एक
1: है
0: तरह
1: अब।
0: से देखा जाए तो महिलाएं फाइनेंशियल तौर पर, सामाजिक तौर पर, इमोशनली तौर पर हम देखा जाए तो आज महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा केपेबल हो चुकी हैं और एक तरह से डिसीजन मेकिंग में भी कहीं ना कहीं फैमिलीज में उनको एक उनकी जो ओपिनियन है उनको भी मान दिया जाता है।
1: और एक और बात है रत्ना, कि पहले जैसे कि महिलाएं, वैसे शर्म की बात नहीं है, महिलाएं ही महिलाओं
0: को कैसे रास्ता काटती हैं।
1: पर हमें इस को अब छोड़ना चाहिए पीछे।
0: बिल्कुल सही।
1: अगर आप आधुनिक हो तो आप एम्पावर वुमन कर, एम्पावर करिए अपने दोस्तों
0: सही
1: को।
0: सही बात एम्पावर
1: टू अचीव, एम्पावर टू शाइन टुगेदर।
0: और मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। लेट्स ग्रो टुगेदर, क्योंकि मैं समझती हूँ एक दूसरे का सहारा बनकर ही हम
1: आगे बढ़ सकते हैं,
0: निखर भी सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो आगे बढ़ने के लिए अगर हम किसी का सहारा बनते भी हैं तो इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड भी नहीं फील करना चाहिए कि ठीक है चलो हम किसी के हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से उन्हें हमारी आवश्यकता है और ये ज़रूरी है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक दूसरे को साथ देने के बजाय हम एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है।
1: इस मेंटालिटी को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए। अगर हम अपने आप को सशक्त एम्पावर्ड वुमन मानते हैं तो हमें चाहिए कि अपने साथ साथ पीछे जो छूट गए हैं उनको भी साथ लेकर चलें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उनको सहारा दे, उनको सहयोग दे, उनको गाइडेंस दे। कहीं ना कहीं आज मैं समझती हूँ समय बदल रहा है और इस समय परिवर्तित समय के साथ हमारी सोच में भी वो परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ओके मॉडर्न तो हम हो रहे हैं, फिजिकली मेंटली हमारे कपड़ों का ढंग बदला है, बहुत सारी चीजें आई है, पर मेंटालिटी अगर हमारी पुरानी रही
1: तो क्या क्या अर्थ है सशक्त वुमन रहने का।
0: क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो छोटी सोच, ये जो हम कहते हैं ना कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं, दिमागी सोच से हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो इसे अगर बदलना है तो बिल्कुल मॉडर्न बनिए। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि ये सारी चीजें पैरेलल चलनी चाहिए।
1: मॉडर्न केवल भाषा या फिर पहनावे से नहीं, अपने सोचने विचार
0: ढंग से भी मॉडर्न बनना है। बिल्कुल, जैसे हम सारी चीजों को अगर अपनाते हैं, अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, मॉडर्न बनते हैं, पर हमारी सोच अगर आगे ना चले तो कहते हैं ना जैसे एक गाड़ी में चार पहिए होते हैं, अगर तीन पहिए सही स्पीड में चले और एक पहिया ना चले तो गाड़ी तभी ब्रेक डाउन होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सारी चीजों को बिल्कुल लेवल अप करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जब हम लेवल अप करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग ही नजारा होगा, एक अलग ही दृष्टि होगी और बिल्कुल वो बहुत ही निखर कर उभर कर आएगी। और आज हमारे साथ श्रेष्ठा जुड़ी हुई है। श्रेष्ठा जी, आपको हम बताते चले, हमारे श्रोताओं को बताते चले, बिल्कुल श्रेष्ठा जी प्रवासी भारतीय दिवस को भी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसे रहा। पहले तो हमें ये बताएं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली।
1: इनफैक्ट मैं दो बार प्रवासी भारतीय दिवस में भाग ले चुकी हूँ। पहली बार यूथ इंटर्न्स, बहुत यंग थी, 21 साल की थी शायद, तब मैंने पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस जो मुंबई में ऑर्गेनाइज किया था उसमें भाग लिया था। और वहाँ पर इंटरनेशनल स्टेज में टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा फोटो भी आया था, अभी तक रखा है उसको।
0: बिल्कुल, ये तो एक

0: एकदम, ये तो एक कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा एक यादगार रहा होगा, मैं समझती हूँ आपके लिए.
1: मेरा एक इंटरव्यू है और टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो जो उसको घर पर लाए न्यूज़पेपर को, अभी तक संभाल कर रखा
0: है, फ्रेम करके रखा है.
1: अब हर बार तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया में तो नहीं आ सकते ना.
0: नहीं, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सोचिए, आप किसी देश में जाते हैं और वहाँ के न्यूज़पेपर पर या फिर वहाँ के रेडियो पर या फिर वहाँ के टेलीविजन पर आपको आमंत्रित करना, ये सोचना मात्र एक बहुत ही बड़ी बात है. और खासकर जब भारत जैसे देश की जब हम बात करते हैं, देखिए जैसे हम मॉरिशस की बात करते हैं, मॉरिशस तो हालांकि एक छोटा सा टापू है, पर फिर भी यहाँ पर एक बहुत बड़े मंच पर आपको अगर आमंत्रित किया जाए या फिर कहीं पर आपका नाम लिया जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं. और तो सोचिए, आप भारत जहाँ पर इतनी करोड़ों में आबादी है, वहाँ पर आपको चुना जाता है और आपका फोटो वहाँ के अखबारों में न्यूज़पेपरों में आता है.
1: ये एक बहुत गर्व की बात है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और एक अचीवमेंट की भी बात है, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े
0: पैमाने पर
1: मेरा भी कुछ नाम आएगा. तो मैं खुद पर गर्वित हूँ इस पर. और दूसरी बात है कि उस समय हम लोग यूथ इंटर्न्स के रूप में गए थे, तो प्रवासी भारतीय दिवस का सेकंड एडिशन था, अभी सब नया था. फिर भी जो कुछ सीखने को मिला उसको समेटे हुए मैंने फिर से सोचा कि वैसे तो समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला फिर से जाने के लिए, पर दो साल पहले 2024 में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस में फिर से भाग लेने का अवसर मिला, और उड़ीसा में जिसका आयोजन हुआ था, और वहाँ पर भी हमने अनेक इंटरव्यूज दिए. और सबसे जो सराहनीय बात थी कि हमें मोदी जी का जो संदेश है आमने सामने
0: आपको सुनने का मौका मिला. बिल्कुल बिल्कुल. ये एक बहुत ही बड़ी बात है.
1: बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है. और जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम,
0: बिल्कुल,
1: और वे मानते हैं कि हम प्रवासी जो हैं एक ही पेड़ के जो ब्रांचेज हैं,
0: सही,
1: हम लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं और हमारा रूट्स जो है वह भारत है.
0: सही बात. और जैसे एक तरह से ये बात हमें कहीं ना कहीं जोड़ता है, हमें कहीं ना कहीं समान बनाता है. और ये जैसे बिल्कुल भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये मानना है कि ये पूरा विश्व एक कुटुंब है. और अगर हम इसी धारणा को लेकर चलते हैं, इसी माइंडसेट को लेकर चलते हैं, तो जो ये आपसी मनमुटाव है, ये जो भेदभाव है, ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिस्प्यूट खड़ा कर रही है, लड़ाई झगड़े या कहते ना कि प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं, वॉर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट की ही बात करते हैं. कि आज घर में हम कहते ना कि हमारे घर में सारा कुछ है, टेबल सेट है, सोफ़ा सेट है, बहुत अच्छी चीजें हैं, पर अगर माइंडसेट ठीक ना हो तो कुछ भी ठीक नहीं. तो कहीं ना कहीं ये एक माइंडसेट वाली बात आ जाती है.
1: हाँ,
0: तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी श्रेष्ठा, जब आप पहली बार भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस में गए थे, तो तब का अनुभव आपका कैसा रहा था? मतलब जब आप पहली बार, तब आप पहली बार भारत गई थी या उससे पहले आप जा चुके?
1: मैं पहली बार भारत गई थी.
0: तो आप फैमिली से दूर थे, तो आपका कैसा अनुभव रहा?
1: बहुत अच्छा अनुभव रहा. जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला.
0: बिल्कुल.
1: पूरे विश्व के लोगों से मिलने का अवसर मिला, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह प्रवासियों को एक छत के नीचे एक सभी को बुलाता है, ताकि सभी लोग मिल सके.
0: बिल्कुल. आइडियाज एक्सचेंज हो.
1: यहाँ तक कुछ लोग बिजनेस एक्सचेंज करते हैं, मैंने बिजनेस
0: डीलिंग्स
1: करते हैं. तो बहुत बहुत लोगों से बात हुई. और पहली बार जब मैं गई थी प्रवासी भारतीय दिवस में, तो एक बात मुझे अभी तक याद है, तब प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम थे.
0: हाँ जी.
1: तो उनको बहुत पास से देखने का अवसर
0: मिला. वही सही बात.
1: और उसी समय उनको एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे.
0: जी, तो एक फिजिशियन थे
1: कुछ ऐसा.
0: हाँ.
1: तो उनको आमने सामने बहुत पास से देखने का अवसर मिला.
0: उनका जो ऑरा, उनकी जो ऊर्जा थी, वो बहुत ही अलग लेवल की. और सच में वो, और कह सकते हैं कि भले वो बड़ी उम्र में थे, लेकिन वो यंगस्टर्स के जो आइडियाज इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में बहुत मानने वाले, यानी कुछ भी नई चीज को वे बहुत ही दिल से अपनाते थे.
1: बिल्कुल. तो तब मुझे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम का दर्शन हुआ,
0: हाँ जी।
1: और इस बार गई तो श्री नरेंद्र मोदी जी का दर्शन हुआ।
0: ऐसी

0: मतलब लाइफ टाइम में आपको ऐसा अवसर मिला?
1: मुझे तो बस यही, ये भी सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है।
0: बिल्कुल, उनका एक दर्शन मात्र हो जाना, हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी बात है।
1: क्योंकि ये लोग जो हैं, इन लोगों में वो ओरा है कि वे लोग लोगों को अपनी बातों से, अपने कामों से इंप्रेस करते हैं और आपको राह दिखाते हैं।
0: सही बात। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें, अगर हम थोड़ा सा इनमें से

0: प्रतिशत ही ले लेते हो।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जीवन सवर जाए कि चलिए लोगों को बदलने के लिए, लोगों को गाइडेंस करने के लिए, जैसे आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर हम उतारे अपने जीवन में कि आगे बढ़ने के लिए नए समय को अपनाएं, बिल्कुल नई जो बदलती राहें हैं उनको हम अपनाएं, पर हम अपने जड़ों के साथ जुड़े रहें, संस्कृति के साथ जुड़े रहें। और यही हमारे कार्यक्रम का भी उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं जब हम सशक्त बनते हैं तो सशक्त हम अपनों के बलबूते के साथ, अपनों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ बनते हैं, तब जाकर हम अपनी एक पहचान बनाते हैं समाज में। और आज एक ऐसी ही पहचान बनाई हुई नारी हमारे सामने बैठी हुई है। चलिए लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं थोड़ी ही देर में उड़ान की कहानी को बस अंत तक ले जाने के लिए हमारे साथ बने रहें।

0: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उड़ान की कहानी में, और उड़ान की कहानी जहाँ पर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सशक्त महिलाओं की बात करते हैं। समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज परिवार को सपोर्ट करती हैं, घर को सपोर्ट करती हैं, समाज में एक स्थान उनका बना चुकी हैं और देश को आगे ले जाने में महिलाओं का बड़ा योगदान। पर आइए जानते हैं श्रेष्ठा जी से कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जब हम करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट आपके अनुसार क्या है?
1: मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। मिनिस्टर हो, लेडी मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, सर्जन हो, लेडी सर्जन हो, ऊपर से गृहिणी, जो आज हम रास्ते पर चलते हैं तो मैं रोज देखती हूँ सवेरे वो महिलाएं रास्ते साफ करती हैं, मैं उनको शत शत नमन करती हूँ क्योंकि वे लोग इस देश को इतना सुंदर रखने के लिए इतना मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि वे बड़े ओहदे से ज्यादा उनको हमें इस सराहनीय कार्य के लिए नमन करना चाहिए।
0: सही सही। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं वो जिस तरह से उनका योगदान दे रही हैं, ये एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है।
1: बहुत ही सराहनीय काम है क्योंकि वे अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: वैसे तो आप एक ओहदे पर हो, आप एक पद पर हो, तो आप सीखते हो उस काम को, आपको वो काम आता है, पर जब आप रास्ते पर साफ करते हो, अभी मुझे हाल ही में कई महिलाएं देखी, वो लोग मांसों का काम करती हैं
0: जी,
1: और अपना काम पूरी अच्छी तरीके से करते हैं। तो इतना सशक्त हो गई है नारी, मॉरिशन नारी देखिए, कि हर एक क्षेत्र में हम उनको आगे देख रहे हैं।
0: सही कहा,
1: कोई कोई न कोई बड़ा है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है, सब मिलकर समाज की प्रगति के लिए आगे बढ़े, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप क्लीनर हो, चाहे आप डॉक्टर हो।
0: भले मैं समझती हूँ एक महिला अगर घर पर भी रहती हैं, घर पर अपना कार्य करती हैं, यानी घर पर महिलाओं कहते हैं बच्चे संभालती हैं, खाना पकाती हैं, उनका योगदान भी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो आपको इतनी सहूलियत दे रही हैं तब जाकर आप बाहर काम कर पा रहे हैं, मतलब कह सकते हैं ना कि एकदम शांत मन से आप काम कर पा रहे हैं। घर जब आप पहुँचते हैं तो आपको स्वादिष्ट भोजन मिलता है, साफ सुथरे कपड़े मिलते हैं, साफ सुथरा कमरा मिलता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप ना भूलें कि उसके पीछे भी महिलाओं की मेहनत है,
1: कि मेहनत है, महिलाओं का हाथ है। और मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए हर एक महिला को दूसरी महिला का हाथ थामना चाहिए।
0: उनको एक कहते हैं ना कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट, थोड़े सम्मान भरे शब्द अगर मिल जाए, तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी हिम्मत दे सकता है उन महिलाओं को जो हर एक क्षेत्र में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि केवल जो महिलाएं घर में काम करती हैं या रास्तों पर काम करती हैं उनके लिए नहीं,
1: हर एक क्षेत्र में।
0: बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा श्रेष्ठा जी कि एक महिला अगर दूसरी महिला की ताकत बन सकती है, शक्ति बन सकती है, क्योंकि महिलाओं को शक्ति का रूप माना गया है, अगर
1: तो दीर्घ काल से ही
0: हाँ जी
1: शक्ति ही है, शिव में तो ई का
0: बिल्कुल अधूरा है
1: शक्ति
0: बिल्कुल
1: के
0: अगर
1: बिना।
0: शिव में भी वो शक्ति ना हो तो वो अधूरी मानी जाती है। इसीलिए शक्ति रूपा जो है, महिलाओं को शक्ति रूपा स्वरूपा कहा गया है।
1: और मेरी बात आप मानेंगे कि हाँ। ये शक्ति कहीं और नहीं है,
0: बिल्कुल सही है, हमारे भीतर
1: हम ही दुर्गा है, हम ही लक्ष्मी है, हम ही सरस्वती है, हम ही काली भी है,
0: बिल्कुल
1: बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, सब हमारे अंदर है, हमारा जो आत्मविश्वास है वो उसको आगे ले चलता है, आप देखिए किस रूप में उसको उभारते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो श्रेष्ठा जी कह रही हैं। और श्रेष्ठा जी, आज के इस कार्यक्रम में हम समाप्ति तक आ पहुँचे हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के मंच से, इस माध्यम से किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगी? आज हमारे साथ आप जुड़ी हैं, आपके बहुत सारे सहयोगी लोग, आपके दोस्त जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं,
1: हमारे बेस्टीज हैं, जो मुझे सुन रहे हैं
0: जी, जरूर। तो मैं चाहूंगी, मैं खुद आग्रह करूंगी कि आप उन सभी का नाम लेकर एक बार थैंक यू कह दें उनको, ताकि वे भी जो प्रोग्राम सुन रहे हैं वे भी इस खुशी में हमारे साथ शामिल हो सके।
1: सबसे पहले मैं अपने पति को धन्यवाद देती हूँ जो साथ में आए हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो और साथ में माताजी, सासू, पूरे परिवार को धन्यवाद देती हूँ, हाँ। जो मुझे अभी

0: रहे हैं और साथ में मेरे जो एक हमारा एक ग्रुप है एम्पावर्ड वुमन, उसका नाम हमने बेस्टी प्रेटी लेजीज रखा है। साथ में है पूजा है, आजेगी है, जितने भी लोग काम करते हैं, खुशबू है, नाज है और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं,
1: आपके टीम लीडर्स जो हैं,
0: टीम लीडर्स हैं और मेरे साथ मेरी दो सहयोगी हैं जी लक्ष्मी और लीला है। तो उन सबको मैं, जितनों को मैं भूल भी गई हूँ अभी अभी याद नहीं आ रही है, उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आपकी, उन लोगों की आवाज बनकर आपकी इस मंच पर आकर कुछ कह सकूं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रेष्ठा जी। और बिल्कुल जो भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग श्रेष्ठा को जानते हैं, बिल्कुल आप बस हम फील कर पा रहे हैं वो एनर्जी को कि इस मंच पर एक ऐसी महिला है जो आपकी आवाज़ बनकर, और मैं समझती हूँ हर महिला में वो शक्ति है, वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं जो दूसरी महिला को इंस्पायर कर सकती है, प्रेरित कर सकती है, आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है। और आज के इस मंच से बस कार्यक्रम यहीं पर पूरा होने आया। आज के इस कार्यक्रम को हमारे साथ बिल्कुल हमारे तकनीक पर हमारा साथ दिया यज, जो इस वक्त तकनीक पर हमारे साथ बने हुए हैं, उरुसा बानो हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और महादेवन जी हमारे प्रोड्यूसर जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी बने हैं। बस इसी के साथ जितने भी श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को दिल से सुना, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ अगले सप्ताह। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन सभी को।
0: धन्यवाद रत्ना जी।

0: Center, 95.5.
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सब लोगों का स्वागत है। यूनिसेफ के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और समृद्ध करने के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार की गई है। इस परियोजना में स्थानीय हितधारकों, विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों को शामिल किया गया है। योजना के तहत एक इको पार्क बनाया जाएगा, जहां जैव विविधता के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सुविधाएं और गतिविधियां उपलब्ध होंगी। इसके अलावा एक इको म्यूजियम भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें द्वीप की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता को उजागर किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यूनिसेफ की प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखना, साथ ही पर्यटकों को एक ऐसा समृद्ध अनुभव प्रदान करना है जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सम्मानजनक हो। 26 वर्षीय एक युवती ने जीतू अस्पताल के लेबर वार्ड के कर्मचारियों पर कथित चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया है। युवती का दावा है कि प्रसव के दौरान एक दाई ने उसके बच्चे के सिर को पीछे ढकेला था। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हमारे सूत्र इन आरोपों को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार प्रसव के दौरान किए गए कुछ चिकित्सकीय कदम सामान्य प्रसव प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। इस मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम हमारे अगले बुलेटिनों में ज़्यादा विस्तार से आएंगे, जहां पर डॉक्टर नवजात शिशु की सेहत को लेकर खतरों के बारे में भी बताएंगे। मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका के नए उच्चायुक्त अब अपने पद पर कार्यरत हो गए हैं। हेनरिच जवानी अप्रैल ने आज 18 अगस्त को राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। ये मुलाकात शातो द्रेजी में हुई। हेनरिच जोवानी अप्रैल ने डॉक्टर क्लामालानी नेली मंजिनी का स्थान लिया है। अब वह मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए निशाना बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के तरीके को लेकर मेटा को अदालतों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मंगलवार से शुरू होने वाला एक नया जूरी ट्रायल कंपनी के कारोबार के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये मुकदमा 2023 में 30 अमरीकी राज्यों, जिनमें कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क भी शामिल हैं, द्वारा दायर किए गए एक मामले से जुड़ा है। इन राज्यों का आरोप है कि मेटा ने बच्चों की निजता से जुड़े कई संघीय और राज्य कानूनों का उल्लंघन किया है। राज्य सरकारें मेटा से $1 ट्रिलियन से अधिक की राशि मांग रही हैं। इसके साथ ही वे फेसबुक और इंस्टाग्राम में कई बदलाव की मांग कर रही हैं, जिनमें लाइक की संख्या दिखाना बंद करना और अनंत स्क्रॉल की सुविधा खत्म करना भी शामिल है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. RM3 Radio.

मंगलवार 18 अगस्त आप सभी का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप

0: भी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको ये बता दें कि इस प्रोग्राम को इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर, साथ ही MBC प्ले ऐप पर भी। आपको ये भी बता दें कि इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही MBC के चैनल 3 पर सपहर के 4 बजे से। तो आइए आज की चर्चा, इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। श्रोताओं, कल 19 अगस्त को एक बहुत ही विशेष दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस। और हम मानव हैं तो मानवीय मूल्य हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। मानवीय मूल्य हमें क्या सिखाते हैं, अभी के समय में इसकी कितनी आवश्यकता है और इसका हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व क्यों है, आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर संयुक्ता जुड़ चुकी है। नमस्कार डॉक्टर संयुक्ता। और डॉक्टर संयुक्ता जो है वो फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी है महात्मा गांधी संस्थान में, साथ ही वो योगा टीचर है, राजयोग टीचर है ब्रह्मा कुमारी में। तो डॉक्टर संयुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और मानवता की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का यही होगा कि मानवता क्या है।
1: सबसे पहले तो दर्शकों को, श्रोताओं को प्रणाम, ओम शांति। और सुमिता जी, आपसे बहुत दिन बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर।
1: देखिए, जैसे कि आपने सुनाया कि कल हम लोग विश्व मानवता दिवस मना रहे हैं। हर साल सन 2008 से हम देखते हैं कि विश्व मानवता दिवस मनाते हैं। वैसे तो ये एक दिन मनाने का उत्सव नहीं है, लेकिन हर क्षण हर पल मनाने का है। ये एक जैसे एक संस्कार होता है। तो मानवता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इकाई में एकल होकर नहीं जीते हैं। हम एक द्वीप नहीं है, टापू नहीं है, लेकिन कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, एक ही परिवार। बीज एक है, जैसे एक वृक्ष होता है
0: जी,
1: उसका बीज होता है
0: जी,
1: है ना, जड़ में नीचे की ओर वो बढ़ता जाता है, बीज जड़ों के रूप में और ऊपर की ओर भी बढ़ता है। तो मूलतः सूक्ष्म रूप से हम सभी जो हैं उस जड़ से, उस बीज से जुड़े हुए हैं। ये जो फैलाव दिखता है, विस्तार दिखता है, जो वृक्ष के पेड़ के पत्ते दिखते हैं, फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं, वो सब मानवता है, हमारे अपने हैं
0: जी,
1: और बराबर हैं। देखिए, आम के पेड़ में तो आम का फूल ही लगेगा, वो फल भी वही लगेगा। तो इस दृष्टि से हम सभी एक है। हो सकता है रूप में थोड़े थोड़े, कोई आम कच्चे होते हैं, कोई किसी का रंग फीका होता है, ऐसे ऐसे, लेकिन मूलतः हम एक हैं। तो जब तक व्यक्ति में वो मानवता का संस्कार, मानवता का बीज जैसे सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक उसका जीवन हम देख सकते हैं कि विघ्नमय होगा, कष्टमय होगा। और यदि वो मानवता है तो जीवन बड़ा ही सरल, सुखद और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी, इतने विस्तार से मानवता को हमें समझाने के लिए। अभी के समय में अगर हम मानवता की बात करें तो आज विश्व भर में बहुत से जगहों पर हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, आपसी मतभेद है, प्रेम और करुणा की कमी है, भाईचारे की कमी है। तो अभी की जो परिस्थिति है, इस पर आप क्या जो है अपने विचार देना चाहेंगी? क्या मानवता की कमी है? क्या हम अपने मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं?
1: बहुत ही सुंदर प्रश्न है और विचारणीय बात है, क्योंकि देखिए आजकल हम देखते हैं बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कहा जाता है कि मानवता ने बहुत प्रगति की है, उन्नति की है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का संसार बन गया है, अब तो AI आ गया है, क्या नहीं हुआ है, अच्छा है, चांद पर चले गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या मानव मानव में जो घनिष्ठता होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जो जैसे हम

0: ने कहा ना, जड़ में भी वो जो बीज है वो जड़ में भी वो उसका फैलाव होता है। ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो तो है बड़ा ही रमणीक है, बड़ा ही सुंदर है, फल दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर भी उस जड़ को अंदर सूक्ष्मता है, उतनी गहराई है, उतना प्रेम है
1: जी,
0: जो सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देते, यही जो मानवीय मूल्य है, वो देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो उस अनुभूति में हम कहाँ तक सफल हैं, वो प्रेम की भावना, वो एकता की भावना, वो जैसे एक दूसरे परस्पर जो है सहयोग की भावना, आत्मीयता, उसमें कमी आ गई है। और जैसे आप कह रहे हैं युद्ध हो रहा है, तो ये युद्ध बाहर तो हो रहा है, जैसे गीता का भी कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध है, वो एक अहिंसक युद्ध है, लेकिन युद्ध सबके अंदर चल
1: अंदर
0: रहा
1: भी
0: है।
1: चल रहा है,
0: और ये जो अंदर का युद्ध है वो ज्यादा खतरनाक है
1: जी,
0: वो ज्यादा जैसे कि कष्टदायक है
1: जी।
0: हर एक व्यक्ति के अंदर में एक युद्ध चल रहा है, और इसकी कमी का मुख्य कारण यही है कि हम में वो आपसी सहयोग की कमी है, कि ये मेरे अपने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुमिता जी, आप भी सहमत होंगे, हमारे दर्शक हमारे श्रोता भी सहमत होंगे कि आज कहीं ना कहीं जैसे स्वार्थ आ गया है, स्वार्थ का पलड़ा जो है अधिक भारी है, और परमार्थ जो व्यक्ति का, क्योंकि क्यों इस जीवन में आए हैं, इस शरीर में क्यों आए हैं, इस धरा पर क्यों आए हैं, ये पूछने वाला प्रश्न है। थोड़ा रुक कर, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं एक फॉर्म्यूला है SOS, स्टॉप, रुकना, फिर ऑब्जर्व, जैसे ड्राइविंग करते हैं ना, अभी आए तो ये किया कई बार, स्टॉप, ऑब्जर्व और स्टीयर, थोड़ा सा रुक कर फिर से देख कर मेरा जीवन ठीक राह पर चल रहा है, फिर आगे बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है अपना मूल्यांकन करना, तभी वो मानवता का जो गुण है उसका प्रसार होगा, उसका हम प्रयोग कर पाएंगे जीवन में।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, आजकल की हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम भाग ही रहे हैं ना, आज हमारी एक इच्छा पूरी हो रही है तो एक इच्छा पूरी होते होते दूसरी इच्छा जाग जाती है, एक सपना पूरा नहीं किया कि अन्य और हजार सपने हम देख लेते हैं, यानी कि जो समाधान, जो संतुष्टि हमें अपने जीवन से चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ गई है ना, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई है, और जब ज़रूरतें और इच्छाएं बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हम में करुणा की कमी आ जाती है, हम में मानवीय मूल्यों की कमी आ जाती है, क्योंकि वो ठहराव नहीं होता है। अभी जैसे आपने कहा ऑब्जर्वेशन ना, थोड़ा सा रुकना, जीवन को ऑब्जर्व करना और फिर आगे बढ़ना, लेकिन हम भाग ही रहे तो हम रुक नहीं रहे हैं, तो रुक कर हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर रहे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, जो मिला है क्या उससे हम खुश है या नहीं, क्योंकि जीवन में हमें जो नहीं मिला है हम सदैव उसके बारे में सोचते रहते हैं, और जो मिला है उस पर हम कम ध्यान देते हैं। इस पर आप क्या विचार है?
0: बहुत सुंदर, जैसे प्रेमचंद जी ने भी कहा है, मनुष्य इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक के बाद एक बढ़ता जाता है। तो हम कहेंगे कि इच्छाएं कभी कभी अच्छा नहीं बनने देती, बहुत ज़्यादा इच्छाएं है ना, जैसे आपने कहा, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ बच्चों को बचपन से ही ये सीख देनी चाहिए कि आपको जो मिल रहा है ना, उन उपलब्धियों, उन प्राप्तियों में संतुष्टता बहुत ज़रूरी है, द स्पिरिट ऑफ कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं, संतोष करना, और जो आपको मिलना चाहिए जीवन में कोई रोक नहीं सकता, ये भी एक सच्चाई है। तो इसलिए जो कुछ है काउंट आवर ब्लेसिंग्स कहते हैं, जो प्राप्त हुआ है उसको देखें, और आप माने न माने हम सभी जानते हैं जो आपको जिस वक्त चाहिए वो आपको प्राप्त है। इसलिए बहुत सारी इच्छाएं होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, खास तौर में हम ही लोग अनुभव करते हैं जब युवक थे, युवा थे बचपन में, तो ये एक होता है, होती है इच्छा कि हम आगे पढ़े, आगे बढ़े, आगे कुछ करें, ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है, और युवक मन में, युवा मन में ये होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने शुरू में ही कहा, एक दूसरे को देखकर एक स्पर्धा जिसको कहते हैं मैड रेस, रैट रेस वो नहीं होना चाहिए कि दूसरे के पास ये है तो मेरे ही पास, हर एक की अपनी अपनी आवश्यकता है। यदि कुछ हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाया तो हो सकता है उसकी हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं, या अभी थोड़ा हमें और मेहनत करनी है, और तपस्या करनी है, और वो

0: आएगा, जो कि देखिए इसी के साथ जुड़ा है हमारे कर्मों का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत सबसे एक्यूरेट, सबसे जैसे सैद्धांतिक सिद्धांत है, उसमें कोई कमी नहीं होती।
1: और जैसे हम, हमें जो मिला अच्छा है, जो नहीं मिला शायद कहीं ना कहीं उसमें हमारी भलाई ही छुपी है।
0: कल्याण है जो भी हो रहा है हमें जीवन में, यदि इस सूत्र को लेकर आगे बढ़े, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसमें कल्याण निहित है, और उस जीवन से वो लेसन निकालना है, सीख निकालनी है, ये ऐसे हुआ तो क्यों ऐसे हुआ, क्या कमी है। तो इसलिए ये अपना जो स्वमूल्यांकन, फिर से हम कहेंगे, बहुत आवश्यक है, और इसके लिए ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसे विचार चाहिए। इसीलिए आजकल जो है हम देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, चार प्रकार के जो बुद्धिमता है उसकी बात की जाती है, फिजिकल इंटेलिजेंस जो शारीरिक है, फिर होता है IQ, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस IQ, फिर होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इन सभी को मिलाकर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो आज ये चारों को अपने आप में, मैं आजकल इसी पर अपना चार्ट लिखती हूँ अपना अपनी स्थिति का रोज रात में, तो मैं इन चारों को जैसे मापदंड रखा है कि फिजिकल इंटेलिजेंस कहाँ तक अपने शरीर को यूज़ कर रहे हैं, जो भी योग्यता है उसको, फिर अपना जो IQ है इंटेलेक्चुअल, और इमोशनल और SQ को यूज, तो देखना है तभी वो सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि व्यक्ति में यही पूर्णता है। तो इन चारों आधारों पर अपने आप को अंकित करना है, देखना है कि कहाँ तक हम ये सब कर रहे हैं, तब संतोष रहेगा। और जो नहीं हुआ है उसके लिए ठीक है, योजना बनाए और उसको करें। और ये खुशी जै कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, जब तक ये खुशी नहीं तो क्या होगा, कभी भी हम खुश नहीं रहेंगे। इसलिए आजकल माइंडफुलनेस पर
1: बहुत बात होती
0: है, माइंडफुलनेस, माइंडफुल मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब है बी इन द प्रेजेंट, हम वर्तमान में जिए, नहीं तो कहते हैं ना कि भूतकाल के चिंता में रहेंगे और भविष्य की चिंता में रहेंगे। तो अभी देखिए हम आपके साथ बैठे हैं, क्या दुख है, कोई दुख नहीं, आप इतने मुस्कुरा रही हैं, हम भी आपका तो नाम ही सुमिता है, तो आप सभी मतलब सुंदर सुंदरतम रूप में आप प्रस्तुत होती हैं। तो इस प्रकार से हम यदि प्रेजेंट में वर्तमान में जिए तो दुख नहीं होगा,
1: क्योंकि कभी ना कहीं हम अपने जीवन का जो अधिकांश समय है इसी चिंता में बिता देते हैं कि क्या हुआ, क्या या क्या होगा, और इसी चिंता में अपने आज को नहीं जी पाते हैं।
0: इसके लिए अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, बरी द पास्ट, उसको दफना दे, पास्ट जो हो गया ना, बीती सो बीती, फिर भविष्य की चिंता न करें, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट।
1: एग्जैक्टली,
0: यही जीवन शैली होनी चाहिए,
1: क्योंकि हमारा अगर वर्तमान अच्छा होगा तो अपने आप में भविष्य तो अच्छा होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है।
0: वर्तमान में बहुत बड़ी शक्ति है, यदि पास्ट में भी बुरा हुआ है तो वर्तमान में उसको सुधार
1: सकते हैं,
0: ये गुंजाइश है, मतलब वर्तमान में बहुत शक्ति है।
1: चलिए, आज हम विश्व मानवता दिवस पर बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने विचार देना चाहते हैं, तो 4028085 है नंबर हमारा। संयुक्ता जी, इस दिवस को तो हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया ही जाता है, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
0: इसका मुख्य उद्देश्य यह है, सबसे पहले तो जैसे जागृति लाना कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जैसे मानवता दिवस कितना महत्वपूर्ण है। जैसे शुरू में हमने कहा ये तो हर पल हर क्षण मनानी है, लेकिन अच्छा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ये एक दिन निर्धारित किया गया है, ये भी अच्छा है, ताकि संपूर्ण रूप से हमें जागरूकता आए कि बहुत महत्वपूर्ण है एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। लेकिन इसमें भी क्या है, पहले अपने में स्थिरता चाहिए। व्यक्ति जब तक अपने आप, जैसे हमने कहा, आपने कहा कि संतुष्ट नहीं है, अपने आप समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है, एम्पावर नहीं है, तो फिर वो दूसरे की सेवा भी नहीं कर सकता, नहीं करेगा। अपने आप की तैयारी करनी है, मुझे लगता है बाद में आपने ये प्रश्न लाएंगे कि कैसे अपनी तैयारी करनी है, पहले अपने आप को, और ये बचपन से होता है। ये थोड़ा सा मैं इस पर बात करूंगी शायद बाद में, कि माता पिता अभिभावकों का उत्तरदायित्व अभी और बढ़ गया है।

0: क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए, पहले ये था कभी कभी सोचते थे कोई 60 वर्ष के बाद ना तब वो सेवा में लगेगा, 60 ईयर्स के बाद तब वो स्पिरिचुअलिटी में लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। हम तो यह मानते हैं, स्वयं अपने जीवन से भी अनुभव पाया है कि बचपन से ही, हम तो कहेंगे जब बच्चा घर में गर्भ में है
1: तभी से
0: माता पिता जैसे, माता जो है ये संस्कार अपने में जो बच्चा में जाएगा, इसीलिए गर्भाधान संस्कार करते हैं।
1: कहीं ना कहीं जब माँ गर्भवती होती है तो कहा ही जाता है ना आपको अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे में भी वो संस्कार पहले ही से आए।
0: और जो गर्भ में है ना वो तो बस सीमित है, वो बाहर की दुनिया नहीं है उसका प्रभाव, तो वहां पर जो है बच्चा उसको ग्रहण करता है बहुत अधिक, और फिर वो अपने संस्कार भी लेकर आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये बाल मन में ही मानवता की सेवा, मानवता का विचार आना चाहिए, ये नहीं कि वृद्धावस्था में नहीं आएगा, तब वो ऊपरी सतह ही दिखावा हो जाएगा। तो बाल मन में ये संस्कार आने चाहिए, और इसकी जिम्मेवारी माता पिता को है, सरकार को है, अध्यापकों को है, हर एक की जिम्मेवारी है।
1: कभी कभार ऐसा होता है कि समाज में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम संस्थाओं को या सरकार को दोष देते हैं, लेकिन जब एक समाज एक देश में हम रह रहे हैं तो अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की भी होती है, हर एक उस नागरिक की होती है जो शायद उस देश में रहता है, उस समाज में रहता है।
0: सुमिता जी, हम तो इस विचार के हैं कि कुछ हद तक जिम्मेदारी नहीं कहेंगे, 100% वो हमारे ऊपर होता है। दूसरों को इसलिए कहते हैं ना, दूसरों को उंगली दिखाने से पहले, ब्लेम गेम करने से पहले, 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, इसके ज्यादा जिम्मेदार हम होते हैं। जिस हाल में है हम, उसकी जिम्मेवारी हमारी है, और साथ ही साथ हम जिम्मेवारी लेते हैं समाज का, दूसरों का भी, वो सारा दोनों ताज, दोनों मुकुट हमारे ऊपर ही है। तो इतना जब ऐसे समझेंगे ना, तभी हमारी उन्नति होगी और दूसरों की उन्नति होगी, और दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो हमारी उन्नति कभी नहीं होगी।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना कि समाज में जो भी बदलाव हम लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है,
0: और हजार कदम आगे बढ़ेंगे।
1: और अपने मानवीय मूल्यों की बात की तो हम जो है सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। परिवार की बात करें तो माता पिता है, भाई बहन है, सगे संबंधी, और समाज की बात करें तो हमारे पड़ोसी हो गए, जहाँ पर हम काम करने जाते हैं, हमारे कलीग्स हो गए। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर ही एक समाज का निर्माण करते हैं, और एक समाज में प्रगति होती है तब जाकर एक देश में प्रगति होती है। तो मानवीय मूल्यों का अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्य करता है, जो मानवीय मूल्यों को लेकर प्रचार प्रसार करते हैं, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान देते हैं, तो ऐसे लोगों की समाज में क्या भूमिका है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अभी के समय में हर एक व्यक्ति को एक रोल मॉडल की आवश्यकता होती है, तो आपके हिसाब से ये कितने आवश्यक होते हैं हमारे समाज के विकास के लिए?
0: देखिए, मॉरिशस में भी तो बहुत से समाज सेवक हैं, है ना, समाज सेवक भी हैं और रूहानी समाज सेवक भी हैं। रूहानी मीन स्पिरिचुअल सोशल वर्कर्स, दोनों की आवश्यकता है। देखिए, सोशल वर्कर्स कहीं भी कोई आपदा आए, अभी ही जैसे बाढ़ ये सब आ जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कुछ भी तूफान है कुछ भी, तो वे लोग जाते हैं, भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं, तो आवश्यक है। देखिए, हर व्यक्ति की आवश्यकता समयानुसार अलग अलग है, तो ऐसे सेवक जो होते हैं हम कहेंगे वे रीढ़ है, दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। ये लोग नहीं होते तो समाज की क्या हालत होती आज? तो ऐसे लोगों के प्रति नतमस्तक होते हैं, दे आर द वेरी पिलर ऑफ द सोसाइटी, स्तंभ है समाज के लिए। ऐसे लोग जैसे जो स्वार्थ से परे परमार्थ में सेवा में लगे हुए हैं, आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, आज देखेंगे समाज में व्यक्ति के पास एक चीज है जो नहीं है, उसका अभाव है, वो है समय। तो ऐसे लोग जो समय निकाल कर दूसरों के दुख दर्द को दूर करने में लगे हैं, तो कितने उनके आशीर्वाद मिलेंगे। और दूसरा है रूहानी सोशल वर्कर्स, रूहानी जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो स्पिरिचुअली सेवा करते हैं, उनका भी विशेष हम कहेंगे महत्व है। अभी देखिए, कोविड के बाद ये सब हम देखते हैं, लोग ज़्यादा मेडिटेशन, आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। क्यों ऐसा

0: क्योंकि व्यक्ति ने अनुभव कर लिया, मटेरियल तो है जो है बाहर का है, लेकिन कुछ है अपने अंदर जिसमें संतुलन, जिसमें सुख शांति होनी चाहिए। और जितने लोग आध्यात्मिक मार्ग में हैं उनके लिए ये कोविड कुछ नहीं था, मेरे ही लिए जैसे कन्फाइनमेंट, तो हम तो अपने अकेले में ठीक है,
1: अकेले तो में कोई संतुष्ट
0: है जी। कुछ लोग सोचते हैं मुझे करना, क्योंकि देखिए हाँ। जो चार हमने इंटेलिजेंस के उसमें एक होता है ह्यूमन डूइंग, करना है मुझे, केवल करना है कार्य। फिर एक है हैविंग, आपको होना चाहिए, मेरे पास ये है ये है। किसी से मिलते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन है आपका, कितना है, किस परिवार से है, क्या जॉब करते हैं, जैसे फिजिकल वो स्थूल में, लेकिन वो बीइंग ह्यूमन बीइंग है ना, हम व्यक्ति हैं है ना, ह्यूमन बीइंग, बीइंग का मतलब है होना, एक आंतरिक एक सूक्ष्म रूप है, तो उसकी आवश्यकता क्या है। तो ये लोग जो हैं जैसे हम कहेंगे कि शरीर के साथ साथ आत्मा की भी सेवा करनी चाहिए, अंदर से व्यक्ति में संतोष हो, अंदर से प्रेम का अनुभव करे, अंदर से जिजीविषा हो, जीने की का उमंग हो, है ना। तो इसके लिए ये जो सेवक हैं दोनों प्रकार के, स्पिरिचुअल और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल देखिए आप मानेंगे ये इस बात को सुमिता जी कि आजकल जीवन में हम गुरु भी कहते हैं, गाइड्स की आवश्यकता है, मार्गदर्शकों की आवश्यकता है, इसीलिए लोग भटक रहे हैं, चाहे बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो, भटक रहे हैं। सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा संतोष कहाँ मिलता है लोगों को पता नहीं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ऐसे लोग जो समाज सेवी हैं, जो आध्यात्मिक सेवक हैं, इनकी बहुत बहुत अभी जो है इस समय अत्यधिक आवश्यकता है, तभी समाज में सुख खुशहाली होली होगी।
1: तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी इतनी सारी जानकारियों के लिए जो आप हमें दे रही हैं, और जितने है लोग इस समय हमारा साथ दे रहे हैं आप सभी का भी धन्यवाद। अभी के लिए एक छोटे से गीत के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं, फिर आज की इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। और आज हम विश्व मानवता दिवस पर बात कर रहे हैं। इस वर्ष को हर दिन, मतलब कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन का महत्व, जैसे संयुक्ता जी ने कहा कि सिर्फ एक दिन मनाने का ये दिन नहीं है, मानवता की यदि हम बात करें तो ये हमारे संस्कारों से जुड़ा है, यह हमारे आचरण से जुड़ा है, यह हमारे व्यवहार से जुड़ा है, तो ये रोज़मर्रा के हमारे जीवन का हिस्सा है। और अब हम संयुक्ता जी आपसे जानना चाहेंगे, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो आज के युवाओं को हम इससे कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि आज के युवाओं की अगर हम बात करें तो आज के युवा जो है बहुत जल्दी बहक जाते हैं, गलत राह में पड़ जाते हैं, दिशा भटक जाते हैं। आजकल उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कहाँ पर किससे कनेक्टेड है, माता पिता पर उनका जो है उतना बस नहीं चलता है। माता पिता के और बच्चों के बीच, युवाओं के बीच जो संबंध है वो भी समय के साथ हम देखते हैं कि पहले जैसे नहीं रहे। तो मानवीय मूल्यों का एक युवा के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये?
1: देखिए, मानवीय मूल्य तो जैसे युवा मन के लिए वही तो मुख्य होता है। जैसे कहते हैं, युवा जो है समाज की ऊर्जा है
0: जी,
1: एनर्जी पॉइंट है। यदि युवा में ये मानवता और मानवीय मूल्य हो तो वो समाज निश्चित ही बड़ा ही, जैसे कहेंगे, वो उन्नतिशील होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे आपने ठीक कहा, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है, थोड़ा सा अपने मोबाइल पर बहुत समय दे रहे हैं। तो अभी आवश्यकता है, यहाँ भी हम कहेंगे अभिभावकों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है,
0: बढ़ जाती है
1: उनको समय देना।

0: करना है, उनका मार्गदर्शन करना है। क्योंकि युवा हम यह सोचते हैं, स्वयं अपने जीवन को देखते हैं, युवा मन बड़ा सरल और साफ होता है, लेकिन उसमें क्या कंटेंट देते हैं, वो क्या देखता है, हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं आँखों से क्या देखते हैं वो इम्बाइब हो जाता है, अंदर आ जाता है। कानों से क्या सुन रहे हैं, मुख से क्या बोल रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, हाथ पैर से क्या कर्म कर रहे हैं, ये सब जैसे वो अंदर जाता है। तो अभी ऐसी सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। समाज तो अभी एक मोबाइल थमा दे रहा है और उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं कहेंगे उसको, इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता है। अभी युवाओं को ज्ञान, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, है ना, वो तो भरमार है, दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन एक साल का बच्चा भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन अभी जिस चीज़ की आवश्यकता है ज्ञान की। इसलिए हम कहेंगे कि जो कॉलेजों में जो करिकुलम है, सबसे पहले तो एजुकेशन में ये मानवता का और मानवीय मूल्यों का होना चाहिए। इसी के चलते अभी एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसका नाम ही है अलाइव मॉरिशस। अलाइव माने एसोसिएशन ऑफ लिविंग वैल्यूज इन एजुकेशन। ये प्रोजेक्ट काफ़ी लगभग 30 वर्षों से चल रहा है और अभी हम लोग सभी कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एजुकेशन एजुकेटर्स की ट्रेनिंग होती है, ट्रेन द ट्रेनर्स फॉर एजुकेटर्स, उनको कि वे अपने विषयों के अंतर्गत कैसे मानवीय मूल्यों को जोड़ पाए। देखिए साहित्य में तो मानवीय मूल्य ही है, आप साहित्य पढ़ाते हैं तो फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स गणित में भी आप कैसे, इकोनॉमिक्स में भी आप कैसे मानवीय मूल्य ला सके, है ना, कि मल्टीप्लाई ये सब ये सिद्धांत, तो इस पर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और तब वे अध्यापक जाकर अपने छात्रों के साथ। तो ये एक प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी हाल ही में लगभग 25 कॉलेजों के एजुकेटर्स आए थे, उनको भी ये ज्ञान दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पहल हो रही है कि बच्चों को, और एक्टिविटीज बेस्ड है, वो जैसे लेक्चर टाइप नहीं है, एक्टिविटीज़ में कैसे उनको, तो इस प्रकार की योजनाएं जो है, इस प्रकार का शिक्षण बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल हम देखते रहे हैं शिक्षा पद्धति, जैसे हमने कहा दोष नहीं लगाना है, दोषारोपण नहीं करना है, फिर भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा पद्धति जो है आजकल तो जैसे ब्रेक ही ब्रेक डाउन हो गया है। AI पहले तो देखिए लोग, बच्चे जब पढ़ते, हम भी तो इसी क्षेत्र में थे, बच्चे जब असाइनमेंट कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि को लड़ा कर तब वो लिखते हैं, अभी तो AI मास्टर के पास गए
1: अब सवाल पूछते हैं और आपको जवाब मिल जाता है,
0: पूरा वो तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। अभी क्या हुआ है, प्रगति हुई है लेकिन हमारे शिक्षण पद्धति में वो अडेप्टेशन नहीं हुआ है कि अभी हमको क्या लाना है शिक्षा पद। जैसे पहले ट्रेडिशनल जो हो रहा था, हूबहू करेंगे तो उन्नति नहीं होगी, तब युवा पीढ़ी जुड़ेंगे नहीं,
1: जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही कहा।
0: एक तो शिक्षा से वो उतने प्रभावित नहीं होते, परिवर्तन नहीं होता, हृदय परिवर्तन नहीं होता, अभी जो शिक्षा प्रणाली है। तो अभी शिक्षा विशेषज्ञों को सोचना है कि कैसे हम ये परिवर्तन लाएं, तो शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन आना चाहिए। दूसरा, आजकल ये भी सुनने में आता है कि आजकल की युवा पीढ़ी मंदिर नहीं जा रहे हैं, इस ओर भी नहीं जा रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है। हमारे जो पंडितगण हैं, हमारे जो समाज के विद्वान विदुषीगण हैं, हमें सोचना चाहिए क्यों युवा पीढ़ी, वे गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों का अप्रोच क्या है,
1: बिल्कुल
0: हम क्या कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी वो लोग आएंगे, एक आकर्षण होना चाहिए जो कुछ हम दे रहे हैं। तो अभी देखना है युवा पीढ़ी की आवश्यकता क्या है। पहले हम आप लोगों की, हम आप या जो भी दर्शक देख रहे हैं, उस पीढ़ी के आवश्यकता अलग थी, हम बड़े संतुष्ट थे, जो ज्ञान मिल रहा है, जो मिल रहा है, जो परोसा जा रहा है, हम बहुत ही संतुष्ट, लेकिन आज की युवा, आज का युवा मन संतुष्ट नहीं है। तो देखना है कि क्या रोचक, क्या ऐसा आकर्षक उनको प्रदान करे, तो उनमें वो जागृति लानी है शुरू से ही।
1: जी, और युवाओं की बात करें तो आजकल उनके पास काफ़ी ऑप्शंस है, काफ़ी चॉइस है, और जैसे आपने कहा, बिल्कुल हमें एक दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, अगर कुछ हम सही करना

0: करना चाहते हैं समाज में, तो युवाओं को साथ में लेकर उस पर कार्य करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि शिक्षा तो बहुत आवश्यक है ही, क्योंकि वो हमारे एक नींव है, एक फाउंडेशन है जिसके जरिए हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ संस्कृति, अपनी सभ्यता, जैसे आपने बात की कि धार्मिक स्थलों पर जाना, अपने जो है अपने रूट्स को समझना, है ना, अपने संस्कारों से जुड़े रहना, ये भी बहुत आवश्यक है।
1: हमने देखा, अभी श्रावणी मास चल रहा है ना, तो हमने देखा कि

0: है ना, शिव अभिषेक, श्रावणी मास शिव भक्तों के लिए है ना, तो हमने देखा बहुत युवा पीढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम, तो मुझे लगा इस खुले मैदान में, शायद चार दीवारी वे पसंद नहीं करते, इस खुलेपन में और परी तालाब का वातावरण ही तो बड़ा ही दिव्य है ना, आकर्षक है और उसमें पॉजिटिविटी है, तो ये युवक युवतियां जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। अपनी साड़ी पहनकर या बड़े ही सभ्य रूप में, बड़े ही मतलब बहुत ही जैसे सभ्यता पूर्वक, बहुत अच्छा लगा। और कोई भी मोबाइल नहीं देख रहा है, कुछ नहीं, वो पूरा अपना पूजा कर रहे हैं, बहुत बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक एक
1: एक ऐसा है कि आजकल का जो युवा है, जहाँ पर हम कहते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है भटक रही है, नहीं, देखा जाए तो आजकल की युवा पीढ़ी ज्यादा जागरूक हो रही है,
0: ज्यादा जागरूक है,
1: इसलिए इस तरह का मार्गदर्शन उनके लिए होना चाहिए जो वो इस सही राह पर बने
0: उनको
1: रहे,
0: उनको समझना चाहिए
1: एग्जैक्टली। और जब युवा किसी सामाजिक कार्य से जुड़ते हैं या किसी सांस्कृतिक अनुष्ठान से जुड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ही सिर्फ आगे नहीं ले जा रहे, बल्कि ये सामाजिक कार्यों में भी अपना जो है योगदान दे दे रहे हैं।
0: बहुत उनका योगदान और आवश्यक है,
1: आवश्यक है,
0: क्योंकि वही तो भविष्य बनेंगे जी, तो बहुत ही, क्योंकि क्योंकि उनमें ये जागृति भी लानी है, ये ज्ञान भी देना है कि सेवा से मेवा मिलता है। मेवा का मतलब है खुशी मिलती है, तुरंत खुशी मिलती है, और भविष्य के लिए हम आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। जिसकी भी सेवा करेंगे, जैसी भी सेवा करेंगे, उससे ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, वरदान के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि सेवा, देखिए, हर लगभग 7 प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं, मानवता सेवा, तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, संबंध संपर्क, अभी आपसे मिले तो आप हमारी सेवा, हम आपकी सेवा, ऐसे हो जाता है, वो प्यार से बात करना, वो सब मनसा वाचा कर्मणा, तो अलग विन वाणी से भी सेवा करते हैं, तो अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं, और सेवा से मेवा, सेवा से वरदान मिलते हैं, ये जागृति लानी है। और वरदान जो है वही हमारे सुरक्षा कवच है। अभी रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं, तो रक्षक हमारे परम रक्षक क्या है, ये जो आशीर्वाद मिलते हैं सेवा करने से, ये रक्षा। मात्र सूत्र बांधने से कुछ नहीं होता, कुछ होता है नहीं होता है, तो यदि हम सेवा कर रहे हैं तो यही हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है, रक्षक बन जाता है, परमात्मा से, जिसकी भी सेवा की, परिवार से, सबसे, प्रकृति से हमें वरदान मिलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए सबकी सेवा करें, प्रकृति की भी सेवा करें। हम तो सुबह सुबह अपना योग करते हैं, तो एक तो सबकी, सभी आत्माओं को, मतलब उनके पवित्र रूप में, और फिर प्रकृति की सेवा। प्रकृति की सेवा कैसे करेंगे, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका हम लोग करते हैं राजयोग के अंतर्गत। उसमें क्या है, एक एक तत्व को लेकर, 5 प्रकृति के तत्व है ना, धरती, आकाश, जल, सब एक एक तत्व को स्मृति में लाकर फिर उनको शुभ भावना, शुभ कामना देना,
1: क्योंकि वे तो वाइब्रेशन,
0: क्योंकि वे हमारी सेवा करते हैं। प्रकृति ना हो तो हम कहाँ हैं, ये शरीर ही प्रकृति से बना है, है ना। तो 5 तत्वों को उसको कहते हैं सकाश, आकाश द्वारा शुभ भावना, गुड वाइब्रेशंस, गुड विशेस भेजना। और फिर उसके बाद जो है 6ठा जो तत्व है लाइट, जो आत्मा का तत्व है, उसको भी, सभी आत्माओं को भी, सभी के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। इसको कहते हैं मनसा सेवा, ये भी एक प्रकार की सेवा है, मन से सभी के लिए। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सबसे बड़ा तरीका है दुख को दूर करने के लिए, मानव की सेवा करने के लिए, हमारी सोच में किसी के लिए भी जैसे नकारात्मकता न हो, हर एक, जैसे कोई बीमार है, आज ही मुझे पता चला कोई बहुत बीमार है, तो बैठकर उनको वो तरंगे भेजना
1: जी, बिल्कुल,
0: कि वो ठीक है, बीमार है, लेकिन उनको वो दुख का अनुभव न हो। तो ये सब सेवा, हम बहुत सेवा कर सकते हैं।
1: चलिए अगले प्रश्न से हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। मानवीय मूल्य की बात करें तो युवाओं पर हमने चर्चा की, हमारी जो महिलाएं हैं उनका भी अपने परिवार में, अपने समाज में, देश में काफ़ी बड़ा योगदान है, और महिलाएं कितना बड़ा रोल प्ले कर

0: करती है जब मानवीय मूल्यों की बात आती है।
1: हाँ, तो देखिए महिलाएं तो उनको शक्ति कहा जाता है, शिव शक्ति, वही धुरी है, सेंट्रल पॉइंट परिवार का, समाज का। और आजकल तो महिला मुक्ति हम देखते हैं, महिला सशक्तिकरण
0: की बात करते हैं,
1: क्योंकि महिला शक्ति ही है, लेकिन सशक्तिकरण क्योंकि उसे खुद अपने आप को सशक्त बनाना है, तो उसकी तो भूमिका
0: सबसे सर्वश्रेष्ठ,
1: क्योंकि एक समाज को बनाना है, एक महिला को बना, एक परिवार को बनाना है, एक युवक के जीवन को बनाना है, किसी को भी बनाना है, तो उसकी धुरी महिला है, तो उसका तो उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। और शुरुआत होती है घर से, इसीलिए हमारे यहाँ घर को घर नहीं कहते, क्या कहते हैं,
0: गृहस्थ
1: मंदिर कहते हैं, गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब कि जहाँ श्रम मेहनत न हो, स्वतः उस स्फूर्त भावना हो, सुख हो, शांति हो स्वतः, और कौन लाने का मुख्य काम, माँ करती है, इसलिए कहते हैं माँ जो है वो प्रथम विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से माँ जो है हर एक का, जब वो भोजन ही बना रही है तो कितनी सात्विकता से, इसीलिए कहते हैं ना घर का खाना, क्योंकि वो जो भोजन तैयार कर रही हैं तो उसमें इस भाव से कि जो भी उनके पति खाए, उनके युगल खाए, उनके बच्चे खाए, तो उनको शक्ति मिले, शुभ भावना से। बाहर का भोजन आप ले रहे हैं, पता नहीं किस भाव से बनाया गया है, लेकिन घर का तो निश्चित रूप से उसमें प्यार का जो इंग्रेडिएंट है वो मुख्य है,
0: इसलिए तो वो खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और घर के हर एक कार्य को एक महिला जब प्रेम से करती है तो वो घर के हर एक कोने में वो प्रेम झलकता है,
1: कोने में झलकता
0: है, वो अपनापन दिखता है।
1: हाँ, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस है ना, जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशंस जिसको कहते हैं ओरा क्रिएट करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो एक घर जब बनता है तो उसमें मेन दीवारें तो हैं, आजकल तो कितने सुंदर सुंदर बना सकते हैं, लेकिन उसको घर नहीं, हाउस नहीं, होम कहते हैं, गृहस्थाश्रम कहते हैं, तो वो माँ लाती है, नारी लाती है, क्योंकि वही संस्कार देती है ना, बच्चों में संस्कार पिरोना ये माँ का ही काम होता है, वो प्रथम विश्वविद्यालय है। जैसे बच्चों में आदर, और माता पिता जैसे घर में ही कैसे आपस में उनका रिलेशनशिप है, उनका संबंध है, इसी से तो बच्चे सीखते हैं। जैसे आपने कहा रोल मॉडल चाहिए उनको, सारा कुछ घर से शुरू होता है, तब बाद में स्कूल या जो भी, लेकिन घर जो प्रथम विश्वविद्यालय है। फिर बहुत सी नारियाँ अभी जुड़ रही हैं एनजीओज से, आध्यात्मिक संस्थाओं से, जैसे ब्रह्मा कुमारी में ही आप देखेंगे, यह है एक संस्था है
0: जो अपना योगदान देती है,
1: विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो महिलाओं द्वारा संचालित है।
0: बिल्कुल,
1: इसमें हर एक को लीडर बनाया जाता है, कोई फॉलोअर नहीं होता, कोई भगवान के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सभी लीडर्स होते हैं, लीडर्स, वी क्रिएट लीडर। पहले लीडर कैसे बना, दूसरों पर वो करने के लिए नहीं,
0: हुकुम करने के लिए नहीं,
1: हुकुम करने के लिए नहीं,
0: लीडर मींस,
1: लीडर मींस स्वराज्याधिकारी, अपने ऊपर नियंत्रण हो, यू आर विद इन योर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, तभी दूसरे हमें सुनेंगे। यदि हम में वो नियंत्रण नहीं तो ये जरूरी है, ये सबसे बड़ी सेवा है, है ना। इसलिए हम कब सेवा करते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में चार विषय सीखते हैं, ज्ञान, नॉलेज, योग, मेडिटेशन, धारणा मीन्स इनकल्केशन, और सेवा। सेवा अंत में आती है, जब आपने अपने आप को तैयार कर लिया तब आप सेवा में चल सकते हैं, नहीं तो वो सेवा डिसर्विस हो सकती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि तब क्या होगा, सेवा करें नाम के लिए, यश के लिए, या कुछ प्राप्ति के लिए, वो सेवा नहीं, वो तो नौकरी है, ये है, वो है, लेकिन सेवा। और सुमिता जी, हर कार्य को हम सेवा में बदल, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे, जब हम कर रहे हैं ना, परमात्मा ने मुझे ये सौंपा है ये कार्य, परमात्मा को याद करके, एक शुभ विचार लाकर जब हम वो कार्य करते हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, आज सुबह ही हम झाड़ू लगा रहे हैं तो सोच रहे हैं ये भगवान का घर है, तो वो सेवा हो जाती है।
0: मतलब कि जिस भी कार्य को आप करें उस खुशी की भाव से करें,
1: खुशी से, कहते हैं ना हाथों से करो, घर का नाम मुख से लो, प्रभु का नाम, तो उनको कि ये सात्विकता लाए, हमारी सोच से ही शुरू होता है सारा कुछ, इंटेंशन काउंट्स।
0: और कहीं ना कहीं जब आप अपने भीतर खुश है तो वो आप में दिखता है,
1: दिखता
0: ना, आपके हर एक कार्य में दिखता है, आपके वाणी में, आपके बोली में, आपके आचरण में, वो नजर आता है,
1: नजर आता है, और खुशी कॉन्टेजियस है।
0: जी
1: आप खुश हैं, आप इतने

0: खुश है, मैं भी डबल खुश हो गई ना? तो इसलिए महिलाओं का जो की जो भूमिका है सर्वश्रेष्ठ है, कर रही है बहुत कुछ, लेकिन और भी
1: तो कहीं ना कहीं महिलाएं जितना करती है बदले में क्या उनको मिलता है। कभी कभार हम समाज में देखते हैं कि जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं अपना योगदान तो वो देते ही है, लेकिन कभी कभार ऐसी कमियां भी आ जाती है जहां पर उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। अभी के समय में तो काफी बदलाव आया है, काफी सकारात्मक बदलाव हम देखते हैं, लेकिन अभी भी कहीं है किसी वर्ग में महिलाएं अभी भी जूझ रही है। तो कहीं यह है कि वो अपने लिए आवाज नहीं उठा रही है या अपने हकों को नहीं जानती, क्योंकि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रही है। और मानवीय मूल्यों की बात करें तो उन्हें अपने हक के बारे में बताना, जागरूकता फैलाना, ये सब कुछ किया ही जा रहा है।
0: जा रहा है। देखिए कहते हैं यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवत्व डिविनिटी शक्ति होगी, खुशहाली होगी। तो बहुत कुछ कह सकते हैं इस बारे में और बहुत कुछ कहा जाता है कि महिलाओं के प्रति वो सम्मान, लेकिन अभी जो मैं अपने जीवन में अनुभव कर रही हूँ वो विचार आपसे वो अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ और हमारे प्रिय श्रोताओं के साथ, कि अभी मैं उस मोड़ पर आई हूँ जहाँ अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं। देखिए हम सेवा कर रहे हैं, कहते हैं दान करते हैं तो दाहिने हाथ से कर रहे हैं तो बाएं हाथ को पता भी ना चले, शास्त्रों ने ये कहा है। तो सेवा भी हम निस्वार्थ भाव करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन, तो उसका 100 गुना मिलेगा। और यदि हमने सेवा करके मान नाम शान या सम्मान की अपेक्षा की तो मानो हमने कच्चा फल खा लिया। उसका कर्म का उसका जो फल आएगा बहुत बड़ा आएगा। तो इसीलिए कुछ एक्सपेक्टेशन तो आप बड़े खुश होते हैं।
1: ये आपने सही कहा,
0: यहाँ तक कि आपने कुछ अच्छा किया, लोग आपका अपमान कर रहे हैं तो भी आप खुश रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। इस स्तर पर मैंने देखा यदि आप इस अवस्था को नहीं आएंगे तो दुखी रहेंगे। क्या फायदा सेवा करके दुखी है, इसने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे मान नहीं दिया।
1: आप पर कार्य करना बहुत आवश्यक है,
0: आप पर कार्य करना। और यहाँ पर मैं कहूंगी आध्यात्मिकता का महत्व अनिवार्य है, क्योंकि कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है।
1: चलिए यहाँ पर डॉक्टर संयुक्ता जी, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त होने को चला है, हम चाहेंगे कुछ पंक्तियों में कोई संदेश आप देना चाहेंगे कार्यक्रम समाप्त होने से पहले।
0: हम तो कहेंगे कि मानव सेवा ही माधव सेवा है और जिम्मेवारी का ताज हर एक के ऊपर है ना। सेवा कोई बड़ा काम नहीं है कि कोई पहाड़ इस तरह से, लेकिन अपने में वो जागृति लाना है। हमको अंधों की लाठी बनना है जिसमें भी थोड़ा सा दुख हो, अंधकार हो, इस तरह के मतलब समस्या हो तो थोड़ी मदद, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकते। और सेवा करने में बहुत खुशी है।
1: जी।

0: बैक 4 बजे है। अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ अशीता। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीष माश, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये मामला मार्च 2024 समय हुई एक पुलिस छापेमारी से जुड़ा है और अब इसकी जांच में 6 मौजूदा या पूर्व पुलिस कर्मी शामिल हैं। उस समय ये सभी SSU की स्पेशल इंटेलिजेंस सेल के सदस्य थे। ये इकाई पूर्व पुलिस आयुक्त अनिल कुमार दीप के कार्यालय में बनाई गई थी और सीधे उनके अधीन काम करती थी। 30 मार्च 2024 को इस इकाई के सदस्य वालिदिप्रत के एक निवासी के घर तलाशी लेने पहुंचे थे। वहां बड़ी मात्रा में नकद राशि बरामद हुई। अब FCC की जांच का मुख्य केंद्र यही है कि रकम मिलने के बाद उसके साथ क्या हुआ। अदालत में पेश किए गए विवरण के अनुसार जब्त रकम करीब 30 मिलियन रुपए मोशन रुपए थी। FCC खासतौर पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें से लगभग 70 लाख रुपए बाद में कैसे गायब हो गए। जांचकर्ता अब मौके पर रकम जब्त किए जाने से लेकर उसे लाइन बार रख ले जाने, फिर सील

0: में पेश किए गए विवरण के अनुसार जब्त रकम करीब 30 मिलियन रुपए मोशन रुपए थी। एफसीसी खास तौर पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें से लगभग 70 लाख रुपए बाद में कैसे गायब हो गए। जांचकर्ता अब मौके पर रकम जब्त किए जाने से लेकर उसे लाइन बार रख ले जाने फिर सील कर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सूत्रों के अनुसार इन आरोपों को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार प्रसव के दौरान किए गए कुछ चिकित्सकीय कदम सामान्य प्रसव प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती हैं। इस मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अपने अगले बुलेटिनों में ज्यादा जानकारी के साथ आएंगे। मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका के नए उच्चायुक्त अब अपने पद पर कार्यरत हो गए हैं। हेनरिच जोवानी अप्रैल ने आज 18 अगस्त को राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुब के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। ये मुलाकात शतोगजवी में हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नाम ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन को 100% समर्थन देना जारी रखेगा। उनका एक बयान मॉस्को की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें हाल ही में रूस ने यूक्रेन के हमलों में ब्रिटिश निर्मित ड्रोन के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद परिणाम भुगतने की बात कही गई है। बर्नाम ने कहा कि वे केवल अच्छे समय के दोस्त नहीं, यूक्रेन को जब उनकी जरूरत होगी वे उनके साथ खड़े रहेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले ब्रिटेन में रूसी दूतावास ने ब्रिटेन पर यूक्रेन संकट को जानबूझकर बढ़ाने का रास्ता चुनने का आरोप लगाया था। दूतावास ने कहा कि संघर्ष में ब्रिटेन की भागीदारी जितनी गहरी होगी उसे उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio.

0: के सितारे।
1: और चलिए दोस्तों 4:13 मैं हूं परी आपके साथ। मंगलवार की एक खूबसूरत सी दोपहर जहां पर लेकर आए हैं एक ऐसे सिंगर की आवाज, एक ऐसे सिंगर के गाने जिन्हें हम काफी पसंद करते हैं, द वन एंड ओनली बाबुल सुप्रियो। जैसे हम कहते हैं कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती, वो यादों में उतर जाती है, और कुछ सिंगर्स गाते नहीं, कुछ सिंगर्स अपनी आवाज से पूरे इमोशंस क्रिएट कर जाते हैं। आज का सफर बस इसी आवाज के नाम, एक

voice that has travelled from melody to playback, from romance to nostalgia, from Bollywood to Bengali music. Yes, one and only Babul Supriyo. तो हमारे सभी listeners, प्यार भरा स्वागत आप सभी का, आपका अपना program, आपके सितारे. मैं हूं परी आपके साथ और अगले दो घंटों का ये सफर डेडिकेटेड है टू मैन जिन्होंने सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं दी गानों को बल्कि एक फीलिंग दी. हर एक गाना बन गया खास और हर गाने को हम बार बार सुनना चाहते हैं. वैसे कहा जाता है कि उनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी इंस्पायर्ड है कुमार सानू से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में खुद अपनी एक अलग जगह बनाई जहाँ पर उनकी आवाज़ को सुनना काफ़ी अच्छा लगता है. सभी के लिए ये जो कुछ घंटे हैं अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक बस चलने वाले हैं बाबुल सुप्रियो के कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स. आप भी हमारा साथ दे रहे हैं तो उनके कुछ ब्यूटीफुल ड्यूएट्स, कुछ गाने ऐसे जहां पर और भी सिंगर्स ने अपनी आवाजें दी, सो कुछ ऐसे प्यारे गाने आपको हम सुनाएंगे और साथ दे रहे हैं आप हमारा ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. तो एक बार फिर अलका याग्निक, बाबुल सुप्रियो की आवाजें, सात रंग के सपने, यही फिल्म का टाइटल ट्रैक आप सभी के लिए. सभी हमारे दोस्त जो हमारा साथ दे रहे हैं आपकी इस आफ्टरनून को बना रहे हैं स्पेशल बाबुल सुप्रियो के कुछ गीतों के साथ, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. एंजॉय दिस वन.

0: तो चलिए दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए बाबुल सुप्रियो स्पेशल। वैसे बाबुल सुप्रियो का असली नाम सुप्रिया बारल है और म्यूजिक वाज नॉट मियरली अ करियर चॉइस उनके लिए, इट वाज समथिंग दैट वाज डीपली रूटेड उनकी अपब्रिंगिंग में। और वो जब बड़े हुए तो ही वो सराउंडेड बाय म्यूजिक और ये जो म्यूजिक का टेस्ट है वो बचपन से ही उनके अंदर था और काफ़ी यंग एज से वो म्यूजिक सीखना चाहते थे। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, यस मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पर हजारों एस्पायरिंग सिंगर्स काउंटलेस ऑडिशंस एंड एक जगह बनाने के लिए लोग इतना तरसते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक खुद अपनी जगह बनाई। और एक जर्नी जहाँ पर मुंबई में आना एक सपना ज़रूर था लेकिन यहाँ पर अपने कदम जमाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ काफ़ी कंपेयर हुई कुमार सानू के साथ। इवन देन उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई और ये है बॉलीवुड में, जहाँ पर हमने उनकी आवाज़ सुनी कुछ बहुत ही प्यारे गानों में।
1: You're listening to RM3 Radio. My-

सब कुछ सुपर हिट सॉन्ग्स ऑफ बाबुल सुप्रियो और उन्हीं गानों में शामिल होता हुआ ये गाना यहाँ पर रेखा जी हो गई है खुश कह रही हैं वाह वाह व्हाट लवली सॉन्ग्स डेडिकेट करिए गाना फॉर मी एंड फॉर बेटा अंश पोमोन जिसे हमारा साथ दे रही हैं आप रेखा जी चलिए हम तो जानते ही हैं कि कुमार सानू हो या फिर उनके जैसी आवाज़ वाले बाबुल सुप्रियो आपका दिल हमेशा धड़कता है इस आवाज़ के ऊपर तो ये गाना आपके नाम एवरी वन हु हैज बीन अ फैन ऑफ बाबुल सुप्रियो आज की ये जो शाम है आप सभी के नाम साथियों आपके सितारे और आज जिस सितारे को हम चुनकर लाए हैं उनका नाम है बाबुल सुप्रियो द वन एंड ओनली बाबुल सुप्रियो ऑफ बॉलीवुड जहां पर उनके कुछ यादगार नगमे हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन

0: RM3 Radio.
1: और चलिए दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं बाबुल सुप्रियो स्पेशल, उनके कुछ खूबसूरत गाने, उनके कुछ खूबसूरत एहसास जो आप तक पहुंचा रहे हैं। खास बात

काबुल सुप्रियो की आवाज़ की दैट कभी नहीं लगता कि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हैं गाने के लिए जो आवाज़ है जो सॉफ्टनेस है जो मैजिक है वो सीधा दिल तक पहुंच जाता है चलिए अभी के लिए इसी मैजिक को आप तक पहुंचा रहे हैं मैं हूं परी आपके साथ प्रोग्राम आपके सितारे RM3 रेडियो मनोरंजन

0: के सितारे।
1: और चलिए दोस्तों, यहाँ पर 5:23 हो गए हैं और आप भी इन गानों को पसंद कर रहे हैं, गानों को सुन रहे हैं। तो वेल, जैसे हम आज बात कर रहे हैं बाबुल सुप्रियो की, बॉलीवुड में उनका जो सफ़र है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। पहले तो उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, उसके बाद उन्होंने कुछ जिंगल्स गाए, कुछ बंगाली गानों के साथ शुरू किया और फिर उनकी आवाज़ को नोटिस किया गया, जहाँ पर उनकी आवाज़ सुनकर बहुत से फिल्म मेकर्स ये कहने लगे कि ये आवाज़ बिल्कुल बॉलीवुड के लिए बनी है। और कभी कभार तो उनको फ़ायदा ये भी हुआ कि जब कुमार सानू काफ़ी बिजी हुआ करते थे, उनके पास डेट्स नहीं हुआ करती थी, तो पहले पहले जो मौके बाबुल सुप्रियो को मिले वो इसी वजह से मिले कि कुमार सानू के पास डेट्स नहीं हुआ करती थी और उनकी आवाज़ काफ़ी मिलती जुलती थी उनके साथ, यानी कि कुमार सानू के साथ। तो फिर वो मौके उनको दिए गए और उन्हीं मौक़ों के साथ उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो किसी आर्टिस्ट को कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी एक खुद पहचान बना रहे हैं। कुछ इतने प्यारे गाने उन्होंने गाए कि उन गानों को आज भी हम सुनते हैं और जब भी इन गानों को सुनते हैं वी नेवर थिंक दैट ये आवाज़ सिमिलर है कुमार सानू के साथ, बल्कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये आवाज़ जो है वो काफ़ी प्यारी है, ये आवाज़ ऐसी है जिसे हम बार बार सुनना चाहते हैं। तो अभी के लिए एक और प्यारा सा गाना, प्रीता मजुमदार और उनका साथ देते हुए वन एंड ओनली बाबुल सुप्रियो, टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन। कुछ गानों को उन्होंने रिक्रिएट किया और ये गाना भी ऐसा फ्रॉम द फिल्म दिल विल प्यार व्यार। ये गाना उनके सभी फैंस, हमारे सभी लिसनर्स के नाम। मैं हूँ परी आपके साथ, लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके सितारे, साथ दे रहे हैं हमारा आप ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

और यहाँ पर सरिता जी काटर बोन से साथ दे रही हैं, कह रही हैं खाना बना रही हूँ और आपके शो को पसंद कर रही हूँ। बाबुल सुप्रियो के गाने सुनकर काफी अच्छा लग रहा है, स्पेशली हंगामा फिल्म का गाना आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब। तो बस ऐसे ही कुछ प्यारे गाने चुनकर लाए हैं अभी के लिए। सरिता जी साथ निभा रही हैं आप, हमारे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंजॉय दिस वन, एक खूबसूरत सा नगमा आप सभी के नाम।

और चलिए दोस्तों, दो घंटों का ये सफ़र अब यहीं पर समाप्त होता है और शायद बाबुल सुप्रियो के म्यूज़िक को याद करने का यही सबसे खूबसूरत तरीका है कि इन गानों को हम सिर्फ गाएं नहीं बल्कि इसे हमारी एक कहानी बनकर इसे एक स्टोरी की तरह एंजॉय करें। और बस ऐसे ही गानों को आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं सो यू आर द राइट प्लेस। यह आपका अपना RM3 रेडियो मनोरंजन। अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं प्रोग्राम हमारी धरोहर की ओर, जहाँ पर किरण जानकी प्रस्तुत करेगी प्रोग्राम आपके लिए। मैं हूं परी आपके साथ। समाचारों के बाद एक बार फिर मुलाकात होगी इन योर प्रोग्राम नई सोच। कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। कल हमने त्रिपुरा के जो पुराना रॉक आर्ट बा ऊना कोटी ओकर पर बात करत रली जा। तो आज जरा ये पूर्वोत्तर भारत के छोटा त्रिपुरा पर ध्यान दे जा। ये सबसे सुंदर और मनोरम प्रदेश मानल जाला, जहाँ पर घना जंगल बा, पहाड़ी इलाका बा, नदी और झरना यहाँ पर भरल पड़ल बा। पर्यटन के दृष्टिकोण से त्रिपुरा काफ़ी उन्नत बा और यहाँ पर चा के उत्पादन होवेला, ये खातिर ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर ढेरों एडवेंचर के विकल्प बा, ऑप्शन बा, मनोरंजन के बहुत ही साधन बा और सांस्कृतिक समृद्धि से ई भरपूर बा। प्रकृति से जुड़ल ई प्रदेश प्राकृतिक और हस्तकला से निपुण बा। बुनाई और हथकरघा खातिर त्रिपुरा के जो हस्तशिल्प उद्योग बा वो बहुत विशेष है। त्रिपुरा आगे जनजाति के भूमि रहल। त्रिपुरा के प्राचीन नाम किरट देश रहल। बोलल जला कि ई प्रदेश के उल्लेख हिंदू

धर्म ग्रंथ और अशोक के शिलालेख में भी मिलेला। 1972 में ये राज्य के गठन होल और तब से आज तक त्रिपुरा लगातार प्रगति की ओर बढ़ता। ये 19 गो जनजाति होला जगह है और यहाँ पर बहुत जंगल बा जहाँ पर ये सब जनजाति रहत रलनसा। मॉरिशस और त्रिपुरा के बीच कोनो खास संबंध तो नहीं बा, लेकिन ये जो सबसे बड़ा अंतर बा वो ये कि मॉरिशस में कोनो जनजाति नहीं है और त्रिपुरा में देखा था वह लगभग 20 गो जनजाति के ये घर है। त्रिपुरा के संस्कृति देश के अन्य अंतर पूर्व राज्य के संस्कृति से मिलता जुलता है, लेकिन बंगाल से सटे होवे के वजह से यहाँ पर बंगाल संस्कृति के भी गहरा प्रभाव बा। त्रिपुरा के लोग के नृत्य गायन और जीवन शैली के द्वारा यहाँ पर लोक संस्कृति के जो झलक बा वो बहुत सुंदर रूप से दिखेला। त्रिपुरा प्रसिद्ध लोक नृत्य के दौरान हुआ के संस्कृति के नज़दीक के अनुभव सक बा करे। यहाँ जो नृत्य बा वो नववर्ष पर ख़ास तौर पर हुवेला और यहाँ के गरिया नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। संगीत और नृत्य त्रिपुरा के एगो अहम हिस्सा है। यहाँ पर 84% हिंदू के संख्या है। बंगाली हिंदू के जस्ती प्रभाव बा यहाँ पर और बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म के लोग के साथ सब को यहाँ पर मिलजुल के रहलन सा। दुर्गा पूजा यहाँ के मुख्य त्यौहार है और यहाँ के अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। मुख्य फसल यहाँ पर चावर है और पूरा राज्य में यहाँ पर चावर के खेती होवेला और चावर के संगे संगे चाह के भी खेती होवेला। यहाँ पर पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ है और त्रिपुरा के जो साक्षरता दर है लिटरेसी रेट वो 94% है। ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के मुकाबला पर्यटन के सबसे आकर्षक जगह है। यहाँ पर सबसे जस्ती पर्यटन आवेला और यहाँ पर ये दृष्टि से होटल उद्योग भी काफ़ी संपन्न है और यहाँ के जो रॉक आर्ट के काल हम चर्चा करत रही ऊना कोटी वो देखे लायक है। कहे कि एगो बहुत ही अचंभा करे होला अद्भुत रॉक आर्ट जो सकब्जा बोले 6वीं सदी 7वीं सदी में बनल बा। आज तक एकर पर सवाल बा कि कैसे ये बनल के बनैलक और यंत्र के बिना आज भी कहाँ ई बनावे के संभव रही। तो ई रहल त्रिपुरा राज्य पर थोड़ा जानकारी जहाँ के सबसे बड़ा विशेषता ओकर ऊना कोटी रॉक आर्ट है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: 18 अगस्त 2026 के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कई अहम फैसलों के साथ सदैक का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस की आर्थिक बदलाव की योजनाओं को सामने रखा। देश में ग्रीन डेटा सेंटर और डिजिटल एम्बेसी विलेज स्थापित करने का ऐलान। सदस्य देशों से मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति का पूरा लाभ उठाने का भी आह्वान किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में 6 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी। मामला वाली दीपैत में एक कारोबारी के घर हुई तलाशी और वहां मिली बड़ी रकम से जुड़ा है। FCC ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कार्रवाई में किसी तरह का करप्शन हुआ था या नहीं। यूनिसेफ की प्राकृतिक खूबसूरती को बचाने के लिए नई योजना तैयार। द्वीप पर इको पार्क और इको म्यूजियम बनाने की तैयारी। मकसद है प्रकृति की रक्षा के साथ पर्यटकों को यहां की जैव विविधता से और करीब जोड़ना। और अमेरिका में मेहता के खिलाफ बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़ा बड़ा मुकदमा शुरू। 29 राज्यों का आरोप है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के कुछ फीचर्स युवाओं को लंबे समय तक इन मंचों पर बनाए रखने के लिए तैयार किए गए। मेहता ने आरोपों को खारिज किया। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। डर्बन में सादिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस में जारी आर्थिक बदलाव की दिशा और भविष्य की योजनाओं को सामने रखा। उन्होंने देश में कैरियर न्यूट्रल ग्रीन डेटा सेंटर और डिजिटल एम्बेसी विलेज स्थापित करने की सरकार की योजना का भी ऐलान किया। ऐसी पहल जिनका लाभ पूरे इलाके को भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने सादिक के सदस्य देशों से मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति का पूरा लाभ उठाने का भी आह्वान किया। अब्दुल बुला की गीता सुनाराइन।
1: कल दोपहर बाद डरबान में सादिक के राष्ट्र नेताओं और सरकार प्रमुखों के सामने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी चुनौतीपूर्ण स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने खास तौर पर मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा अफ्रीका तक पहुंच के लिए मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति पर भी बात की। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की। उनके अनुसार तकनीक के क्षेत्र में मॉरिशस की विभिन्न पहल से पूरे अफ्रीका को भी लाभ मिल सकता है।
2: Pleased to inform you that Mauritius is willing to set up a career neutral green data center.
1: मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मॉरिशस एक करियर न्यूट्रल ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रस्ताव है कि हम अपने अफ्रीकी साझेदारों के साथ मिलकर अफ्रीका में एक सोवरेन AI और रेजिलियंस कैंपस स्थापित करें। शुरुआत में इसमें सादिक के सदस्य देशों के डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन बाद में इस तरह की डिजिटल व्यवस्था को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप तक विस्तारित किया जा सके।

0: रखेगा। हम एक डिजिटल एम्बेसी विलेज की कल्पना कर रहे हैं, जहां अफ्रीकी देशों को अपना सुरक्षित और डिजिटल वातावरण मिल सके। ये वातावरण भौतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन उन्हें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों का लाभ होगा। यही वो विरासत है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं। मॉरिशस की ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में संभावनाओं पर भी डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने बात की। उन्होंने मॉरिशस में इस समय चल रहे आर्थिक बदलाव पर भी जोर दिया। मॉरिशस का प्रस्ताव है कि हमारा समुदाय मिलकर एक वैश्विक ब्लू बेल्ट पहल की दिशा में काम करें। ऐसी पहल से समुद्री संरक्षण को मजबूत करने, टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, ब्लू कार्बन परियोजनाओं को समर्थन देने, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार करने, समुद्री संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने और समुद्र के बेहतर एवं समन्वित प्रबंधन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मॉरिशस ने आर्थिक बदलाव के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। हमारे पिछले बजट में ऐसे सुधार पेश किए गए हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाना है, साथ ही ग्रीन और डिजिटल बदलाव को तेज करना और देश की प्रतिस्पर्धा की क्षमता को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। अंत में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने इस बैठक में मौजूद सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। उनके अनुसार ये बैठक एक ज्यादा मजबूत, सक्षम और बेहतर तरीके से एकीकृत सैडक दक्षिणी अफ्रीकी समुदाय के निर्माण में योगदान देगी।
1: डर्बन में सादेक का 46वां शिखर सम्मेलन कई अहम फैसलों के साथ संपन्न हुआ। सदस्य देशों के बीच सहयोग और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर खास जोर रहा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सादेक यूनी वीजा समझौते को मंजूरी दी गई। कृषि व्यापार को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए धन जुटाने पर भी सहमति बनी। साथ ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को लेकर सदस्य देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। डर्बन आईसीसी में कल शाम समापन समारोह के दौरान सम्मेलन के फैसलों और निष्कर्षों की जानकारी दी गई। यूनिसेफ की प्राकृतिक खूबसूरती को बचाने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है। इसके तहत द्वीप पर इको पार्क और एक इको म्यूजियम बनाने की तैयारी है, जहां आने वाले लोग यहां के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और प्रकृति के बारे में जान सकेंगे। इस योजना में स्थानीय लोगों, विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी साथ लिया जाएगा। मकसद है द्वीप की खूबसूरती को बचाना और यहां आने वाले पर्यटकों को प्रकृति से और करीब से जोड़ना। माधवी जगन्नाथ, गीता नारायण।
0: थुडुडुस के नीले और साफ पानी से घिरा यूनिसेफ हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस जगह की पहचान और लोकप्रियता के साथ साथ इसकी प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से टापू का प्रबंधन करने वाले गिवेओ ग्रुप ने अपनी सहायक कंपनी लॉजिया देसिल लिमिटेड के माध्यम से एक टिकाऊ पुनर्विकास योजना तैयार की है।
2: Et c'est à cause de sa raison-là qu'il nous vise à remettre un cadre, une organisation pour qui nous ayons une vision de préservation.
0: Rivéo ke Chief Operations Officer Grégory Coquet कहते हैं, यूनिसेफ उसका समुद्र और पर्यावरण दबाव में है, इसलिए इसे पुनर्व्यवस्थित करना चाहिए जिससे इसका संरक्षण हो सके। हम 2027 के आरंभ में पहले कार्य शुरू करेंगे और इसके बाद अगले 10 सालों के दौरान कई चरणों में विकास कार्य जारी रखेंगे। पर्यावरण को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा सामाजिक पहलू भी हैं, जहां ऑपरेटरों को यूनिसेफ के आसपास अपना काम जारी रखना पड़ेगा। इस योजना के पहले चरण में एक इको पार्क और एक इको म्यूजिक बनाया जाएगा। इनकी रूपरेखा टिकाऊ विकास की रणनीति पर सलाह देने वाली कंपनी डायनामिया ने तैयार की है। कंपनी के निदेशक Thierry Le Breton कहते हैं,
3: le travail d'un écopark c'est précisément trouver qui manière nous capable retrouve cette symbiose, ce lien entre une activité humaine et un endroit qui joli mais quand nous pas dégrade l'île étant nous servili.
0: इकोपार्क में मानवीय गतिविधियों और एक सुंदर जगह के बीच संतुलन बनाए रखना है। इसका प्रयोग करके इसे बर्बाद नहीं करना है। इको पार्क के प्रवेश में इको म्यूजियम स्थित रहेगा, जिसमें इस जगह में पाई जाने वाली सभी तरह की मछलियां और पौधे होंगे। मॉरिशियन वैज्ञानिक यहां अपना काम करने आएंगे, अपने खोज कार्य जारी रख सकेंगे। इस परियोजना में मैंग्रोव्स के नीचे स्थित दलदल वाले क्षेत्रों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। यूनिसेफ में पाए जाने वाले मैंग्रोव्स बहुत ही समृद्ध हैं। ये सभी तरह के जीव जंतुओं की नर्सरी हैं। समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं, वे यहीं पैदा हो

0: होते हैं, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। अंतिम उद्देश्य पर्यटन के विकास को इस तरह व्यवस्थित करना है कि इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्र के इकोसिस्टम का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।
1: डॉक्टर जीतू अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के दौरान लापरवाही का आरोप है। 26 साल की एक महिला का कहना है कि डिलीवरी के समय लेबर वार्ड में एक मिडवाइफ ने उसके बच्चे के सिर को वापस ढकेल दिया। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हमारे सूत्रों का कहना है कि डिलीवरी के दौरान इस तरह के कुछ कदम सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकती है। आखिर सामान्य तौर पर डिलीवरी कैसे होती है और अगर जन्म के समय बच्चे की सेहत को लेकर कोई खतरा दिखाई दे तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस पर हम ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ी देर में वापस आएंगे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में अब तक 6 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी। मामला मार्च 2024 में वाली दे प्रेत में एक कारोबारी के घर हुई तलाशी से जुड़ा है। इस मामले में 2 और पुलिसकर्मियों को कल गिरफ्तार किया गया। इसके साथ अगस्त की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार पुलिस अफसरों की संख्या 6 हो गई है। मामला तलाशी के दौरान मिली एक बड़ी रकम से जुड़ा है। एफसीसी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कार्रवाई में किसी तरह का करप्शन हुआ था या नहीं। मामी रवा तोमांग की जमानत याचिका पर सुनवाई के दूसरे दिन आज बेल एंड रिमांड कोर्ट में बहस जारी रही। सुनवाई के दौरान सामने आया कि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी एफसीसी कारोबारी मामी रवा तोमांग के खिलाफ जांच पूरी करने में 6 महीने से 1 साल तक का समय ले सकती है। ये जानकारी एफसीसी के एक्टिंग चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन परमहंस आलियो ने मंगलवार को हुई तहकीकात के दौरान सामने आई है। उसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी है। बचाव पक्ष के वकील में कुशल लुबिन ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि उनके मुवक्किल 9 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्होंने मामी रवा तोमांग के खिलाफ मामले में शामिल 2 शिकायतों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। जमानत के लिए दायर इस आवेदन पर सुनवाई बेल एंड रिमांड कोर्ट में जारी है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। पाई में बस का इंतज़ार यात्रियों के लिए रोज़ की परेशानी बनता जा रहा है, ख़ासकर लाइन 150 यानी कि रूट 150 को लेकर लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं। यात्रियों का कहना है कि बसें तय समय पर नहीं आती, कई बार लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और रविवार को बसों की संख्या भी कम हो जाती है। ये समस्या कई साल से चली आ रही है और शिकायतों के बावजूद हालात नहीं बदले। और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि डॉक्टर जीतू अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस सिलसिले में ज़्यादा जानकारी अनावेल वुलबेयर रजनी बेकर दे रही हैं। सुनते हैं कि आखिर सामान्य तौर पर डिलीवरी कैसे होती है और अगर जन्म के समय बच्चे की सेहत को लेकर कोई खतरा दिखाई दे तो डॉक्टर क्या करते हैं।
0: लाइनबैडक्स पोर्ट लुइस में एक महिला ने जीतू अस्पताल में शिशु को जन्म देने के दौरान चिकित्सा लापरवाही के एक मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस महिला के मुताबिक पिछले 10 अगस्त को उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन शिशु को जन्म देते समय कुछ असामान्य बातें पेश आई। उन्होंने बताया कि जब शिशु का सर बाहर आने लग रहा था तब मिडवाइफ ने अपने हाथ से इसे फिर से अंदर की ओर ढकेला। जीतू अस्पताल के गायनेकोलॉजी कंसल्टेंट इंचार्ज डॉक्टर हिलमा भूमा ने कहा,
2: beaucoup fois si comme j'ai un patient c'est pas son premier enfant mais l'une des agences enfants nous connaît ce périnée il est assez flexible les là ce qui nous fait nous bord ce périnée pour empêcher les déchirer et c'est là même qui nous bloque ce périnée et nous empêche les comme dire trop stretch vers l'anus et si nous laisse ça malheureusement il est capable déchirer l'anus et il peut éventuellement causer un trauma।
0: कुछ मिनट बाद शिशु का जन्म हुआ, लेकिन कुछ गहन जांच करनी पड़ी। जीतू अस्पताल के ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर देवेन दौलत ने कहा,
3: les enfants qui naissent tout le temps il y a un pédiatre qui présent right c'est un pédiatre qui est entraîné comment pour faire la resuscitation d'un enfant qui pas bien il examine lui et que là il peut décider s'il y a un problème il prend les enfants là il amène ça dans l'unité néonatale intensive c'est-à-dire le NICU et que si je trouvais qu'il y a un problème

0: niveau saturation ou au niveau quelque part, les lasers de pendant, enfin là, il y a des dents, toutes les unités intensives néonatales.
1: इस मामले में माँ ने अस्पताल के ड्यूटी मैनेजर के यहाँ शिकायत दर्ज की। अस्पताल में अंदरूनी जांच शुरू की गई है, जबकि इसके साथ साथ संदिग्ध चिकित्सा लापरवाही के लिए एक पुलिस जांच की जा रही है।
2: मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक संबंधों में एक नया अध्याय दक्षिण अफ्रीका के नए उच्चायुक्त हेनरिच जोवानी एप्रिला ने आज राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को अपना परिचय पत्र सौंपा। स्टेट हाउस में हुई इस मुलाकात के साथ उन्होंने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हम श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शांति से जुड़ा एक पवित्र समय है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गंगा तालाब में आस्था का यही गहरा भाव दिखाई दे रहा है। विशेषकर हर सोमवार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। पवित्र तालाब के किनारे गूंजते हर हर महादेव और भोलेनाथ की जयकार मानो मन को भक्ति से जोड़ रहे हों। अदिति अवतार।
3: गंगा तालाब हिंदुओं के लिए मात्र पूजा का स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, आस्था और एकाग्रता का एक केंद्र है। इस श्रावण मास के दौरान विशेष रूप से हर सोमवार को मंगल महादेव के चरणों में उपस्थित होकर हर व्यक्ति अपने तरीके से उनके प्रति भक्ति अभिव्यक्त कर रहा है। श्रावण मास की पूजा का आयोजन ही मॉरिशनों के बीच शिव भक्ति को एक अलग ही आयाम देने के उद्देश्य से पिछले 2019 से शुरू हुआ था।
4: नौजवानों के साथ मिल करके 2019 से लगातार हर साल हम यहां पर गंगा तालाब में श्रावण मास की पूजा करते हैं, श्रावण सोमवार की अभिषेक करते हैं और श्रावण मास के अंतिम वीकेंड में हम यहां पर 3 दिन का भव्य पूजा करते हैं। हर 6 घंटे में अभिषेक होता है और रुद्र महायज्ञ से पूर्णाहुति होती है। साल दर साल 2019 से साल दर साल भक्तों की तादाद बढ़ता जा रहा है और जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान शंकर के दरबार में भक्तों का इतना भव्य मेला लगा हुआ है।
3: कहा जाता है कि भगवान शिव को पूजने का कोई विशेष माध्यम नहीं होता। वे भोलेनाथ इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि उनकी भक्ति करने वाला शांत और स्वच्छ मन से ही उनसे जुड़ सकता है।
5: Nous pouvons gagner ça Shivratri vibes là, donc nous pas besoin d'attendre uniquement février, mars pour nous gagner ça vibes là. Surtout, comment nous dire, nous besoin d'abhakti. Donc pour moi, Shiva déjà lui donne moi un peace of mind.
6: Shiv ji ko adi yogi mana jata hai. Aur kehte hain ki yog वो है, वो जो मन की शांत हम चाहते हैं वो आदि योगी जो हम पूजा करते हैं इसके द्वारा होती है। योग क्या है? योग वो बोलते हैं जो मेडिटेशंस, जो मन की शांति हमें चाहिए होता है वो शिव जी की पूजा करने से ही होता है, शिव जी की साधना करने में ही होता है।
7: प्रिय शक्ति पुनुगै ला फोर्स, प्रिय शिवा पुनुगै ट्रैंक्विलिटी।
8: जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डम डम डम डम निनाद वड्ड मरवे चकार चंड तांडवम तनोतन शिव शिवम। महादेव हमारे कण कण में व्याप्त हैं, एक धागे में दिखते हैं महादेव, हर कण में हैं, हर क्षण में हैं, हमारे मन में, हमारे तन मन धन में हैं।
3: मर्शनों के बीच एक भाव हमेशा उजागर रहता है। कई लोग मानव सेवा को ही माधव सेवा मानते हैं। गंगा तालाब पर बहुत लोग प्रसाद और भोजन की व्यवस्था करके सेवा भाव प्रदर्शित करते हैं। संगीत को आस्था और भक्ति की अभिव्यक्ति का एक और माध्यम माना गया है। ढोलक, गिटार, मंजीरा लिए शिव भक्त अपने भगवान के नाम का गुणगान करते देखे जाते हैं। श्रावण मास के दौरान श्रद्धा और संगीत का यह अनूठा संगम गंगा तालाब पर न केवल शिव भक्ति अभिव्यक्त कर रहा है बल्कि सेवा, सामुदायिक एकता और युवा सहभागिता की भावना को भी मजबूत कर रहा है।
2: जैसे सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि अमेरिका में मेता के खिलाफ बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़ा एक बड़ा मुकदमा आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है।

0: 29 अमरीकी राज्यों का आरोप है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में ऐसे फीचर्स जानबूझकर बनाए गए जो युवाओं को लंबे समय तक इन मंचों पर बनाए रखते हैं और उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं। मुकदमे में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग समेत कई बड़े अधिकारियों की गवाही होने की उम्मीद है। आरोप साबित होने पर मेटा को भारी जुर्माने के साथ अपने मंचों को बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। हालांकि मेटा ने सभी आरोपों को खारिज किया है। इस पर तथा दुनिया भर की अन्य खबरों को सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
1: ऊंचे पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता और इन सब के बीच आस्था की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं के कदम, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जहां श्रद्धालु बाबा बुद्धा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पुंछ जिले के मंडी इलाके में स्थित बाबा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहां भगवान शिव के दर्शन प्राकृतिक रूप से बने सफेद पत्थर के शिवलिंग के रूप में किए जाते हैं। इसी पवित्र स्वरूप के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पहाड़ी रास्तों से गुजरते श्रद्धालु हाथों में धार्मिक ध्वज और वातावरण में गूंजते भगवान शिव के जयकारे, यात्रा के दौरान भक्ति का एक अलग ही वातावरण देखने को मिलता है। कई श्रद्धालुओं के लिए यहां पहुंचना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। रक्षाबंधन करीब है और हैदराबाद के बाजार राखियों से सज चुके हैं। रंग इतने, डिजाइन इतने कि पसंद करना भी मुश्किल हो जाए। कहीं पारंपरिक कुंदन राखी, कहीं चमकदार आधुनिक डिजाइन, तो बच्चों के लिए बार्बी वाली राखियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। हैदराबाद की यादव राखी दुकान वर्षों से इस बदलते सफर की गवाह रही है। एक दौर था जब राखी महज 10 पैसे में मिल जाती थी और आज यहाँ कुछ खास राखियों की कीमत 1000 रुपए तक पहुँचती है। समय के साथ कीमत बदले, डिजाइन बदले, पसंद भी बदली, लेकिन कलाई पर बांधा जाने वाला ये छोटा सा धागा आज भी भाई बहन के संबंध की वही पुरानी कहानी कहता है। केरला इन दिनों ओनम के रंग से रंग चुका है। यूनिवर्सिटी कैंपस में युवाओं ने इस पारंपरिक पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया। पारंपरिक परिधान, संगीत और साथ मिलकर त्योहार मनाने की खुशी। ओनम केरला की संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़ा पर्व है और कैंपस की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि परंपराएं केवल विरासत में नहीं मिलती, नई पीढ़ी उन्हें अपने अंदाज में जीती भी है और आगे भी बढ़ाती है।
0: बढ़ते हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर रजनी बेकर के साथ।
2: मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एक एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर नम और अस्थिर हवाएं चल रही है, जो हमारे स्थानीय मौसम को रह रहकर प्रभावित कर रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी। टापू के आधे पूर्वी हिस्से में सामान्य से तेज बारिश होगी और सेंट्रल प्लाटो पर भी ऐसा होगा। कुछ इलाकों पर कोहरे छाए रहेंगे। कल आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे। टापू के आधे पूर्वी हिस्से में बादल घिरे रहेंगे और सेंट्रल प्लाटो पर भी थोड़ी वर्षा होगी। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। बारिश होती रहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह से इसमें सुधार आने लगेगा। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 26 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:57 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:29 पर सूर्योदय।

तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे सभी न्यूज़ बुलेटिन एमबीसी प्ले, एमबीसी नाउ और हमारी

0: वेबसाइट mbc.mu पर भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, आप सभी को नमस्कार। अभी हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। महात्मा गांधी रोड त्वाबुचिक त्रियोली में, महात्मा गांधी रोड त्वाबुचिक त्रियोली में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री शरदानंद पाउदो जिन्हें शरदानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनके घर त्वाबुचिक त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस के शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमोरो 1 PM। लाल बहादुर शास्त्री रोड सेंट जूलियन दुतमों में, लाल बहादुर शास्त्री रोड सेंट जूलियन दुतमों में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री राजगनलाल सिबन जिन्हें वकील के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके पिता प्रेमचंद सिबन के घर सेंट जूलियन दुतमों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेबास की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो 11 AM। अवेन्यू ला पेरूज बेलरोज में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री बिजमोहन सिरतन जिन्हें क्रिसुन सिरतन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर ला पेरूज बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेतु क्रिमेशन ग्राउंड ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1 PM। रायरोड मोतायोगी में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती कन्या पैदाश नाम उजायब और जिन्हें वीना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे नवीन नंद कुमार कन्या के घर मोतायोगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 9 AM। रुत कास्केट पाल्मा का ट्रिबोन में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीराबाई रागू पैदाशम कहानू और जिन्हें शांति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री आनंद रागू के घर पाल्मा का ट्रिबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1 PM। पियर सिमोनेट स्ट्रीट फ्लोरियाल में 78 साल की श्रीमती कमलावती संजावन पैदाशनाम ठाकुर और जिन्हें कमला के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगागा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Raftar Vibes. Filmir.
3: You're listening to RM3 Radio.

कुछ खोना है कुछ पाना है इसी खूबसूरत गीत के साथ आपका हम स्वागत करते हैं शाम के 6:31 लेकर आए हैं प्रोग्राम नई सोच जहां पर कुछ पॉजिटिव गाने कुछ गाने ऐसे जो शायद जिंदगी का फलसफा हमें समझा जाए अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा होता है दोस्तों लेकिन जिंदगी को खुलकर जीना जरूरी है लाइफ इज ब्यूटीफुल और इसी बात को समझाने के लिए कुछ प्यारे गाने आपके नाम जिंदगी में सिचुएशंस चाहे कैसी भी क्यों ना हो बस एक खूबसूरत हम सफर किसी अपने का साथ किसी अपने की बात शायद सफर को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाती है और अभी के लिए कोशिश यही है कि वो जो आपके हम सफर हैं वो हम बन सके म्यूजिकली आपका साथ दे सके और गानों के जरिए कुछ अच्छी मीठी बातें आप तक पहुंचा सके तो चलिए दोस्तों मैं हूं परी आपके साथ प्रोग्राम नई सोच अभी से लेकर रात के 9 बजे तक आपका और मेरा यानी कि परी का साथ

बिल्कुल दोस्तों, यहां पर ऐसे ही कुछ प्यारे गाने जो जिंदगी का फलसफा समझाते हैं और आपके लिए ऐसे ही प्यारे गाने चलाना हमें भी अच्छा लगता है। लाइफ इज नॉट दैट इजी, लेकिन जब ऐसे खूबसूरत गाने हो तो लगता है कि भाई इतना भी मुश्किल नहीं है। जिंदगी के जो भी उतार चढ़ाव है उसे साथ मिलकर झेल ही लेंगे। वैसे जैसे हम कहते हैं दैट लाइफ इज ब्यूटिफुल और जिंदगी मिलती है बस एक बार, तो इसका आप लुत्फ उठाइए और गानों के साथ आप अभी के लिए अपनी शाम को एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स योर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शो जिसका नाम है नई सोच। जैसे हम कहते हैं इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या सोचते हैं। लाइफ में जो भी पड़ाव आते हैं अगर आप पॉजिटिव रहकर उसे आप पार करना चाहेंगे तो जिंदगी और भी हसीन और भी खूबसूरत लगेगी। एंजॉय दिस वन।

बिल्कुल जैसे ये गाना कहता है इंसान के जाने के बाद सब कहते हैं कि बड़ा ही अच्छा इंसान था जब इंसान सामने होता है तो कोई अच्छी बात करता नहीं बस ऐसी ही बातें जो शायद किसी को दर्द दे जाए शायद किसी को दुख पहुंचा जाए तो अगर वो एक अच्छे इंसान आप बन सकते हैं सो व्हाई नॉट अगर किसी की जिंदगी में आप भी फूल बिखेर सकते हैं सो व्हाई नॉट अभी के लिए एक ऐसे ही इंसान हमारा साथ दे रहे हैं एंड दैट्स गोविंद रघुनंदन हमारा साथ दे रहे हैं आप और थैंक यू फॉर एवरीथिंग आप भी ऐसे ही फूल बिखेरते रहिए और हम भी ऐसे प्यारे गाने आपके लिए चलाते रहेंगे अभी के लिए तो किशोरदा की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना जो जिंदगी को थोड़ा सा और खूबसूरत बना रहा है हमारे सभी लिसनर्स के नाम

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए दोस्तों अभी के लिए चल पड़ा एक और खूबसूरत सा गाना राहत फतेह अली खान और कृष्णा की आवाज़ें. गाना ऐसा है जो जिंदगी में जो भी भागदौड़ चल रही है उसमें एक ठहराव लेकर आता है, कुछ सोचने पर मजबूर करता है और जिंदगी में यादें जो हैं हमेशा रह जाती है. तो अगर आप भी किसी खास को याद कर रहे हैं, दैट स्पेशल समवन जो शायद आपकी आंखों के सामने नहीं लेकिन दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये गाना उन सभी लोगों के नाम लाइक वी से कि ज़िंदगी में हम सब आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं. बीट योर पेरेंट्स, बीट योर लव्ड वंस, या फिर कोई दोस्त जो दिल के शायद बहुत करीब था लेकिन अब काफ़ी दूर. तो जिन्हें अभी आप याद कर रहे हैं इस वक्त जो शायद आपके जहन में आ रहे हैं इस भाग दौड़ भरी दुनिया में,

इस रफ्तार भरी दुनिया में अगर कोई ठहराव आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है तो बस उसी इंसान को आप याद करें और इसी गाने को हम उनके नाम डेडिकेट ज़रूर करना चाहेंगे। एक आवाज़ ऐसी जो दिल को राहत पहुंचाती है, राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़। इसी गाने के साथ नई सोच प्रोग्राम में हम आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ और रोमांटिक गाने कर रहे हैं आपका इंतज़ार इन दिलों की आवाज़। मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक सजाए रखेंगे इस खूबसूरत रोमांटिक महफिल को आपके लिए। फॉर नाउ सूदिंग सॉन्ग, सिट बैक रिलैक्स, एंजॉय करें RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ।

0: RM3 Radio. Radio.
1: बिल्कुल दोस्तों, ये आपके लिए प्यार ही तो है। यहाँ पर आवाज़ थोड़ी सी नासाज। प्रकाशवती जी ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम बता रही है कि आवाज़ आज कुछ अलग सुनाई दे रही है। बिल्कुल जी, मौसम का असर है और आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। कुछ प्यारे रोमांटिक गाने आपके लिए इस खूबसूरत रात में, और यहाँ मॉरिशस से आपके लिए प्रकाशवती जी भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार। वार्म वेलकम हमारे सभी लिसनर्स का दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, जहां पर आपके लिए हम चलाने वाले हैं कुछ सुपर रोमांटिक सॉन्ग्स। तो मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक। साथ दे रहे हैं आप भी तो बस मैसेजेस डेडिकेशंस 5250 6200 5250 6200 पर आपका इंतजार।

सो खूबसूरत गानों का कारवां आपके लिए हमने सजाया है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. रात के 7:29 हो रहे हैं. हमारे साथ कनेक्टेड हमारे सभी लिसनर्स, आई डू होप दैट इन रोमांटिक गानों को आप पसंद कर रहे हैं. दिलों की आवाज़ प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 9 तक मैं हूँ परी आपके साथ. आपकी शाम को थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा म्यूजिकल, थोड़ा सा मैजिकल हम बना रहे हैं. साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों. मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 तक.

और यहां पर अनीता जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप गानों को सुन रही हैं गानों को पसंद कर रही हैं कनेक्टेड हैं रेडियो मनोरंजन के साथ कहती हैं कि बस आपका साथ दे रही हैं और आवाज आपकी जल्दी ठीक हो जाए थैंक यू सो मच मींस अ लॉट अनीता जी अभी के लिए आपके सभी दोस्तों के नाम सभी अपनों के नाम खूबसूरत गाने ऑन रेडियो मनोरंजन

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक, रात के 8:03। तो चलिए दोस्तों, रात का वक्त, कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ रोमांटिक गानों के साथ। हमने आपकी इस शाम को और अब रात को सजाया है। नाचो प्रोग्राम दिलों की आवाज़, जहां पर कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए हम चला रहे हैं और आपका साथ, आपका प्यार हमारे लिए खास एंड स्पेशल। थैंक यू सो मच। प्रकाशवती जी यहां पर कह रही हैं कि शॉपिंग करना चाहती हूं, लेकिन गाने इतने प्यारे हैं कि बस गानों को छोड़कर आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, कोशिश यही है कि इन गानों के साथ हम आपके दिल को लुभाए रखें। फनाओ, मैं हूं परी आपके साथ। रात के 9 बजे तक सजेगा हमारा ये कारवां आपके नाम। स्टे कनेक्टेड। मैसेजेस डेडिकेशंस 5250 6200 5250

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. और चलिए दोस्तों, रात के 8:20 2020, दैट्स परफेक्ट टाइम. 18 द फोकस कनेक्टेड हैं आप RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ. मैं हूं परी आपके साथ. दैट्स योर प्रोग्राम दिलों की आवाज, जहां पर शामिल हो रहे हैं आपके कुछ प्यारे गाने. संजीव जी ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका US हमारा साथ दे रहे हैं एंड एंजॉयिंग द सिलेक्शंस. चलिए सभी के लिए ये जो गाना है शामिल हो गया आपके लिए, एंड विशिंग यू अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन. यह मॉरिशस से आपके लिए हम भेज रहे हैं वार्मथ एंड सम गुड म्यूजिक, जहां पर आप सात समंदर पार होते हुए भी यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल वाइब्स ऑफ योर कंट्री. एंड वेल, यहाँ पर लिख रहे हैं आदाब, एंजॉइंग द सॉन्ग्स. रेहाना जी फेनिक्स से हमारा साथ दे रही हैं आप. तो चलिए यहाँ पर नाम कर दिया ये गाना आपके साथ देने के लिए. शुक्रिया हमारे सभी लिसनर्स का जो हमारे साथ इतने प्यार से हमेशा जुड़े रहते हैं. एंड आई डू होप दैट सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त या फिर रात का वक्त, एंजॉय करते हैं आप ये प्यारे गाने ऑन रेडियो मनोरंजन. अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 बजे तक. एंजॉय दिस वन.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. And well, ladies and gentlemen, आपके लिए हम लेकर आए हैं West Mix of Music. It's 8:43 और अभी भी आप हमारा साथ दे रहे हैं Tuesday की ये खूबसूरत सी रात जहाँ पर connected हैं आप Radio Manoranjan के साथ. कोशिश यही है कि गाने चलते रहें और आपका दिल बहलता रहे. जैसे हम कहते हैं कि हर किसी की कहानी में एक soundtrack जरूर होता है. कुछ गाने ऐसे जरूर होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, कुछ गाने ऐसे जिनके साथ यादें जुड़ी होती हैं और कुछ गाने ऐसे जो किसी खास की याद दिलाते हैं. सभी के लिए जो भी है आपका कनेक्शन, आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग द मोमेंट्स राइट हियर हमारे साथ. सुकुमार सानू, सपना मुखर्जी की आवाज़ें टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन. 90s का ये ब्यूटीफुल गाना आप सभी के नाम. साथ देने के लिए हमारे सभी लिसनर्स, आपका तहे दिल से शुक्रिया. अभी इस वक्त मिस्टर ज्ञान बिहारी साथ दे रहे हैं, उनकी वाइफ सविता, सिस्टर इन लॉ गीता, साथ में है संजीव, सुनील, रानी एंड शीतल. आपका भी हम स्वागत करते हैं ऑन रेडियो मनोरंजन. चलिए ये प्यारा सा गाना आपके नाम इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स. परी का साथ रात के 9 बजे तक.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. वक्त हो चला है कि मैं आपसे लूँ अलविदा, लेकिन वादा रहा कि मुलाकात ज़रूर होगी ऑन रेडियो मनोरंजन बहुत ही जल्द. तब तक के लिए साथ देते रहिए, थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे भोजपुरी प्रोग्राम. और छोड़े जा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना आपके नाम. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ.

0: Nova Jawa Batu, Serentawa Radio Mauritius, Radio Manoranjan.
1: Continuous music.
2: RM3. On the hour, every hour. Radio Mauritius.
3: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
4: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा

सब संगतियों के आज प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल एमबीसी रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉर्शस रेडियो मनोरंजन एफएम मोड पर और रेडियो मॉर्शस आईएम मोड पर 94.95.6 और 98.2 मेगाहर्ट्ज एफएम रेडियो मनोरंजन और 819 किलोहर्ट्ज एएम टू रेडियो मॉर्शस एएम बैंड पर सब संगत में स्वागत करते हैं। जब भोजपुरी तरह का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे और हमके लाइव प्रसारण चलाता है। हमने की टिकटॉक पेज रेडियो मॉरिशस की टिकटॉक पेज पर भी चलाता है अभी से रात के 11 बजे और आज मंगल की रात मंगल 18 अगस्त साल 2024। हाँ तो बड़ी ठंडा कर रहता है, ठंडा ठंडा के मौसम बा खूब पानी बरसल कल रात के यार फजी के भी खूबे पानी बरसल पानी चैला अच्छा बा पानी बरसी हमने की जलाशय में पानी आए और हमने की पानी की कोनो प्रॉब्लम नहीं हुई। पर अभी ले स्थिति चिंताजनक बा से डब्ल्यूबीआई मांग कर रहा था श्रोता लोग से कि जनता से मांग बा कि पानी ज़ाया नहीं करे के कहे कि पानी के स्तर घटले जाता और पानी हमने के सब समाप्त हो जाता जलाशय में कहे कि जितना पानी चाहे बरस के उतना नहीं बरसल बा। भोजपुरी तरह का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे मन करता है कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो हमके टिकटॉक पेज पर सकब एसएमएस करे रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर साथ में सकब हमके टेलीफोन करे 0085 पर 0085 पर

चलो शुरू कर जाए भोजपुरी प्रोग्राम की सुबह रामचंद्र फकीर की आवाज़ में बुलतवन दुल्हन के दादी। अब दुल्हन की दादी कौन कांड कर लग बा, चलो एक साथ सुने।

समझते हैं लोग दुनिया में सबसे बड़ा पूजा है सेवा अपन से बड़ा और अपन से छोटा के हमेशा सेवा करिया और कोनो भूखा के खाना दे दा कोनो प्यासा के पानी पिला दिया कोनो बीमार व्यक्ति के दवा दे दिया एक रे बुलाला मानव सेवा जब तू सेवा करबा तब भगवान थोड़ा आशीर्वाद दे भगवान के कृपा तौर पर हमेशा बना रही सबसे बड़ा पूजा हमेशा याद करिया वह एक दूसरे की सेवा करला रात के 9:09 बहुत बहुत धन्यवाद हमने के साथ हुआ था यस रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर और भोजपुरी तरह का प्रोग्राम रात के 11 बजे रही अगला गीत जोली चौकरी से प्यार करी ना और गीतों चलाते ईसा आकाश आतिश खतीर मोहम्मद इकबाल सबरीना नौशीन

शोभा दिनेश हरी रविदिनो विश्वानी रामपू रुक्या सुब्राती देवीना व्यास बमा और रोहन खातिर तो चलो प्यार से गीत थोड़ा सुनाओ जा कुणाल हीराल की आवाज़ में और जितना कोई के मन करता हमने के बेशक ही प्रोग्राम में गीत मांगे के सकबर टेलीफोन करे का जवाब क्या हमने के रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर मिसाज भेजिया। ऑलराइट चलो गीत सुने चोरी चोकरी से प्यार करिएगा।

और हमनी तुल के साथ देवत है इस रेडियो पर एमबीसी रेडियो के दुगो चैनल पर साथ में टिकटॉक पेज पर हमनी के साथ देवत हुआ और संगतिया लोग हम तरफ से मांग करब कि ढेर से पीस मसाला और पीमा ढेर नहीं खाइए एकर से पेट खराब हो जाला और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए दूध में या पानी पीवत अच्छा बा सुफमा दूर करे रहता है जो जेपी सा इस जिस चारा खाए के अब दकारी में ढेर से पीस मसाला पीमा पड़ जाए तब पेट गड़बड़ा जाए भैया रात की 9:14 और अगला गीत हम नीचे आप सही सब संगत्या लोग जो उनके साथ वो तो वन जलेबी को

कोमल आराध्या डीजे दया हाय दया भाई कैसे बा मुकेश बिरजबुकन मानी प्रिया दया हिरीश नारायण हमनी के बेस्ट फ्रेंड हमनी के साथ वोथवन अक्षय कौतिक सुबिता जया मुनि शिवनिया कनाई देव देवन नादीवाला देवन नादीवाला फिजी से हमनी के देखा थवन और सुना थवन टिकटॉक पेज पर हाय टीना रीता अमृता रवि बंगारू मरियम शीता इंद्रानी बिहारी रहरन कौछ मेरी ते तगला गीत तो लोग खातिर बहुत ही प्यारा सन गाना चाहो तीस केने खोजब को तोरी सूरत अब केने खोजब भैया चला अब हमने के साथ रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर नाचब स गाओब स कमरवा डुलाओब स रात के 11 बजे सक बजा टेलीफोन करे काज जगह दे विद जगह विद सैंक पर या एसएमएस करिए हमने के रेडियो मोशन के टिकटॉक पेज पर चला केने खोजब स हमने के कोको के कहाँ गलमर कोको गे चलो के खोजला केने खोजब कोको

संगतिया लोग हिंदी में गो कहावत बा जैसा अन वैसा मन और अंग्रेजी में गो कहावत बा आई एम व्हाट आई ईट ये खातिर ढेर कोई तामसिक भोजन नहीं करे नंस और लोग कुछ सात्विक भोजन करे के जैसे कि सब्जी और फल और ढेर कोई प्याज लहसुन भी नहीं खा रहा ढेर को जो पूजा पाठ कर रखा है बोले नंस की है जो प्याज और लहसुन बा एक में तामस और जो तामस है ये एक्सीटे कर रहा आदमी के गुस्सा दिलावेला फोवो के कर रहा था खातिर ढेर कोई लहसुन और प्याज नहीं खा रहा था तो सबको कि अपन अपन चॉइस हम मना नहीं करते इसे पर जो लहसुन और प्याज है एक तामसिक भोजन बोलल जला और आजकल तो पूजा पाठ हुआ था तो सब कोई जो है शाकाहारी भोजन करता सात्विक भोजन करता और बोलल जला कि जो सात्विक भोजन है स्वास्थ्य खातिर बहुत अच्छा और एगो सर्वे हो रहा अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में वहाँ बोलल गल रहा एगो 2000 लोगन पर ऐ सर्वे हो रहा कि जितना लोग वेजिटेरियन होन से मतलब जो शाकाहारी होन से सब्जी दाल सब्जी रोटी फल खालन से वो लोग के स्वास्थ्य जस्ती अच्छा रहेला और उन की लंबी आयु भी हो रहा ये एगो सर्वे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हो रहा फिकवा और अभी रात के 9:20 हुआ था संगे संगे चली रहा अगला गीत है किशोर की मियाँ गीतवा गए और है गीत रहता बहुत बहुत प्यार के साथ उमिला जोधा खातिर दिया हेमराज विक्रम बीमाना विलियम जगू हाय विलियम जगू जी आप मौर्या कनाडा से बहुत बहुत प्यार से हमने सुना था और देखा था बहुत धन्यवाद भाई जी गुनू फरीदा हेलो बोलते NMBC विजिट करे आइए जा जरूर स्वीटी माधवी शिवलाल मिशन क्रॉसो दालमाती के रविराज बिचुक हमने के साथ देव थोकर पत्नी स्वयं प्रभा ब्रता प्रत्यक्ष और सब बिचुक परिवार मिशन क्रॉस रोड लाल माटी से और ये गीत हमने चलाओ अब जागला गीत संगे संगे चली जा है गीत चली अनिता लाल जी खाते जो बहुत प्यार से हमने के देखा तवन और सुना तवन हे माँ धनु हेलो नमस्ते सबके स्वागत बा और बेशक आरोप के साथ देव थवन और चलो एक साथ सुने गीत संगे संगे चली जा और जब कोई साथ मिल जाला जिंदगी में तो अकेलापन दूर हो जाला संगे संगे सब कोई जाला और संगे संगे रला में जो मजा है तो वो मजा और कहाँ चलो एक साथ सुना है गीत संगे संगे चली जा

ऐसे ही संगे संगे हमने तरुण के संगे चला था ही जा तरुण के संगे गीत भी गावा था सर रेडियो पर और जितना कोई हमने के सुना था बहुत बहुत शुक्रिया हमने के साथ देखा देर गमटवा होते बा भैया अब सुनब जागला गाना ललना रागिनी सवारत लीलो माथुर सुकन की गवल गीत ललना था देखकर घर में चिबाबू होलबा बहुत बहुत बधाई जब को बाबू आवेला घर में तो कितना खुशी छा जा रहा हो कि नहीं और बुरा चला संगतिया लोग के इंसान के कबो कोनो चीज बस नहीं होलबा और इंसान के जितना मिलेला ओके बसवे नहीं होला ये इंसान के स्वभाव है अब मान ला थोड़ा को लोथरी मिल गल तब लोथरी मिल गल तब बोल बहंगे को बड़ा घर चेहरा बड़ा घर जैसे को गाड़ी चेहरा नौकर चाकर चेहरा और इंसान के चुनाव के कबो कौन चीज़ बस नहीं होला भगवानों के देते जाला पर इंसान के बस भी नहीं होला तो ही स्वभाव है इंसान के मनुष्य के स्वभाव है कि जितना ओके देबा ओके कुछ बस भी नहीं होला और हमने यहाँ पर ऐसे तरह के साथ देखा थे ऋद्वेश दत्तू हमने के साथ देवत बहुत बहुत धन्यवाद भैया मिस्टर संजू कैसे बा उमिला जोधा फिर भी हमने के साथ देवत ऋद्वेश रोजिदा चोचू सुमन जलसा ग्रुप और प्रिया बाचू नमस्ते और हे गे चली रफाकत परदेसी खतीर शारदा जी कैसे बा समाचार राफिक मोहित तयाग से वन राफिक मोहित कैसे बा भायाबू वाकवा से कैसे भैया भायाबू वाकवा से अगर घरोली का सब परिवार घिनाम राफिक मोहित वन तयाग से और जैनब हवन फेनिक्स से रोजिदा हाईलैंड से और रेहाना हसन अली हवन फेनिक्स से बैन साइदा को कैसा जियाद और जहीला खतीर और सब हसन अली परिवार के नाम और रेहाना जी जो फेनिक्स से उनके साथ देवत हवन वो बढ़िया बढ़िया मुस्कुरा होते हैं बोलते हैं प्रताप जी प्रोग्राम तो एकदम बढ़िया बा एगो प्यारा सन गाना हो जाए सब हासिल वाली परिवार के नाम ज्योति रोबिन हवन शामुनी से हाय ज्योति नमस्ते अगला गीत तोहरो नाम अविला हमने के साथ हुआ थवन हर गीत तोहरो नाम ललना चल एक साथ सुने ललना के

रात की 9:40 हुआ था भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी चला था रात के 11 बजे ले और बेशक संगठन लोग ढेर कोई काम बस नहीं करेला खाली इधर ढेर कोई कोनो काम नहीं करा खाई इधर उधर के बात करेलन सर तो तू इधर उधर की बात पर ध्यान नहीं दिया तू अपन काम से काम मत तू अपन काम से मतलब रखिया अपन काम करिया मेहनत करिया अपन परिवार की देखभाल करिया हाई इधर उधर के पलाब नहीं सुनिया वो क्या बोला कि वो कौन सी बोल दिला कि इसी ने चांद बोले कि ये सब बात पर ध्यान दे तो तू जिए नहीं सकब दुनिया ही इसे भैया अच्छा भी कर बदमिया तो हर बार बताए बुरा भी कर बदमिया तो हर बार बताए आदमिया के जरा काम बस नहीं बा पर जो आदमी के काम रहेला तो हमेशा व्यस्त रहेला बिजी रहेला ओके लेता वही नहीं मिलेगा कोई पर पलाब करेगी हाँ कि नहीं और अगला गाना जो ना बहुत ही प्यारा सन गाना है कहाँ छुपी रानी मोरे किशोर कुमार रमेश सर की तो आ गई ले हवन बहुत ही प्यारा सन गीत और है गीत तो हम चाची सर चाची ललिता कुशल के नाम चाची ललिता कुशल त्रियोले से हवन गीत तो हरकत तो सब परिवार के नाम अमृता गणेश पीतों से संजय हरिचंद पीतों से कर पत्नी और बेटी अविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम कुणाल हिरीलाल गीत और कहते तो हर पत्नी तो हर लड़का और सब हिरीलाल परिवार के नाम कहाँ छुपी रानी मोरी चले एक साथ सुनेगी तो

दुनिया भर में महंगाई बढ़ ले जाता चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो या सगरो कनाडा इटली चारों ओर महंगाई बढ़ ले जाता कहे कि महंगाई की जमाना बा और महंगाई से कोनो भी देश नहीं बचल बा त दीपोंस जब करबत जिस चेहरा दीपोंस करे के एक सा भागों चीज नहीं चेहरा किने की अगर जातो आकाशों किने ते को लालिस बना दिया हो लालिसों के अनुसार तू सब किने कहूँ जातो को ना मगाजन शॉपिंग करे ते लालिसों में लिख दिया कौन ची किने के बा ऐसे पुनर्ये के नेपो नेपो चीज नहीं किन बा और जरूरी चीज खाए पिए के चीज चेहरा किने के लुगा पट्टा ते सब किने ना सर और जब लुगा पुराना हो जा रहा फट जा रहा था उनके चेहरे को नवा लुगा किन के पहने की तो स्वाभाविक बात है पर अभी जैसे महंगाई की जमाना बा और अगर कहूँ जाते हो तो एक ही को थौसों में सब अगर बाजार गए लेगिम ले रहा गेरा फार्मासी दवाई ले रहा या शॉपिंग कर ले रहा तो एक ही को थौसों में तीन को काम हो जाए तोहरा तोहरे बजट हुई थी चीज़ की हाँ कि नहीं तो महंगाई की जमाना बा भैया और थोड़ा सुन पैसा बचा के रखिए पूरा समय खातिर कहे कि सब पैसा डिपॉजिट करते पर कभी कभी जेब में एक फुटल कौड़ी भी नहीं रहेगा हाँ कि नहीं तो मान ले जा 10 रुपया कमाओ तो एक महीना में तो 5 रुपया इस्तेमाल करिए 5 रुपया कोना में बात कौन दाने में रख दिया हो पैसा थोड़ी कम है आ बात कौन दाने थोड़ा याद रखना चाहिए आगे के ज़माना में हमने के बारात में लोग बात कौन दाने रखा था लोकर में पैसा कबो 10 रुपी कबो 15 रुपी कबो 100 रुपी कबो 1000 रुपी तो ये सब पैसा जब दिलबा बहुत कौदाना में तब पैसा जब एक बरिस हो जाए तब बहुत कौदाना खुलबा तब देखबा कितना पैसा रहा मसले हुआ अगला गीत महंगाई कमला गणेश की तो गई वो नए गीत तो चला हुआ था ललिता चरण के नाम है गीत और खातिर नाज है गीत और नाम संध्या राम सवर अनुभावेश है गीत और नाम अनिता लाल जी और सुभाष कटवर है गीत हो नाम मधु लंगरा है गीत हो नाम एल्विस सिब्रुना पूनम कविता बिप्ता जवान खान प्रिया गीता अमृता गोकुल अनुभवेश चांद रानी क्वीन कनिष्का बहिमुजीर निर्मा है गीत हो नाम चल एक साथ सुने गीत महंगाई कमला गणेश की आवाज़ में है गीत सुनम जा और गीतवा के बोल पर ध्यान दिए देखिए गीतवा में क्या बोला था

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
0: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
3: रात्रि के 10 बजे तक तू सुना तो भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉर्चस पर MBC के दिनों रेडियो चैनल पर और ये प्रोग्राम चली रात के 11 बजे ले और अभी और एक घंटा बा अगला गीत नमस्ते नमस्ते नमस्ते मुकेश चेदी की तो अगले वन और एक गीत ललिता चरण खाते चरावती सा और साथ में नाज का तेर अनिता लाल जी गीत थोड़ो नाम बबीता बुला के गीत थोड़ो कहती आतिश भाई बहुत खुशी वन रात के बखत हम की सुनते वन चंदन खवस सपना धनु गीत तोरो नाम इंदिरा नमस्ते विजय चौधरी रॉबर्ट भैया है गीत और खातिर राम सुरेश गीत तोरो नाम वंडल रॉबर्ट की ओर से कर जाने मन माया के नाम आप रहे अविनी हो बैत्सन बोबा से रंजीत कुमार भी उनके साथ होते हैं हेलो

इंदिरा है गीत तोहर खातिर और राजेश उगर और सब उगर परिवार के नाम देवीना बिसेसर फिर माला भी उनके साथ देवतवन और माइली है गीत तोरो नाम स्वीटी ओलिविये भी तो और ओलिविये उनके साथ देवतवन बहुत बहुत धन्यवाद ओलिविये उनके साथ दे खातिर और दुनिया भर में हमकी आवाज़ आता है कनाडा इटली रशिया लग्जमबर्ग तो जहाँ से भी तलक हमने सुना तो हई अगला गीत तलक के नाम नमस्ते नमस्ते मुकेश चेदी गीतवा गेले वन एल्बम है मुनिया

एगो सब्जी है जिसका नाम है कदुआ देखो कि कद्दू भी बोलेगा और लैका लोग उतना ही नहीं खाला पर एक में ढेर पौष्टिक तत्व है और बाजार में 365 दिन लिगिम द्वारा मिली और कद्दू के प्रमुख फायदा यह है कि जब डिजेस्टियों के ये दिख रहा है हमने पाचन प्रक्रिया में अगर मैं विटामिन ए बा और

विटामिन ए जो ना आँख खातिर बहुत अच्छा है और कैलोरी कमती करेला पोटाशियम भी बाय कर में और एंटीऑक्सीडेंट भी बा पानी की मात्रा अच्छा बा और है जो इन कदुआ है ये कैसे खा जला जा सकता कदुआ की सब्जी बनाए सूप बनाए भाप में पका के या दाल के साथ बनाइए और ये कदुआ जो है बहुत अच्छा है कहे कि अगर मैं प्रोटीन मैग्नीशियम और स्वास्थ्य संबंधी ढेर तत्व है और जाने से अगर स्वाद उतना नहीं अच्छा रहे लाकर जो गू जो सावे है उतना अच्छा नहीं है पर है जो कदुआ है ये बहुत लाभदायक है हमने के स्वास्थ्य खातिर है तो लड़का लोग के नौजवानों के विकास और के शरीर के विकास खातिर कदुआ ज़रूर पकाइए और लड़का लोग के खियाइए प्यार से जानी जा सके कोई नहीं कुछ लेना पर का कर भैया कबू कबू दुखते हुए बोले ला जस्सी लेगी खाएगी फल खाएगी तो स्वास्थ्य अच्छा रही अगला गीत भोजपुरी हा हमार माँ राजकुमार चिंतामणि की आवाज़ में गीत और गीत हमने चलावा थे इस बीना के नाम बीना के वजह से डुगो बेटा उकर घर वाला उकर मौसा मौसी उकर कुसाल वन भी दूसरे पे इसे सनी सनी की पत्नी सनी के डुगो बेटा और है गीत चली हैंसन लामा खातिर हाय हैंसन केशव मगर है गीत थोड़ो नाम और नेपाल से देर कोई आलम जब भी मॉरिशस में वन जा काम करते वन सर और बेशक हम के साथ देवत वन थापा अगला गीत थापा जी थोड़ो नाम चाहते सर उदय धनी राम गीत थोड़ो खातिर उदय धनी राम और सब धनी राम परिवार से फिर है गीत चलावती इस जानकी परिवार के नाम आप रहेलन रिवेज पोस्ट और बिना तो बढ़िए खुश होकर कहा कि वो नाम रेडियो पर आवा था जया भी उनके साथ होते हैं हेलो जया है गीत तोहरो नाम और है गीत चलते सर उस सब संगतियालों के नाम जो मैं भी रात के काम करता था नाइट शिफ्ट में अस्पताल में क्लिनिक में कॉल सेंटर में और जहाँ कहीं भी रात के काम हुआ था गीत चलो के नाम भोजपुरी हा हमारे मां चले एक साथ सुनेगी तो

आता भोजोरी हमने की माँ है हमने की भाषा है भाषा का चेहरा हमने की फ़ज़ेबे करके रखे के और अब कुछ बॉलीवुड न्यूज़ अगस्त महीना के अंत ले सब फिल्म रिलीज हो जाए और बड़ा पर्दा पर मोशन में सब भाई सब फिल्म देखे पहला है प्रहार दूसरा है ओ माय डॉग फिर आर्यभट्ट का जीरो अवरापन नंबर दो बंटवारा 1947 मातृभूमि भारत देश है मेरा खोसला का घोसला दो एथा और जीवन बीमा योजना साथ में और फिल्म आई टॉक्सिक ये फिल्म भी आई तो कुल मिला के अगस्त महीना में एक्शन ऐतिहासिक ड्रामा रोमांस और कॉमेडी से भरपूर सब फिल्म रिलीज हुई और याद रखिए फिल्मों के नाम प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी फिर ओ माय डॉग ये फिल्म के नाम है ओ माय डॉग बाप रे बाप आर्यभट्ट का जीरो आवारापन नंबर दो आवारा नंबर दो में इमरान हाशमी की दिग्वा फिर बंटवारा 1947 मातृभूमि भारत देश है मेरा खोसला का खोसला दो ईथा और जीवन बीमा योजना और फिल्म टॉक्सिक ये सब फिल्म रिलीज हुई अगस्त के महीना के अंत ले सब फिल्म चलाई और सब वजह ये सब फिल्म परिवार के साथ देखे अगला गीत जुन है हंगामा रोशन सरा सिंह के गीत हैंसन लामा के नाम बिहारी मगर है गीत धोरो नाम साथ में ये गीत हमने चलाओ अब सुमन जलसा ग्रुप खातिर सुनील रामनोचन गीत वालिद फैत के तौर सब परिवार के नाम कविता निधि याति नानी सुल्तान भी खातिर शीन इब्राहिम हवन पोट्री से गीतोरो नाम सुमन जलसा ग्रुप है गीतोरो खातिर दिमियानो है गीतोरो नाम साकुन है गीत तोरो नाम चाहते सर और विकी भी उनके साथ होते हैं तो चल एक साथ सुने गीत हंगामा

आजकल श्रावण मास चला था और ये श्रावण मास चली 28 अगस्त उत पे चली और पूजा पाठ होता घर में या हवन हुआ था वेद पाठ हुआ था सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद अथर्ववेद के मंत्र भजी सान घर में उच्चारण होता मंदिर में भी और सब कोई पूजा पाठ करता और अभी ढेर कोई शाकाहारी भोजन भी करता वन सा साथ में व्रत धारण कर ले उन सा था तमनी के तो लोग के व्रत सफल हुई जिन श्रावण का मास के महीना बहुत ही पावन पवित्र महीना और बोल जला कि है श्रावण मास में तू कागम रह व्रत रख ब परिवार के कल्याण होला थोड़ा मन वांछित फल प्राप्त होला एक और शिवलिंग पर जल चढ़ावती सा शिव अभिषेक होता ढेर कोई पीति-विति कावड़ बना के गाँव मासे जाता तो ढेर कोई घर में मंदिर में यज्ञ हवन करता पुण्य के काम करते वन सा दान करते वन सा और ये सब अच्छा है जब पूजा कर बा और हाथ धोई बा कोई के पूजा करला के बाद यज्ञ हवन करते हुआ तो जितना कोई अभी श्रावण मास में हवन जा और पूजा पाठ करते वन सा तो ये अगला भजन तलो के नाम ओम जय माता

माँ तो आदर हम करीला माँ माँ तो पूजा हम करीला और माँ से बढ़कर दुनिया में कोई तो और हितैषी नहीं बा माँ ही ऐसा नगो व्यक्ति है जो जीवन भर तोरा प्यार करेला और तोर अच्छाई तोर भलाई चाहेला ऊ हा माँ वो चाहे इंसान में हो जानवर में हो तो माँ के जो दर्जा है वो भगवान की दर्जा है रात के 10:40 भोजपुरी तरह का प्रोग्राम 94.5/96.2 FM रेडियो मनोरंजन और रात सोने के लिए रेडियो मॉरिशस पर और आजकल तीस सिटी माह की पढ़ाई शुरू करवा कॉलेज स्कूल में और पढ़ाई जारी बा और इस साल के सर्च में भी घाट 9 घाट 11 और घाट 13 के लिए का लोग अपन एग्जाम दिए हैं घाट 9 यानी कि फॉर्म फ्री घाट 11 यानी कि एससी और घाट 13 यानी कि एचएससी तो निमन से पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया जा और अच्छा से काम करिए ताकि साल के अंत में थोड़ा निमन नतीजा मिली और इतजान बुलाल वाल बाकी दुआ नहीं बा प्रताप सेवी करी के लिए कुल में अगर प्रोफेसर चाहिए एजुकेशनल पेडागोजिकल यूज़ खातिर तो उसकी लड़का लोग के इस्तेमाल करें पर ऐसे दुआ नहीं रही लड़का लोग के प्रताप में फिल्म देखे के या गीत सुने के या प्रताप में बात करके दुआ नहीं है ये सब लालवा निकल बा तो लालवा के पालन करिए जा लालवा के पालन नहीं कर बा तो सौंक्षली वाल जाए तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया पोता पोता पर इतना ध्यान नहीं दिया तो अपन पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया तो सिलेबस टेमिने हो जाए अपन पॉस एग्ज़ाम में काम करिए ताकि निमन से ऐसे एचएससी में निमन से काम कर ब ताकि अगला साल जब आए तो अपने के लोरिया के लालिस में तोरो नाम भी रही आ हा हा हो कि नहीं तो गो लड़का लोरिया कब निकाल ले गो प्रिपरेशन है गो लड़का एक दो दिन में लोरिया नहीं निकाल ला वो कौन फॉर्मिन से एच एस सी ले सीतों वीतों ने पढ़ाई करेला फिर अच्छी तरह से लिखाई करेला और जब एच एस सी आवेला पर सिक्स एग्जाम देवेला कॉम्पीट करेला और जब निमन से सब चीज़ें में अच्छा अच्छा नंबर आवेला तब लेकुआ नंबर वन पे आवेला तो के लोहिया बोल चला तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया लेजुकाशन जो है ये वो पासपोर्ट हमने के और है जो शिक्षा है ये हमने के गरीबी से निकालेला हमने की अच्छा नौकरी देवेला मान सम्मान देवेला तो जितना लड़का लोग भी स्टूडेंट्स लोग हमने की सुनाता रात के समय जितना अध्यापक लोग सुनाता तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जारी रही ताकि टर्म अच्छी तरह से शुरू हो अच्छी तरह से समाप्त हुई तो जितना अध्यापक लोग स्टूडेंट्स लोग हमने की सुनाता

सबको केवल तय बॉन कुआश फॉर द थर्ड टर्म और गुड लक पढ़ाई लिखाई में इसे ही ध्यान दिया। अरे अगला गीत सुना हम पहली ना संदूर सुमावती दुमन रिहाना सुनाले गीत खासम खास तौर का तेरे गीत और बड़ी पसंद बा साथ में हेमंती उनके साथ होते हेमंती होवन वाकवा से और है गीत चली आशा जानू के नाम आप प्रहलन को ते जहाँ आशा गीत थोड़ो खाती राफे सवन लाविनिया सैपिया से फिर गिरिजा गिरिजा देवेशवन फेनिक्स हेलो और है कि तो हम चलावती सब सब संगत लोग खाते जगह नींद नहीं लगाता कोई इधर करवट बदलता कोई उधर करवट बदलता और जितना कोई भी नाइट शिफ्ट काम करके वापस घर लौटता था वन सर भोजन करता था वन सर या गर्मा गर्म चाय की मजा ले हुआ था गीत थोड़ो नाम हम पहनी ला सिंदूर सजन देखे दूर से

रात के 10:45 होता अब हमने की हमने तो लोके सुनाओ जाए वो कहानी सोना के अंडा देवला मुर्गी की कहानी तो बहुत साल पहले की बात है एक गांव में गरीब किसान रहा था अपन पत्नी के साथ और वो लोग थोड़ा सा जमीन रहल और वो लोग मुर्गी के पालन पोषण करत रहन सब और मुर्गी अंडा देवे तो अंडा बेच के ये लोग अपन पेट पालत रहल एक दिन किसान देखला कि ओकर एगो मुर्गी सोना के अंडा देवता तो वो आश्चर्यचकित हो गल कि बाप इ तो जादुई मुर्गी है वो अंडा के गलत सुनार लगे सुनार देखलक अंडवा के तो बोलक हाँ सच्चे के सोना है अगला दिन मुर्गी के और है जो मुर्गिया एक दिन सोना के अंडा देलक रोज के सोना के अंडा दे लगल तो एक सप्ताह में 7 अंडा देलक किसान वो सोना के अंडा बेच के खूब पैसा मिलल पर एक दिन ओकर मन में लालच आल तब अपन पत्नी से बोला था ये जो मुर्गी है सोना के अंडा देवेला अगर एक पेट हम फाड़ देव तक ढेर मना अंडा मिली और कर से हम मिलियनेयर बन जा लखपति बन जा पत्नी ओके बोलक ऐसे नहीं करिए लालच नहीं करे कि मुर्गिया रोज की देवता को अंडा सबसे सबूरी करिए पर जब पत्नी सुत गल तो पति उठल रात के का कर लग गल पुलाई लगे पुलाई खोल लग सोना के अंडा देला मुर्गी के पकड़ लग और उसका पेट फाड़ दिलक छुरी से अब बेचारी मुर्गी तो मर गल उसका पेट में एक को सोना नहीं मिलल तो किसान के अपन गलती पर एहसास हो कि देखा गो मुर्गी सोना के अंडा देवतल खूब पैसा मिले और वो पछताए लगल तो कहानी की सीख कौन चीज संगतिया लोग की है जो लालच है वो बहुत बुरी बला है बहुत बुरा चीज है थोड़े में अगर थोड़ा मिला था कोनो ना कोनो चीज तो संतुष्ट चाह रहे कि जब ढेर लालच करब गुम करब तो सब कुछ फिनी हो जाला तो हमेशा जिंदगी में मेहनत लगन से काम करिए लालच नहीं करिए लालच के फल बहुत बुरा होला अगला गीत राज दुलुआ के गावल गीत है कोदो हम गई ली और ये गीत हमें चाहती सर विनय जीतन के नाम है गीत तोहर खातिर तोहर माता जो सब जीतन परिवार के लिए साथ में है गीत हमने चाहती इस डॉक्टर अंजू के अवश्यकर मंगेतर और होने वाले सास ससुर जी के नाम है गीत हमने चाहती इस सेंट ओबेंस एस एस कॉलेज के सब अध्यापक नॉन टीचिंग स्टाफ वहाँ के रेक्टर ने और वहाँ के सब स्टूडेंट्स लोग के नाम और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की बीए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री एमए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू पीएचडी इन फ्रेंच एंड रोल कोर्स में वहाँ के जितने प्रोफेसर लेक्चरर स्टूडेंट्स लोग बा तक गीत लोग के नाम को ना हम गई राज दुलवा की आवाज़ में

0: बिस्वानी दीपा के गावल है गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। हमने के प्यार से सुना 9 से 11 बजे के बीच 11 बजे सुन बजे सुनहरे पल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तोल के मुलाकात यहीं तक रहा। तोल के फोन कॉल्स तोल के एसएमएस का तिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के टिकटॉक पर देख ला रेडियो पर सुन ला शुक्रिया। हमने के और तोलों की मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे इसी चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी कार्यक्रम में। कल तक हमने की इजाजत दी और जय प्रताप सिंह सितालु की ओर से सबको एक प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के सभी श्रोताओं को नीतू शाह का सप्रेम नमस्कार प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। श्रोताओं, आज हम आपको ले चले हैं गुलजार साहब की दुनिया में। उनका जन्मदिन है तो चले एक साथ मिलकर उनके गानों के जरिए उनको शुभकामनाएं देते हैं।
2: गाना

बनाते हुए तुम जबान से ज्यादा साउंड का ख्याल रखते थे। लफ्जों की साउंड अच्छी हो तो फौरन उन्हें होंठों पर ले लिया करते थे। मानी, तुम कहा करते थे लोग पूछ लेंगे, जैसे तुमने इस गाने में पूछा था मुझसे, ये नशेमन कौन सा शहर है यार।

जी हाँ श्रोताओं, गुलजार साहब नाम लेते ही जहन में कुछ ऐसे लफ्ज उभरते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। वो सिर्फ एक लिरिसिस्ट नहीं बल्कि अल्फाज के एक ऐसे जादूगर हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के गीतों को एक नई भाषा, नई सोच और नई गहराई दी। उनकी शायरी में मोहब्बत भी है।

0: तन्हाई भी है, जिंदगी की सादगी भी है और इंसानी जज्बात की वो बारीकियां भी हैं जिन्हें महसूस तो सब करते हैं लेकिन लफ्जों में बयां करना हर किसी की बस की बात नहीं।
1: याद है पंचम, जब भी कोई नई धुन बनाकर भेजते थे तो साथ कह दिया करते थे,
2: The ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court.
1: ये कौन सा बॉल मेरे कोर्ट में छोड़ गए हो पंचम? जिंदगी का ये खेल अकेले नहीं खेला जाता, हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो।

गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उनका जन्म 18 अगस्त 1934 को दीना पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। पार्टीशन के दौरान उनकी जिंदगी पर जो गहरा असर पड़ा, उसकी परछाई उसकी रचनाओं में कई बार नजर आती है। बचपन, बिछड़ना, यादें, रिश्तों की गर्माहट, तन्हाई और बदलते वक्त का एहसास, इन सब को उन्होंने अपने अल्फाज में बहुत ही खूबसूरती से जगह दी।

0: गुलजार साहब की सबसे खासियत उनकी लैंग्वेज है। उनके लफ्ज कभी बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन उनके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी होती है। वो आम जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को भी पोएट्री बना देते हैं। बारिश, हवा, खिड़की, शाम, चांद, पत्ते, खुशबू, सफर, खामोशी, उनके हाथ में ये सब सिर्फ चीजें नहीं रहती बल्कि इमोशंस बन जाती है।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है

बॉलीवुड में उनकी लिरिसिस्ट के रूप में पहचान बहुत गहरी है। उन्होंने ऐसे गीत लिखे जो सिर्फ फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि कैरेक्टर्स के दिल की बात कह देते हैं। उन्हें गीतों में मोहब्बत का एक अलग ही अंदाज मिला है। वो मोहब्बत को सिर्फ मिलन या रोमांस के रूप में नहीं देखते। उनकी पोएट्री में इंतजार है, दूरी है, याद है, अनसेड इमोशंस हैं और कभी कभी वो खामोशी भी है जो दो लोगों के

गुलजार साहब के गीतों की दुनिया बहुत विस्तृत है। मोरा गोरा अंग ले ले से लेकर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तक, मुसाफिर हूँ यारों से लेकर तुझसे नाराज नहीं जिंदगी तक, और आने वाला पल से लेकर दिल से रे जैसे गीतों तक, उन्होंने अलग अलग दौरों और अलग अलग मूड्स को अपने अंदाज में अल्फाज दिए हैं। उनके गीतों में एक खास बात होती है, वो लिसनर को सिर्फ गाना नहीं सुनाते बल्कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब हम उनका कोई

गीत सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि गाना हमारे लिए ही लिखा गया हो। शायद इसी कारण ये है कि गुलजार साहब इमोशंस को बहुत पर्सनल तरीके से लिखते हैं। उनके लफ्जों में मैं और तुम होते हैं, होते हुए भी हर लिसनर अपनी कहानी देख ले।

उनकी पोएट्री में नेचर का भी बहुत गहरा संबंध है। बारिश उनके यहाँ सिर्फ मौसम नहीं, एक इमोशन बन जाती है। शाम सिर्फ दिन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि यादों और तन्हाइयों का एक एहसास बन सकती है। हवा, पत्ते और खुशबू भी उनकी पोएट्री में अपनी जुबां पा लेते हैं। मतलब कि गुलजार साहब ऑर्डिनरी चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी ढूंढने की कला रखते हैं। उनका एक और खास अंदाज है उनकी इमेजिनरी। वो एक छोटी सी तस्वीर को कुछ भी लफ्जों में इतनी खूबसूरती से पेश कर देते हैं कि लिसनर के सामने पूरा सीन जिंदा हो जाता है। इसी वजह से उनकी शायरी पढ़ते हुए भी ऐसा लगता है जैसे

कोई फिल्म देख रहे हो। वैसे उन्होंने सिर्फ लिरिक्स ही नहीं लिखे बल्कि फिल्म मेकिंग में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मेरे अपने, कोशिश, आंधी, खुशबू, किनारा, अंगूर, नमकीन, लेकिन और इजाजत जैसे सिनेमा के जरिए उन्होंने सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को बहुत ही गहराई से एक्सप्लोर किया। उनकी फिल्म्स में रिलेशनशिप्स, ह्यूमन इमोशंस और जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सटल अंदाज में

कोशिश जैसे सिनेमा में कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की कहानी वो गुलजार साहब की क्रिएटिव विजन को दर्शाता है। आंधी में रिलेशनशिप्स और पॉलिटिक्स के बीच की इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है। इजाजत में लव, सेपरेशन, मेमोरी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को एक बहुत मैच्योर और पोएटिक नजरिए से देखा गया। उनका क्रिएटिव सफर सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने टीवी के लिए भी यादगार काम किया। मिर्जा गालिब जैसे टीवी प्रोजेक्ट ने उनकी फीचर और पोएट्री के प्रति गहरी समझ को सामने रखा। गालिब जैसे महान शायर की दुनिया को स्क्रीन पर लाना एक बहुत बड़ी क्रिएटिव जिम्मेदारी थी और गुलजार साहब ने इसे अपने अंदाज में यादगार बनाया। वैसे गुलजार साहब की राइटिंग का एक और पहलू है उनका बच्चों के लिए लिखना। उन्होंने बच्चों की दुनिया को भी अपनी रचनाओं में जगह दी। उनके लिए पोएट्री सिर्फ बड़े बड़े फिलोसॉफिकल सवालों का नाम नहीं, एक बच्चे की आंखों से दुनिया को देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

उनकी आवाज और उनका बोलने का अंदाज भी अपने आप में अलग है। जब वो पोएट्री पढ़ते हैं तो उनकी डिलीवरी में एक ठहराव महसूस होता है। वो लफ्जों को भागते हुए नहीं बल्कि धीरे धीरे लिसनर के पास आने देते हैं। शायद इसी वजह से उनकी पोएट्री सुनना भी एक अलग अनुभव होता है। अवार्ड्स की बात करें तो गुलजार साहब को उनके बहुमुखी योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिले हैं। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स और अन्य सम्मानों के साथ फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए उन्हें एकेडमी अवार्ड और ग्रामी अवार्ड मिला। ये अचीवमेंट इंडियन फिल्म म्यूजिक और हिंदी लिरिक्स के लिए भी एक गौरव का पल था। लेकिन गुलजार साहब की असली पहचान सिर्फ अवार्ड से नहीं होती, उनकी असली पहचान उनके उन लफ्जों से होती है जो डिकेड्स बाद भी लोगों की जुबान पर हैं। एक जेनरेशन उनके गीत सुनते हैं, फिर अगली जेनरेशन भी उन्हीं गीतों में अपनी फीलिंग्स ढूंढ लेते हैं। ये किसी भी लिरिसिस्ट के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।

गुलजार साहब ने हमें ये सिखाया है कि पोएट्री हमेशा मुश्किल शब्दों की मोहताज नहीं होती। कभी कभी एक सिंपल सा लफ्ज, एक छोटी सी तस्वीर और एक सच्चा इमोशन पूरी दुनिया को छू सकता है। उनकी पोएट्री में सिंप्लिसिटी और डेप्थ का जो कॉम्बिनेशन है वो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, और शायद इसीलिए जब गुलजार के गीत रेडियो पर बजते हैं तो हम सिर्फ सिंगर की आवाज नहीं सुनते, हम लफ्जों को भी महसूस करते हैं। हमें अपनी कोई पुरानी शाम याद आ जाती है, कोई भूला हुआ चेहरा याद आ जाता है, कोई अधूरी बात याद आ जाती है, या फिर अपने ही दिल का कोई कोना अचानक रोशन सा हो जाता है। गुलजार साहब के लफ्ज वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर नए दौर में नए अर्थ लेकर सामने आते हैं। उनकी पोएट्री हमें रोकना सिखाती है, महसूस करना सिखाती है और जिंदगी की छोटी छोटी खूबसूरतियों को पहचानना सिखाती है। यही तो है गुलजार साहब की कला, लफ्जों को एहसास में बदल देना, एहसास को मेलोडी में पिरो देना और मेलोडी को हमेशा के लिए दिल में बसा देना। शुभ रात्रि।

MBC रेडियो, वजह मुस्कुराने की।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो